सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आज दिन गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि तदनुसार 18 जून 2026 इस समय प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 956 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, सुबह सवेरे की पावन बेला में शांत मन से प्रभु सुमिरन करने से मन पूरा दिन प्रसन्न रहता है। तो आइए हम भी सुमिरन करते हैं उस परम पिता परमेश्वर को।

राहें मुश्किल हों तो वो राह दिखाते हैं, कण कण में मेरे साई नजर आते हैं। मिट जाते हैं सारे दुख दर्द उस पल जब साईं बाबा के चरणों में मिलता है सुकून और बल।

जीवन का सार प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा में है। सच्ची भक्ति वही है जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उनकी सहायता करें। वही मार्ग ईश्वर तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।

0: हरि ओम शरण और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर हैं रविन्द्र साठे के और संगीत यह है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 177 177

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्री राम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहां सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है।

वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मनुष्य का जीवन उसके स्वयं के चिंतन, मनन और विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक सोच होने से व्यक्ति का चिंतन उत्कृष्ट होता है और उत्कृष्ट चिंतन का धनी व्यक्ति सहज रूप से उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्ति का पूर्ण विकास। यदि शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है तो इसका अर्थ ये होगा शिक्षा की पद्धति में या उस व्यक्ति की सोच में कोई कमी रह गई। प्रेम और सहानुभूति जैसे सद्गुणों के विकास के लिए ये आवश्यक है कि घृणा को हृदय में कोई स्थान न मिले। विचारों की शुभता जीवन में कैसे प्रवेश पाए, साथ ही विचार कैसे तेजस्वी हो, विचारों में सकारात्मक का प्रवेश कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है नकारात्मक चिंतन पर विराम लगाना और सकारात्मक चिंतन को स्थान देना, उत्कृष्ट और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, नियमित दिनचर्या, घर में पवित्र वातावरण का सृजन, गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा और प्रतिदिन उस शक्ति से प्रार्थना कि हमारा हृदय शुभ विचारों से युक्त हो। विचारों की श्रेणी भी जीवन में विभिन्नताओं से युक्त होती है। आप स्वयं के विचारों का परीक्षण कर सकते हैं। मंद विचार, मध्यम विचार, उग्र, प्रचंड या तीव्र विचार। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जैसे चित्र की कल्पना करता है, जैसे विचार बनाता है, वो वैसे ही जिंदगी प्राप्त करता है। आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने मन मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को प्रवेश दे और उसी पर चले। जीवन में चाहे विपरीत आंधियां चल रही हो, चाहे आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, दुख के कारण आपकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा रहा हो और कोई मार्ग न सूझ रहा हो, तब भी अपने सपनों को

0: अपने विचारों को कभी न टूटने दीजिए और विचारों पर दुख की धूल भी कभी न जमने दीजिए। भारतीय परंपरा में अनादि काल से सत्य, अहिंसा और त्याग बलिदान का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। भगवान बुद्ध और महावीर ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सिखाया, किंतु महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ईश्वर का दर्जा प्रदान कर व्यवहारिक जीवन में उन सिद्धांतों को स्वयं जीकर दिखलाया। इस प्रकार परंपराओं से प्राप्त विद्या तथा आसपास के वातावरण और पुस्तकों से प्राप्त शिक्षा का प्रतिपल व्यवहारिक उपयोग करते हुए नकारात्मक तत्वों को छोड़कर सकारात्मक चिंतन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और उसकी कीर्ति चिरकाल तक अमर रहती है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे यह चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है बंशीधर चतुर्वेदी का काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य पाठ।
2: मैं पेश कर रहा हूं अपने कुछ गीत और कुछ गजलें। मेरा पहला गीत है, जब जब सपनों में तेरी वह चुनरी लहराई है, सच कहता हूं तब तब मुझको नींद नहीं आई है। स्वच्छ चांदनी गंगा तीरे कुछ सिमटी सुखचाई सी, विरह विकल और नतमस्तक निज अश्वन नीर नहाई सी। जब जब ये तस्वीर तुम्हारी पलकों में घिर आई है, सच कहता हूं तब तब मुझको नींद नहीं आई है। मिलन गेहे वह झुरमुट जैसा बूंदों का टप टप झरना, आज हुई वह कसम पराई, संग जीना था संग मरना। जब स्मृति सागर में यूं पीड़ा छंद नहाई है, सच कहता हूं तब तब मुझको नींद नहीं आई है। कब काबासी हुआ उतारू अलसाई पलकों का फूल, कब काबासी हुआ उतारू अलसाई अलकों का फूल, फिर से छवि निहारो अपनी धो डालो दर्पण की धूल। जब जब भी अधरों की स्मित ऐसे गई चुराई है, सच कहता हूं तब तब मुझको नींद नहीं आई है। मेरा दूसरा गीत है, प्यासी धरती तरस रही है बूंद बूंद भर पानी को, अंबर का दिल तो पत्थर है देता दर्द जवानी को। घाट घाट की आस लगी है बाट जूहते कूल किनारे, तुम बिन चाहत के आंचल पर दाग लगे हैं चांद सितारे। बयार बसंती छू जाती है बीती हुई कहानी को, प्यासी धरती तरस रही है बूंद बूंद भर पानी को। अंबर का दिल तो पत्थर है देता दर्द जवानी को। दूर दूर तक फूली सरसों, दूर दूर तक फूली सरसों, खेत खेत का आंचल पीला, कली कली ने ली अंगड़ाई, फूल फूल हो उठा रंगीला, तुम ही बोलो कैसे भूलूं, तुम संग प्रीत पुरानी को, प्यासी धरती तरस रही है बूंद बूंद भर पानी को। महक उठी है अमराई तो कुहक उठी है कोकिल मन में, आह पपी है जैसी बनकर भटक गए हैं हम तो वन में। कब तक आह जलाएगी यूं इस मधुरीति सुहानी को, प्यासी धरती तरस रही है बूंद बूंद भर पानी को। मेरा तीसरा गीत है, आओ मिल बैठें कुछ पल, सावन के गीत लिखें, बदली के अधरों पर हम चुंबन से प्रीत लिखें। तपती दोपहरी है इस जीवन के मरुस्थल में, उगाई नागफनी कब भावों के जंगल में, धड़गन की सरगम पर हम जीवन का संगीत लिखें। आओ मिल बैठें कुछ पल, सावन के गीत लिखें, बदली के अधरों पर हम चुंबन से प्रीत लिखें। बरखा के मौसम में ये आहें भी शीतल हैं, रिमझिम जो बरस रहा वह नैनों का काजल है, प्रतीक्षारत नैनों में अश्वन मन प्रीत लिखें। आओ मिल बैठें कुछ पल, सावन के गीत लिखें। झिंगुर और झिल्ली के स्वरों का मीठापन, गहराता पल पल ये रातों का सूनापन, आओ फिर बाहों में वह स्वर्णिम अतीत लिखें। आओ मिल बैठें कुछ पल, सावन के गीत लिखें, आओ मिल बैठें कुछ पल। मेरी पहली गजल है, सन्नाटा बुन जाती है धुधलाती श्याम, लिखती कुछ दस्तावेज जीवन के नाम। सरलता बटिया से गांव हाटों में पहुंची थी, सरलता बटिया से हाटों में पहुंची थी, छद्म विष पहुंचा है अब सड़कों से ग्राम। भाई साहब बहन जी के अर्थ कुछ और हैं, औपचारिक संबोधन है रिश्ते गुमनाम। विद्या की मीलों में बेकारी का उत्पादन, अनब्याही बिटिया भी अब खोजती है काम। हंसकर मत पूछिए यूं भूखे के भाव को, चौराहों पर लग रहा है असमत का दाम। मेरी दूसरी कविता है, आदमी खुद जाल बुनता और खुद फंसता रहा, आदमी खुद जाल बुनता

खुद फंसता रहा, जिंदगी के क्रोड़ में संतरास यूं पलता रहा। रात आई गत हुई, फिर भोर की फूटी किरण, उम्र भर यह काल का चक्कर यूं ही चलता रहा। आदमी खुद जाल बुनता और खुद फंसता रहा। क्या किया उपलब्ध हमने कसमसाहटों के सिवा, क्या किया उपलब्ध हमने कसमसाहटों के सिवा। हर रोज यह सूरज यूं ही, हर रोज यह सूरज यूं ही अस्क सा ढलता रहा। फिर सुना है कूकने कोयल लगी अमराइयों में, फिर सुना है कूकने कोयल लगी अमराइयों में, पर हमारे प्यार का पतझर यूं ही चलता रहा। आदमी खुद जाल बुनता और खुद फंसता रहा। इन दिमागों के सभी खिड़की झरों के खोल दो, इन दिमागों के सभी खिड़की झरों के खोल दो। इस उमस में सांस का चलना बहुत खलता रहा। आदमी खुद जाल बुनता और खुद फंसता रहा। जिंदगी के क्रोड़ में संतरास यूं पलता रहा। कौन समझे आजकल इंसानियत का दर्द, हो गई है इस कदर संवेदनाएं सर्द। हर गली के मोड़ पर बैठा मिला हमको अतीत, हर गली के मोड़ पर बैठा मिला हमको अतीत। आंख मिलते ही हुआ चेहरा हमारा जर्द, चाहे जो हो जाए पर करता नहीं प्रतिवाद कुछ, चाहे जो हो जाए पर करता नहीं प्रतिवाद कुछ। आजकल मौसम हुआ कुछ इस तरह ना मर्द, झंझनाने जब लगा वह खोखला व्यक्तित्व, झेपते से झुक गए वह झाड़ने को गर्द। लाख समझाया उन्हें पर एक भी माने नहीं, लाख समझाया उन्हें पर एक भी माने नहीं। शेष था जो भ्रम वह भी हो गया बेपर्द। कौन समझे आजकल इंसानियत का दर्द, हो गई है इस कदर संवेदनाएं सर्द। मेरी अगली गजल है कि यूं दर्द तन्हाइयों का ना आप गुनगुनाइए, यूं दर्द तन्हाइयों का ना आप गुनगुनाइए। बेबसी है खामोशी यूं न खिलखिलाइए, दीनहीन निर्बलों का दर्द भी तो दर्द है, दीनहीन निर्बलों का दर्द भी तो दर्द है। इनके वास्ते भी आप कोई गीत गाइए। बहुत कुछ लिखा गया है सुनो रति विलास पर, बहुत कुछ लिखा गया है सुनो रति विलास पर। प्यास की भी राह अब छंद को दिखाइए, जिनके लिए रोटी का टुकड़ा है चांद सा मित्र, उनके अभियान का भी कुछ विवरण सुनाइए। यूं दर्द तन्हाई का ना आप गुनगुनाइए, बेबसी है खामोशी यूं न खिलखिलाइए। जागरण के वास्ते सुनो कलम मसाल है, जागरण के वास्ते सुनो कलम मसाल है। इनको विलास का ना माध्यम बनाइए, यूं दर्द तन्हाई का ना आप गुनगुनाइए, बेबसी है खामोशी यूं न खिलखिलाइए। मेरी अगली गजल है, मैं लिखता हूँ सच को सच बकवास नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ सच को सच बकवास नहीं लिखता। मैं सपनों को सपनों का इतिहास नहीं लिखता, नहीं वारता उपमानों को चोली और चुनरी पर। मैं विलास डूबा नक्षिक विन्यास नहीं लिखता, जीवन तपती दोपहरी है चलते ही जाना, जीवन तपती दोपहरी बस चलते ही जाना है। पीकर किंचित मद इसे मैं मदमास नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ सच को सच बकवास नहीं लिखता। कलम लिखे वह गीत जिसे सुन पर्वत हुंकारे, मैं शब्दों में ढाल काम की प्यास नहीं लिखता। मैं लिखता हूँ सच को सच बकवास नहीं लिखता, मैं सपनों को सपनों का इतिहास नहीं लिखता। कलम लिखे वह गीत जिसे सुन पर्वत हुंकारे, मैं शब्दों में ढाल काम की प्यास नहीं लिखता। गिरना उठना फिर चल देना घबराना कैसा, गिरना उठना फिर चल देना घबराना कैसा। जो जीवन गति रोके वो संतरास नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ सच को सच बकवास नहीं लिखता, मैं सपनों को सपनों का इतिहास नहीं लिखता। मेरी अगली गजल है कि बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो, बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो। शब्द क्या पान है कि मुंह में रखो और धीरे से चबा लो, बिन कर्म के शब्द जो निजधार को कुंठित हुए उन्हें धार दो, बिन कर्म के शब्द जो निजधार को कुंठित हुए उन्हें धार दो। सुनो हर शब्द एक तीर है, इसे अर्थ के विष में बुझा लो। बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो। तुम ख्यालों के दिए की रोशनी में लिख रहे अंधी इबारत, तुम ख्यालों के दिए की रोशनी में लिख रहे अंधी इबारत। बांटनी है रोशनी तो अपने हाथों में मसालों को उठा लो, बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो। शब्द क्या पान है कि मुंह में रखो और धीरे से चबा लो। राह बीहड़ है भयानक है, यूं अकेले तय नहीं होगा सफर, काफिला बनकर चलो। सो रहे हैं लोग जो उनको जगा लो, बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो। शब्द क्या पान है कि मुंह में रखो और धीरे से चबा लो। कागजों पर खोदते हैं वो कुएं, कागजों पर खोदते हैं वो कुएं, सींचते हैं जो हमारी प्यास को, खोदनी है अब हमें उनकी कबर। हाथ में अपने कुदालें सब उठा लो, बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो। शब्द क्या पान है कि मुंह में रखो और धीरे से चबा लो। मेरी अंतिम

0: गजल है कि इतिहास के पृष्ठों पर ये खून के निशान हैं, इतिहास के पृष्ठों पर ये खून के निशान हैं, बेगुनाह नींव में और नींव पर मकान है, जिसने जितना ज़्यादा चखा खून के स्वाद को, ये जहान मानता वह आदमी महान है, स्वार्थ साध लड़ रहा है आदमी पशु बना, स्वार्थ साध लड़ रहा है आदमी पशु बना, उलझने तो हैं मगर क्या सिर्फ ये निदान है, इतिहास के पृष्ठों पर ये खून के निशान हैं। लूटपाट रक्तपात कर रहे पता नहीं, लूटपाट रक्तपात कर रहे पता नहीं, आदमी है आदमी ये वेद है कुरान है, दोस्तों छला न जाए खून फिर शहीद का, दोस्तों छला न जाए खून फिर शहीद का, ये रण का फैसला नहीं मेज का निदान है, इतिहास के पृष्ठों पर ये खून के निशान हैं, बेगुनाह नींव में और नींव पर मकान।
1: कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत श्रोता सुन रहे थे बंशीधर चतुर्वेदी का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार।
2: यंताम प्रवाचिका निधि झाहा। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च 5-दिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्याम खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। स संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं

0: सम्प्रति जगति षड्षष्ट्युत्तर द्विशत कोटि जनाः तीव्र खाद्यासुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिंता प्रदर्शिता यत् विंशति द्वाविंशति तः परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाखड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया।

महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत जानकारी व्यायाम का महत्व विषय पर।
1: व्यायाम हर किसी के जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों से, अगर शुरू करें तो बच्चों की जो ग्रोथ होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर व्यायाम का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जो बच्चों की ग्रोथ होती है, आप देखेंगे कि जो बच्चे खेलने कूदने में ज़्यादा लिप्त होते, ज़्यादातर उन बच्चों की शारीरिक परिस्थितियाँ दूसरे उन सभी बच्चों से बेहतर होती है जो बच्चे खेल कूद में कम दिलचस्पी लेते हैं। अगर हम बात करें एक अडल्ट यानी कि एक पूर्ण रूप से एक जो व्यस्क होता है उसकी अगर हम बात करें, तो आजकल हम देखते हैं कि शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल के बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो गया। अब उसमें देखा जाए तो जो व्यायाम है, व्यायाम का हमारे शरीर के हार्मोनल सिस्टम पे कुछ इस तरह का प्रभाव होता है कि जो तनाव है वो बहुत ही कम हो जाता है। और शायद सभी श्रोताओं ने भी इस चीज का अनुभव किया होगा कि व्यायाम के बाद रात को जो नींद है वो और ज्यादा गहरी और शांतपूर्ण तरीके से आती है और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो यही सब प्रभाव है व्यायाम। और इसीलिए आज के जीवन में अगर मैं बात करूं वृद्धजनों की, तो वृद्धजनों में एक बहुत ही आम समस्या है फॉल्स की। तो फॉल्स होता है कि उसके अंदर शरीर में कमजोरी की वजह से गिरना, आमतौर पे डिसबैलेंस की वजह से या फिर कहीं लड़खड़ाने की वजह से वृद्धजनों का गिरना। तो उसमें भी अगर आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर की उम्र और उसका बैलेंस बढ़ा के आप इन सब चीजों को रोक सकते हैं। व्यायाम वैसे बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले तो व्यायाम आप घरेलू तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आपके शहर में या गांव में या घर के पास जो भी अस्पताल हों, वहां पे आजकल हर जगह फिजियोथेरेपी सेंटर्स खुल गए हैं, तो वहां पे आप अगर एक फिजिकल ट्रेनर या फिजिकल थेरेपिस्ट की मदद से उनके सुपरविजन में और उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार अगर आप व्यायाम करते हैं तो वह व्यायाम सही माना जाता है। क्योंकि व्यायाम आपकी जो परेशानी है उसके हिसाब से भी होता है, इसके अलावा अपनी तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी होता है। तो आजकल जैसे बहुत सारी परेशानियां शुरू हो गई हैं, किसी को गर्दन में दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को घुटने का दर्द है, उसके लिए अलग तरह के व्यायाम है। अगर कोई इंसान अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम करना चाहता है तो उसके लिए अलग तरह के व्यायाम है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगा। एक नॉर्मल रूप से जो चलना होता है हमारा, उसी चलने को अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर स्पीड को बढ़ा के लगभग 20 से 30 मिनट तक अगर हम लगातार चलें, तो इस तरह का चलना जनरली लगभग हफ्ते में 4 या 5 दिन अगर कोई भी इंसान चलता है तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है। तो ये बड़ा ही आवश्यक है, बल्कि मैं कहूंगा कि हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो गांव में रह रहे हों, चाहे वो शहर में रह रहे हों, और खासकर जो शहर के लोग हैं। गांव के लोगों में ज्यादातर देखा गया है कि बहुत ज्यादा सुविधाएं ना होने की वजह से खेतों तक या शहर तक भी अगर उनको जाना है तो भी पैदल रास्ता उनको काफी नापना पड़ता है। तो इस वजह से गांव के लोगों में इस तरीके की परेशानियां कम पाई गई। गांव के लोगों में ज्यादा परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि उनका जो खेती का कार्य होता है उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा कमर झुका के काम करना पड़ता है। तो बल्कि हमारे अस्पताल में भी कुछ इस तरीके के मरीज ज्यादा आते हैं जिनकी कमर दर्द की समस्या होती है, जो बहुत ज्यादा कमर दर्द से परेशान होते हैं और वही दर्द उनके पैरों तक भी आ जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज की डेट में व्यायाम की आवश्यकता बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को है, गांव से लेकर शहर तक हर किसी को है। इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं है कि कौन किस तरह का जीवन स्तर जी रहा है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या आपके जीवन में व्यायाम के लिए समय है, क्या आपके जीवन में व्यायाम के लिए महत्व है। अगर है तो आप एक सुलभ जीवन जी सकते हैं।
0: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत श्रोता सुन रहे थे जानकारी व्यायाम का महत्व विषय पर। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जानकारी का विषय है मोटे अनाजों की खेती।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आप स्वागत है। और आज खेती की बातें क्रम में विषय है मोटे अनाजों की खेती। तो भैया हम सभी जानते हैं कि मोटे अनाज जो है इनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इनके बारे में कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो जब हम मोटे अनाजों की बात करते हैं तो मोटे अनाजों को श्री अन्न भी कहा जाता है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, सांबा, कंगनी और चैना आदि मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। ये अनाज पोषक तत्व से भरपूर होते हैं तथा कम पानी और कम लागत आने से उगाए जा सकते हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण मोटे अनाजों की खेती का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। तो भैया मोटे अनाज मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदारी हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, इसलिए आज विश्व भर में इनकी मांग बढ़ रही है। मोटे अनाज पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हैं। इनकी खेती कम पानी में हो जाती है और भैया ये रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता भी इसके लिए नहीं पड़ती। सूखा और गर्मी जैसी परिस्थितियों में ये फसलें अच्छी बढ़वार कर लेती हैं। यही कारण है कि इन्हें जलवायु अनुकूल फसल माना जाता है। और भैया भारत विश्व के प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक देशों में से एक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में इनकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बाजरा और ज्वार की खेती विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। सरकार भी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इससे इन अनाजों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अब आप जानते हैं कि भैया आने वाला समय खरीफ का है, तो ज्यादातर मोटे अनाजों की खेती खरीफ के सीजन में की जाती है और इसकी बुआई जब मानसून पूर्व वर्षा होती है जून और जुलाई में की जाती है और इनके लिए अच्छी जल निकासी वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। और यदि भूमि कम उपजाऊ है तो भी इनकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। इन फसलों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बीज बोने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर निराई गुड़ाई और जैविक खादों का उपयोग करने से भी फसल हमारी स्वस्थ रहती है। फसल पकने पर कटाई कर अनाज को सुरक्षित स्थान पर संग्रहित किया जाता है। तो किसान भाई जानते हैं कि इससे बहुत से लाभ होते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए कम लागत आती है और प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी इन फसलों पर कम पड़ता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी किसान अच्छी आय प्राप्त कर लेता है और इसके अधिक बाजार में इनकी मांग को देखते हुए किसान की आय भी ये बढ़ाने में सहायक होती है। लेकिन भैया मोटे अनाजों की खेती लाभकारी तो है, फिर भी कुछ चुनौतियां हमारे लिए हैं। आधुनिक समय में लोग गेहूं और चावल को अधिक उपयोग करने लगे हैं जिससे मोटे अनाजों की खपत कम हुई है। उचित बाजार, प्रसंस्करण सुविधाओं और जागरूकता की कमी भी किसानों के लिए समस्या है। तो कहने का मतलब यह है कि मोटा अनाज केवल पोषण का स्रोत ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक उन्नति का माध्यम भी है। वर्तमान समय में इनकी खेती को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि सरकार, वैज्ञानिक और किसान मिलकर प्रयास करें तो मोटे अनाजों की खेती भारत की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और हमें अपने भोजन में मोटे अनाज को शामिल करके स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो किसान भाइयों, है ना फायदे का सौदा, तो आप अच्छी तरह समझ गए कि भाई मोटे अनाज उगाने में कितना बड़ा फायदा है। एक तो भैया हम अपने परिवार के लिए मोटा अनाज उगा सकते हैं, यानी कि अपने घर में हम बहुत सारे अनाज मिलाकर यदि उनका आटा बनाएं, उनकी रोटी बनाएं, जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो और जो दूसरे मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं, तो इन सब का एक मिक्सचर मिलाकर जो आटा होता है उसकी रोटी यदि हम खाएं तो बहुत ही पौष्टिक होती है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है, क्योंकि बाजरा जैसी फसल में कैल्शियम बहुत होता है, इसके साथ साथ आयरन भी होता है और हमारा शरीर जो गेहूं और चावल खा के ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेकर मनुष्य मोटापा और मधुमेह का शिकार हो रहा है, तो इन जैसी समस्याओं से भी हमें निजात मिल सकती है। तो किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि वो मोटे अनाजों की खेती करें और आगे बढ़ें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत जानकारी मोटे अनाजों की खेती विषय पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। जानकारी और मनोरंजन से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुबह 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज सवेरे 9:25 पर श्रोता आनंद लेंगे ललिता चौहान के गाए रुहेलखंडी लोकगीतों का। बहनों का कार्यक्रम महिला जगत का समय होगा दिन में 1:15। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज दिन में 1:45 पर श्रोता आनंद लेंगे अमरदीप सिंह नेगी के गाए गढ़वाली लोकगीतों का। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुनेंगे दिन में 4:00। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मेरा सपना उन्नत भारत का प्रसारण समय होगा शाम 5:00। आज शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे मनपसंद कार्यक्रम युवाणी। आज का क्रम होगा ताना बाना और कहानी के उस पार का। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा टमाटर मिर्च की नर्सरी और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विषय पर। साथ ही किसान भाई सुनेंगे भेंटवार्ता पशुओं में गर्भधारण में आ रही समस्या और समाधान विषय पर डॉक्टर मोहम्मद कासिम अली से जितेंद्र कुमार की बातचीत। कार्यक्रम विविधा का प्रसारण समय होगा शाम 6:45 पर। इस कार्यक्रम में के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे वार्ता नैतिकता की कसौटी पर जलवायु परिवर्तन। वार्ताकार होंगी डॉक्टर भावना वत्सल।

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज शाम श्रोता सुनेंगे शाने आलम और साथियों की गाई कव्वाली। कंट्री वाइड और इनसाइट्स आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे नाटक सुबह का भूला। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:18 हो रहे हैं। अगला कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे

0: बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना को लेकर की अहम बैठक। परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
3: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही कार्य योजना शासन को भेजी जाए, जिससे उन्हें इस माह के अंत तक स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर संवेदनशील है तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के व्यवस्थित पुनर्वास और उन्हें उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के कार्यों में विलंब है या जिन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किए हैं, उनके जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भारत के प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
4: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
6: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
5: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
7: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
5: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में बुटला गांव के पास कल एक ट्रैक्टर व ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कल हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत अफगानिस्तान के सामने 403 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 44 ओवर और 3 गेंद पर 232 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगोत्री से गंगा सागर योग यात्रा के अंतर्गत कल वाराणसी में योग और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित

0: अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की अहम बैठक। परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त रेणु राजपूत। आज इस कार्यक्रम में हम जानकारी देंगे गोवा क्रांति दिवस और ऑटिस्टिक प्राइड डे के बारे में, साथ ही चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गोवा क्रांति दिवस के बारे में। श्रोताओं, 18 जून को प्रतिवर्ष गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। 18 जून गोवा की आजादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। श्रोताओं, गोवा की मुक्ति और नागरिक अधिकारों की बहाली के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया योगदान अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। उन्होंने गोवा के लोगों को दमनकारी पुर्तगाली शासन के खिलाफ संगठित किया और उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता दिखाया। उस समय पुर्तगालियों ने सभा करने, संगठन बनाने और बोलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ था। डॉक्टर लोहिया ने इस दमनकारी नीति को चुनौती दी और 18 जून 1946 को डॉक्टर लोहिया और उनके मित्र डॉक्टर जूलियाओ मेनेजस ने मंडगांव के पुर्तगाली प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए हजारों लोगों की विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के बाद पुर्तगाली पुलिस ने डॉक्टर लोहिया को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें गोवा की सीमा से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने गोवावासियों के दिलों में स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई कि इस दिन को आज भी गोवा में गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन जागरण और राष्ट्रवाद का संचार कर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को सीधे संदेश दिया कि उनकी आजादी उनके अपने हाथों में है, उन्हें अपनी आजादी के लिए किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं।

है। उन्होंने खुले तौर पर यह उद्घोष किया कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है। डॉक्टर लोहिया के इस साहसिक कदम को महात्मा गांधी का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिला और उन्होंने अपने समाचार पत्र में डॉक्टर लोहिया के प्रयासों की खूब सराहना की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा शुरू किया गया यह सत्याग्रह प्रयास इतना प्रभावशाली था कि इसके बाद पूरे देश के नेता और स्वतंत्रता सेनानी गोवा के इस आंदोलन में कूद पड़े। अंततः लंबे समय संघर्ष के बाद परिणाम स्वरूप गोवा को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली और गोवा पर 451 साल का पुर्तगाली राज समाप्त हुआ। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे के बारे में। श्रोताओं, ऑटिस्टिक प्राइड डे लोगों के लिए गौरव का उत्सव है जो प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के लिए गौरव के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इसकी भूमिका को मान्यता देता है। श्रोताओं, दुनिया भर के संगठन एक दूसरे से जुड़ने और एलिस्टिक यानी ऑटिस्टिक लोगों को यह दिखाने के लिए कार्यक्रमों के साथ ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं कि ऑटिस्टिक लोगों को इलाज की आवश्यकता नहीं है। ऑटिस्टिक प्राइड डे इस बात पर जोर देता है कि ऑटिस्टिक लोग हमेशा से मानव समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ऑटिस्टिक होना न्यूरो डायवर्सिटी का एक रूप है। न्यूरो डायवर्सिटी के सभी रूपों की तरह ऑटिस्टिक लोगों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें से अधिकांश ऑटिज्म के प्रति उन लोगों के दृष्टिकोण और समर्थन एवं सुविधाओं की कमी से उत्पन्न होते हैं, न कि ऑटिस्टिक स्थिति के लिए आवश्यक होने से। उदाहरण के लिए लैरी अर्नॉल्ड और ग्लेन नेल्सन के अनुसार ऑटिज्म से संबंधित कई संगठन माता पिता के प्रति सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देते हैं, न कि समझ को। ऑटिस्टिक कार्यकर्ताओं ने इस धारणा के दूर दृष्टिकोण में बदलाव लाने में योगदान दिया कि ऑटिज्म एक असामान्य स्थिति है जिसका इलाज या उपचार किया जाना चाहिए। ऑटिस्टिक एक स्ववकालत संगठन है जिसका नेतृत्व और संचालन ऑटिस्टिक लोगों द्वारा किया जाता है। ऑटिस्टिक स्वीकृति और ऑटिस्टिक प्राइड डे के आंदोलन में एक प्रमुख शक्ति है। श्रोताओं, ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार 2005 में एसपीज फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था, जिन्होंने 18 जून की तारीख इसलिए चुनी थी क्योंकि उस समय समूह के सबसे युवा सदस्य का जन्मदिन था। इस दिन के प्रतीक के रूप में इंद्रधनुषी अनंतता का चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है जो कि अनंत विविधताओं और अनंत संभावनाओं का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे ऑटिस्टिक प्राइड डे का विकास जारी रहा, ऑटिस्टिक अधिवक्ताओं का व्यवसायीकरण भी बढ़ता गया और ऑटिस्टिक प्राइड रीडिंग ने 2018 में एक चैरिटी के रूप में पंजीकरण कराया और एक प्राइड इवेंट आयोजित किया जिसमें 700 से अधिक लोग शामिल हुए। कोविड-19 महामारी के दौरान भी जब भौतिक आयोजन असंभव थे तो ऑटिस्टिक अधिवक्ताओं ने ऑटिस्टिक प्राइड अलायंस के तहत सहयोग किया और एक ऑटिस्टिक प्राइड ऑनलाइन समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें कि 4 महाद्वीपों के वक्ताओं ने भाग लिया था। दुनिया भर में ऑटिस्टिक लोगों के आत्म पुष्टिकरण, पहचान, गरिमा और समानता को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से ऑटिस्टिक प्राइड डे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। श्रोताओं, आज है 18 जून और इस दिन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि कोई भी मनोरंजन और खाने की बात हो तो ऐसा दिन तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, ये तो हम सभी को याद रहता है। तो आइए जानते हैं इंटरनेशनल पिकनिक डे के बारे में। श्रोताओं, बचपन की कई यादों में से एक पिकनिक की याद भी होती है, जिसका जिक्र आते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का उत्साह सभी उत्साहित होते हैं। पिकनिक मनोरंजन का एक ऐसा तरीका है जो कि मौज मस्ती से भरपूर होता है। अक्सर लोग परिवार, दोस्तों या स्कूल ट्रिप पर पिकनिक के लिए जाते हैं। पिकनिक तो श्रोताओं कहीं भी किसी भी स्थान पर मनाई जा सकती है। पिकनिक के लिए घर से ही सामान पैक करके ले जाया जाता है। पिकनिक को लेकर लोगों के उत्साह को देखते हुए प्रतिवर्ष पिकनिक के नाम एक दिन समर्पित किया जाता है और वैश्विक स्तर अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी। आधुनिक पिकनिक का श्रेय फ्रांसीसियों को दिया जाता है, लेकिन वैश्वीकरण और व्यक्तिगत संस्कृतियों का भी इसकी लोकप्रियता में योगदान है। श्रोताओं, पिकनिक शहर के बाहर निकलने और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। श्रोताओं, हमें पिकनिक पर मौज मस्ती के साथ साथ पर्यावरण स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जीरो वेस्ट का नियम अपनाएं। पिकनिक स्थल पर गंदगी ना फैलाएं और कुछ भी सामान वहां पे गिराने से पहले सोचें कि इसे एक पॉलीथिन बैग में जो पैक कर लें, जिससे कि उसे घर लौटकर आप अपने घर डस्टबिन में डाल दें। और प्लास्टिक के थैले की जगह आप कपड़े और जूट के बैग का इस्तेमाल करें। बचे हुए खाने और कचरे को डालने के लिए साथ में एक डस्टबिन बैग जरूर रखें। खाने के लिए डिस्पोजल इस्तेमाल करना हो तो थर्माकोल और प्लास्टिक के स्थान पर पत्तों या कागज से बने इको फ्रेंडली विकल्प ही चुनें। तो श्रोताओं, आज के दिन को खूब एंजॉय कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के संग और आनंद लीजिए स्वादिष्ट व्यंजनों का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
6: तो इंतजार किस बात का,
5: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
6: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
5: और हमारा ईमेल आईडी है
6: akashwaninajibabad@gmail.com।
5: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
6: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, अब क्रम है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ के अंतर्गत तिथि विशेष का। तो श्रोताओं, 18 जून का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। यह दिन मुख्य रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा किए गए सत्याग्रह और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के लिए याद किया जाता है। मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बीच ऐतिहासिक हल्दीघाटी के युद्ध की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन यानी 18 जून 1576 को। बेल्जियम के वाटरलू में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेतृत्व वाली सेना ने करारी शिकस्त दी थी जिससे नेपोलियन युग का अंत हुआ था 18 जून 1815 को। स्वतंत्रता संग्राम की नायिका रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी 1858 में। डॉ राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ गोवा में ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी 18 जून 1946 को, जिसे कि हर साल गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के पहले स्टील्थ लड़ाकू विमान लॉकहीड F-117 नाइट हॉक ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी आज ही के दिन 1981 में। चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा ने LRO अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था 18 जून 2009 को। और अब जानकारी आज के दिन यानी 18 जून को जन्म लेने वाले महान व्यक्तियों के बारे में। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लेखक और प्रमुख गांधीवादी विचारक दादा धर्माधिकारी का जन्म 18 जून 1899 को हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांचवें सरसंघ संचालक के एस सुदर्शन का जन्म 1931 को हुआ था आज ही के दिन। दुनिया के सबसे सफल और प्रसिद्ध ब्रिटिश पॉप रॉक बैड बीट के दिग्गज संगीतकार पॉल मैकेटिनी का जन्म 1942 को हुआ था। नौकायन में भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक अर्जुन पुरस्कार विजेता होमी डैडी मोतीवाला का जन्म 18 जून 1958 को हुआ था। और आइए अब जानते हैं आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले महान व्यक्तियों के बारे में। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की सर्वोच्च बलिदान देने वाली झांसी की रानी का निधन हुआ था आज ही के दिन 1858 में। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और टेस्ट क्रिकेट में विदेश में पहला शतक जड़ने वाली भारतीय बल्लेबाज सैयद मुश्ताक अली ने 2005 में दुनिया को अलविदा कह दिया था।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आइए अब देखते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों को कि क्या खास है आज के समाचार पत्रों में। अमर उजाला प्रमुखता देता है, बेटियों ने सबसे बड़ा स्कोर बनाकर हासिल की रिकॉर्ड जीत। भारतीय बेटियों ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बुधवार को इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने दूसरे मैच में नीदरलैंड को 95 रन के अंतर से मात दी, जो विश्व कप इतिहास में उसकी सबसे बड़ी जीत है। दैनिक जागरण प्रमुखता देता है, त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में भारत ए, कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्र के अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय सीरीज के मुकाबले में अफगानिस्तान ए को 101 रन से हराया और खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। दैनिक जागरण प्रमुखता देता है, नियमित करें योग, स्वस्थ रहेगा तन और मन। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, मानसून की रफ्तार अचानक थमी। जून के मध्य तक देश के बड़े हिस्से में सक्रिय रहने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून अब सुस्त पड़ गया है। मध्य और पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में मानसूनी बादलों की कमी देखी जा रही है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मानसूनी बादल नहीं दिखे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्या खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए। मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
3: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
10: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
8: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
11: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
8: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
12: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद सिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
13: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
14: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
3: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। पेश है फिल्म खानदान का ये गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने और शब्द रचना की है राजेंद्र कृष्णा ने, संगीत दिया है रवि ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आइए अब सुनते हैं फिल्म सिलसिला का एक गीत जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की है शिव हरी ने। ख्वाब ही ख्वाब है कब तक तलक देखूं, ख्वाब ही ख्वाब है कब तलक देखूं, काश तुझको भी एक झलक देखूं।

0: हर पल चंदन का एहसास।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। इसी क्रम में पेश है फिल्म आन मिलो सजना का ये नगमा, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को शब्दबद्ध किया है आनंद बख्शी ने।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म आराधना में मोहम्मद रफी और आशा भोसले को। संगीत तैयार किया है एस डी बर्मन ने और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी यूं ही चलती रही, जिंदगी यूं ही चलती रही एक लंबे सफर की तरह, कभी धूप मिली तो कभी छांव का असर मिला, हर मोड़ पर वक्त ने कोई नया सबक दिया, कभी ठोकरों ने गिराया तो कभी हौसलों ने संभाल लिया, जो बीत गया उसने तजुर्बा दिया, जो मिला उसने जीना सिखा दिया, और हर मुश्किल में आखिर में मुस्कुराना और आगे बढ़ना सिखा दिया।

0: मुकेश और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:15 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे एटा और गोरखपुर जिलों की हलचल।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए एटा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
3: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एटा के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। योजना के प्रथम चरण में 4 मार्गों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से राजा का रामपुर मार्ग पर 2 बसें और अमरोली रतनपुर और बिलसड़ मार्ग पर 1-1 बस चलाई जा रही है। लंबे समय से नियमित सार्वजनिक परिवहन से वंचित ग्रामीणों को इस पहल से बड़ी राहत मिली है। बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को जिला मुख्यालय के अलावा कस्बों तक पहुंचने में सुविधा होगी। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए अन्य मार्गों को भी योजना से जोड़ने की मांग की है। परिवहन विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से नए मार्गों पर बस संचालन की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जनपद के सभी 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ये मेला बीते रविवार यानी 14 जून को लगाया गया। मेले में कुल 1030 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। सबसे ज्यादा संख्या त्वचा रोगियों की रही। इसके अलावा पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, गैस और कब्ज से पीड़ित मरीजों ने भी उपचार लिया। मेले में 414 पुरुष, 477 महिलाएं और 139 बच्चे पहुंचे। चिकित्सकों ने बुखार के मरीजों की मलेरिया और डेंगू जांचें भी कराई, जिसमें कोई भी मरीज संक्रमित नहीं पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण त्वचा और पेट संबंधी रोगियों की संख्या ज्यादा रही है और लोगों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी गई है। जिले में अवैध रूप से संचालित 21 लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को 7 दिन के भीतर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में पंजीकरण न कराने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। विभाग का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करना है। जनपद में निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान के लिए शासन ने 2 बृहद गौशालाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। पहली गौशाला मारहरा क्षेत्र के रहमतपुर माफी और दूसरी सकीट के नगला हरिकिशन में बनाई जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आरपी शर्मा के अनुसार दोनों गौशालाएं 10-10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएंगी। इनमें गौशाला शेड, पानी की व्यवस्था, भूसा, गोदाम, कार्यालय कक्ष, सोलर लाइट और सुरक्षा के लिए फेंसिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
4: एक गौशाला हमारी मरहरा ब्लॉक में रतनपुर माफी में, दूसरी गौशाला शकीर ब्लॉक के नगला हरिकिशनपुर में स्वीकृत की गई है, जिसकी क्षमता 400 गोवंश की होती है। इसके अलावा भूसा गोदाम, एक ऑफिस बनता है, पानी की टंकी बनती है, उसके बाद उसके अलावा बाउंड्री वॉल बनती है, इसमें निर्माण कार्य किया जाता है।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आर्ष गुरुकुल एटा में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ बीते सोमवार से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका परिषद एटा की अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में योग साधकों ने सहभागिता की। योग के प्रशिक्षकों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास किया। तमाम योग के आसनों के लाभ भी बताए। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का भी प्रभावी माध्यम है। एटा के अलीगंज में महिला सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने को महत्वपूर्ण पहल की गई है। अलीगंज मैनपुरी मार्ग पर लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महिला थाना भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता, सीओ राजेश कुमार मौजूद रहे। महिला थाना बनने से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, परामर्श और न्याय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध होगा। इसी क्रम में जसरतपुर और नयागांव थाना इलाकों में दो नई पुलिस चौकियों के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। इससे ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पहुंच और कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन ने जैथरा के मानपुर गाँव में एक प्रगतिशील किसान के कृषि फार्म का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन, गेंदा पुष्प उत्पादन और औषधीय पौधों की खेती का अवलोकन किया।
2: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
5: 2 जून को गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआ ताल में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान डबल इंजन सरकार ताल पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती, बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है। उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है। 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निखारे गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिलुआ ताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरण में चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तर्ज पर इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सरकारें अच्छी चीजें लेकर आती हैं। उन्होंने बताया कि चिलुआ ताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिलुआ ताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब लोग चिलुआ ताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा। उन्होंने चिलुआ ताल के प्राकृतिक वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि चिलुआ ताल के किनारे लहरों से होकर आ रही हवा तापमान को कम कर सुखद एहसास करा रही है। यहाँ पर लोग परिवार के साथ आकर आनंद के साथ घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। यहाँ न प्रदूषण है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था।
6: ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है। एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है।
5: 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज महुआ पार बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ से अधिक की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह धरा मां सरयू के आंचल में है। यहां का नौजवान जहां भी गया अपनी प्रतिभा व परिश्रम का लोहा मनवाया है। एक समय बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में क्षेत्र के लोग पलायन करते थे। आजीविका के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ के नौजवान को बाहर नहीं जाना होगा, उससे यही रोजगार के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। अब सरकार आपके द्वारा चुने गए विधायक सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए विदेशों के लोगों को चिल्लूपार में काम करने का अवसर देने जा रहे हैं। विदेशी लोग आकर आपके यहाँ चाकरी करेंगे। सीएम ने विश्वास जताया कि विकास और विरासत की यात्रा के साथ चिल्लूपार वासी बिना रुके, डिगे, झुके, डरे निरंतर आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत गरीबों का कल्याण, विकास योजना, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाता है। उन्होंने कहा कि एक समय राम जानकी मार्ग पर आवागमन ठप था, उपचार के लिए लखनऊ जाने को मजबूर होना पड़ता था, कनेक्टिविटी रोडवेज बस व अन्य साधन तक नहीं थे, जैसे तैसे व्यवस्था चल पाती थी, लेकिन आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले कोई सोचता था कि धुरियापार में इंडियन ऑयल का सीएनजी प्लांट लगेगा या सहजनवा का गीडा धुरिया पार में आ पाएगा। यहाँ ग्रेटर गीडा बनाने जा रहे हैं हम। अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ गए हैं जिन्हें हमें उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री धुरिया पार में लगने जा रही है, पावर प्लांट, आधुनिक पेंट और अत्याधुनिक डिस्टिलरी जहाँ मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ की दवा भी बनेगी। गोरखपुर जिले में बड़ा मंगल हर मंगल को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 16 जून को बड़े मंगल पर शहर के विभिन्न मंदिरों में बजरंग बली की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। इसके साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिले में योग दिवस 21 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर गोरखनाथ मंदिर व गोरखनाथ मंदिर के में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से योग दिवस पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को योग दिवस को लेकर गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में योग किया जाएगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं लतिका चौहान के गाए रुहेल खंडी लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत लतिका चौहान के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये एक और रुहेलखंडी लोकगीत।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: लतिका चौहान के गाए इस रुहेलखंडी लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त रेनू राजपूत और
1: मैं हूं इनके साथ फरीना। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज फिर से एक बार हम आपका दोनों मिलकर करते हैं
0: स्वागत और नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपके खतों की खुशबू की महक भी है और आपके संदेशों का प्यार भी है, तो आपकी पसंद के गीतों से सजाएंगे हम आज के इस कार्यक्रम की ये महफिल। तो कार्यक्रम की महफिल को सबसे पहले महकाते हैं खतों की खुशबू से।
0: बिल्कुल सही कहा फरीना तुमने। सबसे पहले हम लेते हैं अपने श्रोताओं के पत्रों को और उन्हीं की फरमाइश पर सुनाएंगे ये गीत।
1: तो कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो हमने लिया है फिल्म बलमा से। कुमार चानू आशा भोसले के स्वर में इस गीत को स्वर दिया है
0: कुमार चानू और आशा भोसले ने। और फरमाइश करता है आप सभी श्रोतागण, पसंदकर्ता जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फईम, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद दानिश। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से ही राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी, मालती स्वाति और कुमारी देविका चौधरी।
1: अच्छा रेनु जी, आप देख रही हैं अभी हमने अपने श्रोताओं को नंबर भी नहीं बताया और स्क्रीन पर कितने सारे मैसेज आ रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा फरीना तुमने। और अब हमने ये पत्र तो ले लिया, अब ये भी देखते हैं कि हमारे जो व्हाट्सएप मैसेज आए हैं वो किन श्रोताओं के हैं, उनके नाम भी जरा बता दीजिए आप।
1: हाँ, मैं उनके नाम पढ़ने से पहले अपने जो कुछ नए श्रोता जो हमसे आज ही जुड़े होंगे उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए अपने कार्यक्रम का नंबर बता दूं।
0: हाँ जरूर।
1: तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। लेकिन श्रोताओं, आपको मैसेज करते हुए एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप अपना मैसेज पहले तो एक ही बार भेजें और दूसरे ये कि जो भी गीत आपको सुनना है उसके शुरुआती शब्द, फिल्म का नाम और अपना नाम और पता जरूर भेजें, लेकिन मैसेज सिर्फ एक बार भेजने की कोशिश करें ताकि हम आपका और अन्य श्रोताओं के मैसेज इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो पढ़ते हैं कार्यक्रम का ये पहला व्हाट्सएप मैसेज जो हमें भेजा है ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, आलोक चंसौलिया। ये मैसेज हमें भेजा है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। आप हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। ये मैसेज हमें भेज रहे हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर बाई, प्रभु लाल बागरी। ये मैसेज इन्होंने हमें भेजा है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालवाड़ राजस्थान से। अगला मैसेज जो हमने लिया है ये हमें भेजा है लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनेरी और प्रकाशवीर राजपूत। उनके साथ हैं डोंडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया। चंदर नगर से हैं रजनी सिंह चौहान, पिंकी दुर्गा कुमारी। जेल रोड रायगढ़ से उन्हीं के साथ मैसेज कर रहे हैं लाल चंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा। ये मैसेज हमने लिया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से जो भेज रहे हैं हमें राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। ये मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से। पसंद करने वाले हैं इस गीत को विनोदपुरी, वीजे रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी।
0: तो फरीना सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये फिल्म बलमा का ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फरीना, अब हम सुनवाते हैं फिल्म हीर रांझा का ये गीत, जिसे हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि अपनी फरमाइश पर कि हमें ये गीत सुनवा दीजिए आप। ठीक है,
3: तो ये गीत जो हमने लिया है, इसको आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, संगीत मदन मोहन का है और गीतकार हैं कैफी आज़मी। इस गीत के लिए फरमाइशकर्ता हमारे ये श्रोता हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कौसर,
2: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह।
3: इसी गीत के लिए ये फरमाइशी मैसेज हमें भेजा है फरुखाबाद साहब गंज चौराहा यूपी से, सुरेश चौरासिया, सरोज चौरासिया, सुबोध चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक कासगंजी ने।
2: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर, सुरेंद्र, मनोज और इनके परिवार के सभी सदस्य।
3: इसी गीत को सुनना चाहा है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने।
2: और इसी गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है बिहार एनक्लेव दिल्ली से मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी चुग ने।
3: और इसी गीत को पसंद किया है चंदर नगर सहारनपुर से ओम प्रकाश चौहान और सोनाली चौहान ने। शाही मार्केट सुहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी भी इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेज रहे हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार भी हमें इस गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता। और ये अगला मैसेज देखिए रेणु जी,
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवान। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। तो फरीना सुनाई, आइए हम सुनाते हैं अपने श्रोताओं को फिल्म हीर रांझा का एक गीत जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम में आज हम आपके साथ हैं, मैं फरीना और मेरे साथ हैं
1: रेनू राजपूत।
0: और रेनू जी, आपने एक बात नोटिस की है?
1: क्या फरीना?
0: कई श्रोता हमारे मैसेज कर रहे हैं कि हम दोनों अपनी पसंद का गीत उन्हें
1: सुना दें। ये तो मैं भी स्क्रीन पे देख रही हूँ कि बहुत सारे श्रोता बोल रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई गीत हमें सुनवाइए।
0: तो हमारी जोड़ी कौन सा गीत उनको सुनवाने जा रही है?
1: तो फरीना, हमारी जोड़ी उन्हें गीत सुनवाने जा रही है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये गीत, जिसे गाया है रूप कुमार राठौर ने। और इसी गीत को सुनने के लिए जो हमें फरमाइश भेजी है, ये है नई बस्ती गंज झुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने।
0: और ये मैसेज हमें जो भेजा है, ये भेजा है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। आप हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार हमें ये मैसेज कर रहा है गीत सुनने के लिए।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा फरीना तुमने। तो इसी गीत को सुनने के लिए जो हमें मैसेज आया है वो है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू का।
0: और हमारी पसंद के गीत को सुनने वाले हमारे अगले श्रोता हैं जो मैसेज कर रहे हैं,
1: मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशर, डॉक्टर इशिता साहनी और डॉक्टर सोनम।
0: बरका काना से आप हैं नाजनी तबस्सुम, अफजल

0: इब्राहिम मोहम्मद इफ्तिखार इब्राहिम।
1: और हमारी ही फरमाइश का गीत सुनने के लिए ये हैं जगदीश खरगोनिया और मोहित कुमार।
0: सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से पसंद करने वाले हैं गीत को विनय मोहन खारवन मीनाक्षी प्लोमा और
1: डॉक्टर
0: डॉक्टर
1: ईशानी
0: ईशानी।
1: दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।
0: और हमारी पसंद के गीत को सुनने के फरमाइशकर्ता ये हमारे श्रोता हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी।
1: और ये भी हमारी ही पसंद का गीत सुनना चाहते हैं धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है झज्जर
1: झज्जर
0: हरियाणा
1: हरियाणा
0: से।
1: से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने।
0: तो आइए इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में रूप कुमार।

0: मैसेज जो हमने पढ़ने वाले हैं, उन्होंने जो हमें गीत भेजा है उनका उनको बड़ी बेसब्री से इंतजार है अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए, और वो उन्होंने काफी दिन से मैसेज कर रखे हैं कि हम मुझे ये गीत सुनवाएं। तो ये
1: तो
0: मैसेज
1: फरीना, कौन सी फिल्म का वो गीत है जो अभी आप सुनवाने वाली हैं?
0: जी, वो गीत है हमारे श्रोता की फरमाइश पर फिल्म डॉन का, और शब्द है जिसका मुझे था इंतजार, वाकई में बहुत इंतजार है
1: अच्छा
0: इनको। और इसको आवाज दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने, संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी, और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। तो इस गीत के फरमाइशकर्ता हमारे ये श्रोता हैं बिहार रेडियो लिसनर क्लब से, सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा।
1: और हमें इसी गीत को सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां।
1: डोंगरगांव से जिला राजन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजाभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मा गजभिये।
0: इसी गीत के फरमाइशकर्ता हमारे ये श्रोता हैं नारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या मल्होत्रा और सुचा पाठक।
1: गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित।
0: महाराष्ट्र बीड शहर से आप हैं प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल।
1: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल वर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टू बजाज और साहिल।
0: भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजीन नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग भी इसी गीत की फरमाइश हमें भेज रहे हैं।
1: इसी गीत को सुनना चाहते हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।
0: बाबू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद मध्य प्रदेश से ये मैसेज हमें भेज रहे हैं शालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, उनके साथ हैं घूंघट रेडियो श्रोता संघ से जिला धार धर्मपुरी से हैं मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।
0: मालियान सरदना मेरठ से आप हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, जिव्यम जैन।
1: और शेरपुर कला गाजीपुर से ही अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।
0: और ये हैं पश्चिम ठोक गंजुंडवारा से मनवर लाल, नसरीन मिर्जा, अरबाज मिर्जा, शहबाज मिर्जा।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल।
0: यही गीत

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे।
2: और कार्यक्रम का अगला

0: सुनना चाहते हैं उमा राज और जगदीश राज।
1: इस गीत को सुनना चाहा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। आप है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। तो आइए आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म डॉन में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म डॉन का ये गीत, जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। इस कार्यक्रम में हमारे नए श्रोता जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 9457078288।
1: और हमारे जो श्रोता हमें पत्र भेजना चाहते हैं उसके लिए हमारा पता है

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। तो कार्यक्रम का अगला गीत हम कौन सा सुनवा रहे हैं रीनू जी?
1: कार्यक्रम का अगला गीत है हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म नगीना का, जिसे आवाज दी है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने।
0: और इसके लिए ये पसंदकर्ता हमारे श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज स्वीट अंशुमन बेबी ओवी।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय।
0: दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं
0: इनका
1: ग्राम पैजनिया
0: तो
1: जिला जालौर उत्तर प्रदेश से। हाँ, पढ़ तो चुके हैं लेकिन इन्होंने हमें दोबारा से मैसेज किया है। ये हमारे श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया।
0: तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि आप एक बार मैसेज करने के बाद दोबारा मैसेज ना करें। तो ये अगला मैसेज हमें भेजा है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी ने। ये मैसेज
1: अगला मैसेज हमें मिला है जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और इनके ही दोस्त सुरेश चौरसिया का।
0: और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे श्रोता रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी। ये भेज रहे हैं मैसेज महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से।
1: और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा।
0: इसी गीत को पसंद किया है आदर्श नगर मलौट पंजाब से आप हैं निवान शर्मा, सायना शर्मा, सौरव शर्मा, मैंडी शर्मा, योगेश शर्मा, मीना शर्मा। और ये अगले श्रोता हमारे हैं
1: अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक।
0: और इनके साथ हैं विनोद पुरी और जयपाल यादव। ये मैसेज हमें भेजा है, फिर दोबारा से इन्होंने हमें मैसेज कर दिया है। ये अगला मैसेज हम देख रहे हैं स्क्रीन पर।
1: हमारी अपने श्रोताओं से अनुरोध है कि वो अपने मैसेज रिपीट ना करें क्योंकि हमारे नए श्रोताओं को भी के मैसेज के लिए भी हमें समय मिलना चाहिए।
0: और अगले श्रोता हमारे हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और इनके ही परिवार के सदस्य जिशान वारसी।
0: ये मैसेज हमें भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। उनके साथ हैं मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुहरेकर।
1: और अगला मैसेज हमें मिला है दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेल लाल वर्मा का।
0: तो आइए सब की फरमाइश पर हम जो गीत सुन रहे हैं नगीना फिल्म से जिसको आवाज़ दी है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने, आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे का और केंद्र है आपका अपना आकाशवाणी नजीबाबाद। और कार्यक्रम का अगला गीत जो हम अपने श्रोताओं

0: दी है।
1: उदित नारायण और अलका याग्निक ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण ग्राम पीपर्स सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: इस गीत को सुनना चाहा है मामुलवाड़ी महाराज से आप हैं सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, टीएस निहावकर, तुषार करांगले। और अगले श्रोता हमारे हैं
1: एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण परिवार।
0: रेणु जी, इनका पत्र हम ले चुके हैं,
1: ले चुके हैं पहले, तभी मैं बीच में रुक गई।
0: हाँ चलिए, ये
1: गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया और इब्राहिम सद्दाम।
0: और ये अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता।
1: और अगला मैसेज हमें मिला है ग्राम जहानाबाद नजीबाबाद जिला बिजनौर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद आरिश, जुबिया हुरेन, अक्षा रानी, इंशा, अरीबा, अनाबिया, आर्या और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: और हम शुक्रगुजार हैं उन श्रोताओं के जिन्होंने हमें कार्यक्रम में हमारी बात सुनकर हमें एक बार मैसेज किया है और हमें सहूलियत दी है और अगले श्रोताओं को भी सहूलियत दी है। और ये अगर हमारे सारे श्रोता ख्याल रखें तो प्रोग्राम और अच्छा हो जाएगा,
1: हमारे नए श्रोताओं को भी हमारे कार्यक्रम में जगह मिलेगी
0: और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना ही चाहिए
1: जी।
0: तो अगला मैसेज हमारे श्रोता जो हमें भेज रहे हैं वो है दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया ने बागपत उत्तर प्रदेश से आप ये मैसेज हमें भेज रहे हैं।
1: तो फरीना, हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को फिल्म तेरे नाम का ये गीत।
0: जी हाँ, जरूर सुनवाइए।

0: श्रुता, हालांकि हमें आपसे मिलना, आपके मैसेज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और हमारा मन भी करता है कि हम लगातार आपके मैसेज पढ़ते रहे, लेकिन हमें वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये सबसे अच्छी बात होती है। तो कार्यक्रम में वक्त का ख्याल रखते हुए कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसको हमने लिया है
1: फिल्म मन से, और इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और पसंद करने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो हैं डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी ने, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा।
0: इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है उत्तम नगर दिल्ली से भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल और कमला रानी ने।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा, असद, अरहाम और आलम हाशमी।
0: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है हमारे श्रोता गांव कैरो, जिला तरन तारण, पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलौत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरु शब्द।
1: परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा रानी, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय, बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान।
0: इसी गीत को पसंद किया है ये है हमारे श्रोता शेरकोट बिजनौर से निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान, महक, रामेश और उनके परिवार के सभी सदस्य। और ये अगला मैसेज जो हमें भेजा है हमारे श्रोता हैं,
1: ये है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब और संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन।
0: इसी गीत को पसंद किया है हिंगोली महाराष्ट्र से उत्तम जमदाड़े, हनुमान बॉटके, नंदा बॉटके, शाहजी बॉटके ने।
1: और अगला मैसेज हमें किया है इसी गीत को सुनने के लिए आशा नारंग, सोनाली नारंग, सुरेश नारंग ने सहारनपुर से।
0: तो कार्यक्रम का ये अंतिम मैसेज जो हम ले रहे हैं ये हमें भेजा है जसपुर रोड दुलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और अलशिफा परवीन ने। तो सुनते हैं इन सब की शुरुआत फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म मन से।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न करने की अपनी दोस्त रेनू राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं, पेश है चित्रपट संगीत। श्रोताओ, 11 बजते ही प्रथम सभा के द्वितीय भाग में हम एक बार फिर से आपकी सेवा में आ जाते हैं। और श्रोताओ, ये आपकी मोहब्बत ही तो है कि हम हर महफिल आपके लिए सजाते हैं। मोहब्बत का ये रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी एक मुस्कान, एक याद और किसी की मौजूदगी का एहसास ही दिल को सुकून देने के लिए काफी होता है। जैसे आप हमें देखते नहीं लेकिन दिल से जुड़े रहते हैं। कुछ लोग भले ही आंखों से ओझल हो लेकिन दिल की धड़कनों में हमेशा हमारी धड़कते रहते हैं। तो आइए अब ऐसे ही दिल के आलम में हम आपको शुरुआत में कार्यक्रम की एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाते हैं जो आपको बताएगा कि वाकई में मोहब्बत की अनकही दास्तां और दिल का आलम क्या होता है।

0: कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया कुमार सानू के स्वर में, जिसको संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और गीत रचना थी समीर की। फिल्म का नाम था आशिकी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

हर दिल जो प्यार करेगा। इस फिल्म में आप सुन रहे थे उदित नारायण अलका याग्निक को। समीर की गीत रचना और धुन तैयार की थी अनु मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और एमजी श्री कुमार के स्वर में, जिसको संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने और गीत रूप दिया है महबूब ने। फिल्म का नाम है टोली सजा के रखना। श्रोताओं, कभी कभी हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव कुछ ऐसे होते हैं जो मुलाकातों में नहीं, बल्कि हम अपने उन भावों को खतों में ज़्यादा खूबसूरती से बयां कर देते हैं, जैसे आप लोग कार्यक्रम गीत तुम्हारे में करते हैं। और जब वो खत हम तक पहुंचते हैं, आपके प्यार भरे शब्दों की फूल सजाकर हमारे पास आते हैं, तो उनका रंग और भी गहरा हो जाता है। और बात जब प्यार मोहब्बत की हो तो ये एहसास खत में लिखकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि इनमें लिखकर जाता है दिले बेकरार का किस्सा।

श्रोताओं, कार्यक्रम की महफिल को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक और खूबसूरत मोहब्बत भरा गीत सुनवाते हैं, जिसने मोहब्बत को एक नई पहचान दी, नई उड़ान दी। और ये गीत जब भी सुना जाता है ना, तो इसके सुरों की खूबसूरत दास्तां मोहब्बत को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और ये गीत आज भी लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है। तो आइए आनंद लीजिएगा इस गीत का।

0: लता मंगेशकर, कुमार सानू को आप सुन रहे थे फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, पल गुजरते चले गए और देखिए, पलों को सुरों में ढालते हुए हम कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ आ पहुंचे हैं। और हमारा ये कारवां जिस गीत की तरफ जा रहा है, वो गीत हमने लिया है फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से, जिसको आवाज दी है बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक ने। नदीम श्रवण के संगीतबद्ध किए इस गीत को शब्दों में पिरोया है समीर ने। श्रोताओं, आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ। एक प्यार और उसकी खूबसूरत एहसासों से सजा ये गीत, तो चलिए कार्यक्रम की विदाई के वक्त सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। सुबह के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का एपिसोड संख्या 1309।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।

0: कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेर थनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोईता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोईता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोईता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक

0: पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
2: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मां मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
2: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि मां मेरी मां है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
1: हाँ।
2: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
0: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी मां के पास जाओ, मां बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच, तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।

0: सेठ, मुझे देर हो रही है।
1: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
0: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
2: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
4: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
4: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
0: माँ
4: ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
4: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
4: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। आई श्रोताओं, आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की।

डॉक्टर शिव नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखित पूर्व प्रसारित नाटक सुबह का भूला, जिसके प्रस्तुतकर्ता होंगे विभूति भूषण भट्ट, प्रस्तुति सहयोग होगा सुंदरलाल गंधर्व का। इसको आप सुन सकेंगे आज रात 10 बजे। शाने आलम और साथियों की गाई कुछ कवालियों का आनंद लीजिएगा। आज शाम 7:47 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत।

किरण उत्सव मंडप बिजनौर में वैश्य समाज शाखा बिजनौर द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन प्रतिभा संपन्न सम्मान समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा आज शाम 7:32 पर। वाचन स्वर और प्रस्तुति सहयोग होगा जसवंत सिंह का। किसान भाई अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे रोजाना की तरह ही शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में पशु चिकित्सा अधिकारी करतपुर डॉक्टर मोहम्मद कासिम अली की जितेंद्र कुमार से पशुओं में गर्भधारण

में आ रही समस्याएं और समाधान विषय पर भेंटवार्ता सुनिएगा। साथ ही सुनिएगा टमाटर मिर्च की नर्सरी और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर चर्चा।

विविधा कार्यक्रम में डॉक्टर भावना वत्सल की नैतिकता की कसौटी पर जलवायु परिवर्तन पर पूर्व प्रसारित वार्ता आप सुन सके हैं आज शाम 6:45 पर। युवा साथी अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे रोजाना की तरह ही शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की सौगातें होंगी बुझो तो जाने कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर ताना बाना, कहानी के उस पार और बूस्टर। इसके साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का।

मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की आय दोगुनी करने हेतु सरकारी योजनाएं किसान क्रेडिट कार्ड योजना ENAM योजना के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी आज शाम 5 बजे। हमारे दिल्ली केंद्र से सैनिकों के लिए विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुनेंगे आज शाम 4 बजे।

महिला जगत कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 1:15 पर। कार्यक्रम में आज क्रम रहेगा आदि आबादी से और भूली बिसरी यादों का। हमारी इस सभा के अंत में यानी 2:30 पर सुनिएगा एक ही संगीतकार कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार चितलकर यानी सी रामचंद्र पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ शेष मुख्य कार्यक्रमों की। इस समय दोपहर के 12:05 हुए हैं। समय हो चला है सैनिक भाई बहनों के विशेष कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। तो आइए सुनेगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

है और हमारा कल उज्जवल है। आपके त्याग, समर्पण और राष्ट्रीय प्रेम को नमन करते हुए कार्यक्रम में सबसे पहले हम आप के लिए ही प्रस्तुत कर रहे हैं ये गीत, जिसमें भारत के वीर सपूतों के साहस और स्वाभिमान के शौर्य का एक अद्भुत सा उत्सव है।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफी बलबीर और साथियों के स्वर में। ओपी नैयर ने इसकी धुन तैयार की थी और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। फिल्म का नाम था नया दौर। श्रोताओं, हमारे सैनिकों के जज्बे और उनकी देश सेवा को हम हमेशा सलाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम अपने हर दिन को खूबसूरती से जीते हैं। और उनके सम्मान में अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो ना जाने कितनी फिल्म्स ऐसी हैं जो उनके सम्मान में बनी हुई हैं। अगर हम उन फिल्मों की गिनती शुरू करें तो शायद हमारी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। इतनी लंबी लिस्ट है उनके सम्मान में जो बॉलीवुड में फिल्में बनी हैं। तो हमने ऐसी ही एक फिल्म का गीत आपके लिए चुना है। वो फिल्म है आँखें, जिसमें जो गीत हमने लिया है उसको आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत

सीमा पर तैनात हमारे सैनिक केवल देश की ही नहीं अपने सपनों, अपने परिवार और अपने प्रियजनों की यादों की भी पहरेदारी करते हैं। कर्तव्य की राह पर चलते हुए कई बार उन्हें अपनों से, अपने सपनों से दूर रहना पड़ता है। ऐसे ही जज्बातों को बेहद ही खूबसूरत ढंग से बयां करता है हमारे कार्यक्रम का अगला गीत, जो बताता है कि युद्ध भूमि में बैठे सैनिक अपने मन की अनकही पीड़ा और यादों को कैसे स्वर देते हैं। तो आइए चलते हैं इन्हीं भावनाओं को छूने इस गीत के जरिए।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में हकीकत फिल्म में ये आप गीत सुन रहे थे, जिसको संगीत दिया था मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था कैफ़ी आज़मी ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसको हमने लिया है फिल्म आगमन से। आनंद बख्शी के लिखे गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में इसको आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। हमारे वीर सैनिक जिनकी चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनके कदम कभी नहीं रुकते और हम भी यही कल्पना और करते हैं कि हमारे सैनिक हमेशा अपने कर्तव्य पर अड़िग रहें और हमेशा हर युद्ध में विजय पाए। उनकी विजय का विश्वास ही हमारे देश की हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए इसी जज्बे को महसूस करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत में, जिसे हमने लिया है फिल्म आक्रमण से।

सैनिकों के शौर्य पराक्रम और देश प्रेम को सलाम करते हुए इसी गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाई बहनों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मिड डे मेलोडी सुनने वाले सभी श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और श्रोताओं, आज के मिड डे मेलोडी कार्यक्रम को और भी ज़्यादा मधुर बनाने के लिए हमने इसको समर्पित किया है उन कलाकारों पर।

उनका आज जन्मदिन है या पुण्यतिथि है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी फिल्म सिनेमा के बहुमुखी फिल्मकार एसडी नारंग को, जिनका जन्म हुआ था 18 जून 1918 को। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक के रूप में आपने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार फिल्में दी हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं उन्हीं के निर्देशन में बनी फिल्म शहनाई का ये गीत, जिसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। राजेंद्र कृष्ण के शब्दों में लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने। तो लीजिए, आनंद लीजिएगा इस गीत का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सगाई से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की, गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन तैयार की है रवि ने। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी एस डी नारंग का की। एस डी नारंग जिनकी फिल्में जैसे दिल्ली का ठग, शहनाई और सगाई, ऐसी फिल्में हैं जिसमें मनोरंजन के साथ साथ भावनाओं और पारिवारिक मूल्यों को भी बड़े ही खूबसूरती से उभारा गया है। उनकी फिल्में ही नहीं बल्कि उनका संगीत भी दर्शकों के दिल में खास जगह रखता है। उनकी चर्चित फिल्मों में शहनाई, सगाई, शहनाई का गीत तो हम आपको सुनवा चुके हैं, तो आइए अब सुनवाते हैं सगाई का ये अगला गीत। और यही गीत अगला जो हमने लिया है, वैसे तो हम उनके गीत और उनकी फिल्मों के गीत सुनवाएं तो पूरा कार्यक्रम भी कम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ हमने कार्यक्रम में सिर्फ उन्हीं के फिल्मों के दो फिल्मों के गीतों को चुना है। तो अगला गीत फिल्म सगाई से, और ये गीत उनकी रचनात्मकता और सिनेमा के प्रति समर्पण को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है।

मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उन बॉलीवुड के सितारों को जिनका ताल्लुक आज के दिन से है। तो अब बात करते हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनके सहज अभिनय और सादगी को हर कोई पसंद करता है और आज ही मना रहे हैं अपना 56वां जन्मदिन। वो है तमिल, मलयालम और हिंदी सिनेमा के मासूम से दिखने वाले अभिनेता अरविंद स्वामी। 18 जून 1970 को तमिलनाडु के कुमकोणम में जन्मे अरविंद स्वामी साल 1990 में कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग किया करते थे और एक विज्ञापन में प्रसिद्ध निर्देशक मणि रत्नम की जैसे ही उन पर नजर पड़ी तो बस वहीं से शुरू हो गया उनके फिल्मी सफर का सुनहरा अध्याय और वो बढ़ चले आगे। फिल्म रोजा में उनको मणि रत्नम ने ही मौका दिया था। इस फिल्म से अरविंद स्वामी सबके दिलों पर छा गए। रोजा की सफलता के बाद मणि रत्नम ने उन्हें अपनी एक और यादगार फिल्म में लिया जो आई थी साल 1995 में। इस फिल्म ने सामाजिक एकता का संदेश दिया और इसमें अरविंद स्वामी शेखर नाम का किरदार निभाकर सफलता के उस शिखर पर पहुंच गए और ये फिल्म थी बॉम्बे। जहां अरविंद स्वामी तमिल और हिंदी सिनेमा में धूम मचा रहे थे वहीं 1998 में अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा निर्मित फिल्म सात रंग के सपने में आपने मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म आपकी मूल रूप से पहली हिंदी फिल्म रही। तो आइए सुनवाते हैं इसी फिल्म का ये शीर्षक गीत जिसको स्वर दिया है अलका याग्निक और एमजी श्री कुमार ने। भूषण दुआ के संगीत निर्देशन में इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

अलका याग्निक, एमजी श्रीकुमार की आवाज में सात रंग के सपने फिल्म का ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया से, जिसको आवाज दी है उदित नारायण ने। जतिन ललित के संगीत निर्देशन में इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। श्रोता, 1997 में अरविंद स्वामी फिल्म सपने में नजर आए, जो तमिल की मिनसारा कुनरवू की हिंदी रूपांतरण थी। इसमें आपके साथ काजोल और प्रभु देवा भी थे। इस फिल्म ने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। साल 2000 में हिंदी फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया प्रदर्शित हुई। इसके बाद आपने फिल्मों से एक लंबा विराम ले लिया और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने में लग गए। लगभग 13 वर्षों के गैप के बाद आप अभिनय की दुनिया में फिर से लौटे हैं और फिर से एक बार आपने दर्शकों का दिल जीत लिया है। तो चलिए बात और अभी और भी करेंगे, फिलहाल सुनवाते हैं उनकी फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया का ये खूबसूरत गीत।

0: कहाँ?
1: चली चली।
2: कहाँ?
1: चली चली।
2: आऊँ।
1: चली चली।
0: अरे किधर?

0: जल्दी
1: कहाँ?
0: जल्दी जल्दी
1: कहाँ?
0: जल्दी जल्दी
1: अरे किधर?

और हमारी यादों में बस गई थी 18 जून 2002 का दिन, जब बॉलीवुड ने अपनी खूबसूरत अदाकारा नसीम बानो को खोया था। नसीम बानो हिंदी सिनेमा की वो खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं जिनके सौम्य अभिनय, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उनको कहा जाता था फेरी फेस, यानी परी जैसे चेहरे वाली। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत उन्हीं को समर्पित करते हुए उनकी फिल्म अनोखी अदा से हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसको आवाज दी है शमशाद बेगम ने। नौशाद के संगीत निर्देशन में इस गीत की रचना की है शकील बदायूनी ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का मिड डे मेलोडी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अपराह्न के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन

परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is set to hold a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris today as part of efforts to deepen the India-France economic and industrial cooperation. The Prime Minister will also attend the VivaTech Summit alongside French President Emmanuel Macron. The summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. India will have the largest national pavilion at this edition of VivaTech Summit, a fitting symbol of the enormous potential for partnership between the Indian and European innovation ecosystem. Union Home Minister Amit Shah has said the past 12 years of Prime Minister Narendra Modi's government have been a golden era of confluence of development and heritage. In a social media post today, Mr. Shah said in these 12 years, the construction of Sri Ram Janmabhoomi Mandir, Kashi Vishwanath Corridor and Ujjain Mahakal Lok took place, while world-class connectivity, infrastructure projects and initiatives like Make in India have given unprecedented momentum to the country's development journey. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu today informed that the first cargo flight has landed at Noida International Airport, carrying multiple goods, including leather goods and auto parts, from Chennai. In a social media post, the minister said that Made in India mobile phones, auto parts and accessories were dispatched from the Chennai airport, strengthening supply chains and creating new opportunities for local industries. The airport began commercial operations 2 days ago. The Calcutta High Court today declined to grant any interim relief on West Bengal Assembly Speaker Ratindra Bose's decision to appoint breakaway Trinamool Congress MLA Ritabrata Banerjee as the leader of opposition in the Assembly. Hearing a petition filed by TMC MLA Shobhandeep Chattopadhyay challenging the rejection of his nomination and Banerjee's appointment, Justice Krishna Rao refused to stay the Speaker's decision. The court directed the respondents to file their affidavits within 3 weeks, while the petitioner has been granted 2 additional weeks to file a reply. The matter will be heard next on the 28th of next month. In Jharkhand, voting for 2 Rajya Sabha seats is underway, with JMM candidate Baidyanath Ram, Congress nominee Pranav Jha and independent candidate Parimal Nathwani in the fray. Polling began at 9 this morning and will continue until 4 in the evening. Counting of votes will commence at 5 p.m. following which the results will be declared. In Mizoram, voting for the lone Rajya Sabha seat is also underway, with candidates from the ruling Zoram People's Movement and the opposition Mizo National Front locked in a direct contest. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today inaugurated the 3-day public welfare camps in New Delhi. The camp is inspired by Prime Minister Narendra Modi's 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Talking to the media after the inauguration, Ms. Gupta said the government has organized these camps at 42 locations across the national capital. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has directed all food business operators to use only food-grade and corrosion-resistant knives, blades and other cutting equipment in food handling and processing activities. In an advisory, the food regulator noted that some food businesses have been found using rusted, corroded, chipped, painted, damaged or otherwise unsuitable knives and cutting tools. According to FSSAI, the use of such equipment can lead to physical, chemical and microbiological contamination of food, posing risks to consumer safety. A landmark memorandum of understanding between the United States and Iran has come into effect, bringing an immediate halt to nearly 4 months of direct conflict and opening a 60-day window for negotiations on a comprehensive peace settlement. The 14-point agreement, signed electronically ahead of a planned meeting in Switzerland, establishes an immediate ceasefire, commits both sides to refrain from hostile actions, and sets out a framework for addressing long-standing disputes over Iran's nuclear program and regional security issues. In FIFA World Cup 2026, Colombia began their campaign with a convincing 3-1 victory over Uzbekistan in Group K in Mexico City this morning. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 101 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि उन्नाव को तरक्की की दौड़ में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर की तामीर के लिए जमीन तहवील की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब तेजी के साथ यहां इंडस्ट्रीज लगेंगी और नौजवानों को यहीं रोजगार मिलेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकरीरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में हिफाजत के बेहतरीन माहौल में मईशत को रफ्तार मिली है। वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों में यूपी की मईशत और फी कस आमदनी में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है।
2: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ डिवीज़न के अवामी नुमाइंदों के साथ माली साल 2026-27 के लिए महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के बारे में मीटिंग की। इस मौके पर वजीर आला ने हिदायत दी कि मौसूल होने वाले तजावीज़ को तरजीह दी जाए और जल्द अज जल्द एक्शन प्लान हुकूमत को भिजवाया जाए ताकि रवां माह के आखिर तक उनकी मंजूरी दी जा सके और काम शुरू हो सके। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत मफाद आम्मा के हर मसले के तई हसास है और अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ और मुतालबात को तरजीही बुनियाद पर नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आज हम नक्सलिज्म के खात्मे और नक्सल से मुतासर इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत की अहम कोशिशों पर बात करेंगे।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के 59 जिलों में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। इस इम्तिहान में तकरीबन 3 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने का इम्कान है। वजीर आला ने कहा कि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिखाने पर रियासती ट्रांसपोर्ट की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुहर्रम के पहले दिन कल लखनऊ में बड़े इमामबाड़े से रवायती शाही जरी का जुलूस गम और अकीदत से निकाला गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता हुआ रात गए छोटा इमामबाड़ा पहुंचा। जुलूस में आज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए गए थे। बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर हुकूमत हिंद की वजारत आयुष के जरिए अहतमाम गंगोत्री से गंगा सागर योगा यात्रा के एक हिस्से के तौर पर कल वाराणसी में एक योगा और अवामी राबता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जो 21 जून को मनाया जाएगा। रियासती हुकूमत में आयुष के वजीर ममलकत डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वाराणसी के हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ये मुहिम 13 जून को गंगोत्री से शुरू हुई थी और 20 जून को गंगा सागर में अख्ताम पजीर होगी। वाराणसी इस सफर का एक पड़ाव था। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रनों से शिकस्त दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए शुभमन गिल और ईशान किशन की सेंचुरियों की बदौलत अफगानिस्तान को जीत के लिए 403 रन का हदफ दिया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 44 ओवर और 3 गेंदों में 232 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
4: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अपराह्न के 1:15 हुए हैं। अब आप सुनिएगा हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

सभी बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का महिला जगत के आज के इस अंक में। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत अपनी बात के साथ ही करेंगे। बहनों, मौसम कोई भी हो, हमें हमेशा मौसम से शिकायत ही रहती है, फिर तेज बारिश हो, ठंड हो या आजकल की ये बेतहाशा गर्मी। मौसम तो आते जाते रहते हैं और हर मौसम अपने साथ प्रकृति की अनमोल चीजें भी हमें देता है। अब आजकल की गर्मियों की ही बात ले लें तो कितने रसीले फल सब्जियों का आनंद हम लेते हैं इस मौसम में। अगर ये गर्मी ना होती तो ये सब्जियाँ, ये फल भी हमें ना मिलते जो इस मौसम में ही प्रकृति हमको देती है। और अगर बात गर्मियों की करें तो सबसे अधिक इसमें हमें जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है वो है जल का। जल के बिना तो एक पल भी आजकल के समय में तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। वैसे तो मौसम कोई भी हो, जीवन भर हमें जल के बिना जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जल है तो जीवन है और ये हमारे लिए प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल धरोहर है। लेकिन हम कितने लोग इस बारे में सोचते हैं कि हमें इस जल को बचाना है, ये जल हमें इसी तरह से मिलता रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी ये जल मिलता रहे, उनका जीवन भी चलता रहे, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी कुछ जल से ही तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बारे में सोचना भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम इसका उपयोग करते हैं तो इसको संभाल कर रखना, इसको बचा कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर हम आने वाले मौसम की बात करें तो अब बरसात का मौसम बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में जल को बचाने का सबसे अच्छा विकल्प होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी हाँ, वर्षा जल का संचय करना। और वर्षा जल के संचय को लेकर आज सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनेक तरीके बताए जाते हैं कि किस तरह से हम वर्षा का जल संचय कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अधिक खर्चे की भी आवश्यकता नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे प्रयासों से हम इस जल को बचाकर रख सकते हैं और जिस समय बरसात का टाइम नहीं रहता है इस जल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा ही होगा कि गर्मी में पानी की इतनी अधिक आवश्यकता होती है कि पेड़ पौधों में भी डालना है। अगर हमें छोटी सी हमारी आगे अगर हमारे चाहे गमले हों, छोटी सी क्यारी हो, कहीं डालना है तो घर का जो पीने वाला पानी है वो घर के लिए ही कामों में इस्तेमाल होता है। ऐसे में जो हमारा ये बरसात के समय बचाया हुआ जल आता होता है वो उस समय काम आ जाता है और घर के अन्य कामों में भी, साफ सफाई में भी हम उस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब हम वर्षा के जल को संचय करते हैं तो जो भूमि का जल स्तर है वो भी इससे बढ़ता है, क्योंकि रिस रिस कर पानी जमीन के अंदर जाता है और यही इसी से जो पानी का लेवल है वो बढ़ता है। तो ये छोटे छोटे से प्रयास हैं जिससे कि हम वर्षा के जल को संचय कर सकते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है कि जिस जल का हम उपयोग कर रहे हैं, जिसकी कमी हमें अक्सर गर्मियों में नहीं अब तो और मौसम में भी देखने को मिलती है, तो इसकी कमी ना हो इसके लिए इन छोटे प्रयासों को जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। और हम ये ना सोचें कि ये काम सिर्फ सरकार का है या गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका है या जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पर्यावरणविद हैं वो ही इस बारे में सोचेंगे और वही इन चीजों का समाधान निकालेंगे, तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश है ये मुमकिन नहीं होगा जब तक कि हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे। और जल संरक्षण की इस चर्चा के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ संदेशों के साथ।

0: जनरल, हर पल जनधन का एहसास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: मैंने उन संदेशों के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सौंदर्य प्रतियोगिताएं सिर्फ फैशन और लुक्स को ही ध्यान में रखकर नहीं जीती जाती, बल्कि इसके लिए प्रतिभा, बुद्धिमता और ज्ञान होना भी बेहद ज़रूरी होता है। और अपने टैलेंट के बल पर और ज्ञान से जीता है मिसेज यूपी 2026 का खिताब हमारी आधी आबादी की आज की इस नायिका ने। तो जानते हैं उनके बारे में और अधिक आधी आबादी क्रम में।

0: टीचिंग मेरा प्रोफेशन है और मिसेज उत्तर प्रदेश का ये क्राउन पाना मेरा एक सपना था, और अपने प्रोफेशन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य पूरे करते हुए मैंने अपने सपनों को पूरा किया है। और मैं सबको यही कहूंगी कि सपनों की कोई समय सीमा नहीं होती, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसलिए जब तक उनका पीछा करो, जब तक कि आप अपने सपनों को पूरा ना कर लें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए।
1: ऐसा मानना है गुलशरण मिश्रा का। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के चंदनपुर की रहने वाली हैं गुलशरण मिश्रा। उनका जीवन एक पारंपरिक और मध्यम वर्गीय परिवेश में बीता। घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और समाज को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षिका का पेशा चुना। वर्तमान समय में वो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर काम कर रही है। शिक्षण कार्य के साथ साथ उनका रुझान फैशन और मॉडलिंग की ओर भी रहा। इसी के चलते उन्होंने हाल ही में अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पे मिसेज यूपी 2026 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। अप्रैल 2026 में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिसेज यूपी क्वीन ऑफ वर्च्यू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय मंच पर उन्होंने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और बुद्धिमता का शानदार प्रदर्शन कर ये ताज अपने नाम किया। इस ताज तक पहुंचने में उन्होंने कई राउंड पार किए। मिसेज यूपी 2026 से पहले गुलशरण मिश्रा ने साल 2015 में मिसेज लखीमपुर का ताज भी अपने नाम किया था। गुलशरण मिश्रा ने एक सामान्य गृहिणी और शिक्षिका से इस मुकाम तक पहुंचने का अपना सफर तय किया। ये उपलब्धि उन सभी विवाहित महिलाओं और कामकाजी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को भी जिंदा रखती है।
0: मैंने सभी महिलाओं को देखा है कि अगर उनसे कहें, जैसे सब मुझे मिलते हैं तो तारीफ करते हैं, अरे तुम बहुत फिट हो, अच्छी हो, कैसे होता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि चलो बाहर निकलो, जिम ज्वाइन करो, पैदल चलो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि समय नहीं है। तो समय आपके पास अपने आप नहीं आएगा, आपको अपने डेली के जो भी रूटीन है उसमें से अब समय अपने लिए स्वयं के लिए निकालना होगा। तो मैं सबको ये कहूंगी कि खुद को तवज्जो दो, क्योंकि जब आप खुद का स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा तभी आप एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकते।
1: गुलशरण मिश्रा एक शिक्षिका होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रही हैं। गुलशरण मिश्रा ग्रामीण इलाकों में बच्चों और स्थानीय लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और पेड़ लगाने के प्रति जागरूक करती रहती हैं। वो शिक्षा के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी काम कर रही है। पर्यावरण को लेकर उनका सपना है।
0: मेरा सपना देखिए, मेरे कुछ प्लान है फ्यूचर के, जैसे मैं वीमेन एम्पावरमेंट और ग्रीनरी के लिए काम करना चाहती हूँ मेरे जिले में, और यही मेरा सपना भी है और यही मेरा आगे के लिए मेरी प्लानिंग है भविष्य के लिए, और इसमें मैं सबका, जो भी कैपेबल लोग हैं, उनका सहयोग भी चाहती हूँ, क्योंकि ग्रीनरी से मुझे कुछ खास लगाव है। और महिलाओं की स्थिति जो मैं गाँव में देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद इंटीरियर में जॉब करती हूँ, उनको लेके भी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं, तो उनको भी अवेयर करना चाहती हूँ। यही दो प्लान मेरे मेन हैं।
1: गुलशरण मिश्रा सौंदर्य प्रतियोगिता और सामाजिक कार्यों में संतुलन बनाकर आज की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई है। वो सभी महिलाओं को संदेश देती हैं।
0: सपनों की ना कोई समय सीमा होती है, ना ही कोई स्थान सीमित किया जाता है, और ना ही कोई एक्सपायरी डेट होती है। और मेरे ख्याल से ये आपके अंदर है कि आप उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कितनी ईमानदारी से करते हैं। अपने सपनों का पीछा तब तक करें जब तक कि आप उन्हें पूरा न कर लें।

0: बहनों, ये था आधी आबादी का क्रम और अब चलते हैं यादों के सफर में। जी हाँ, यादें जो कि हमारे जीवन की धरोहर होती हैं और जीवन प्रयत्न हमारे साथ बीता हुआ समय यादों के रूप में चलता रहता है। तो आज यादों के सफर में हमारे साथ अपनी यादें साझा कर रही हैं प्रतिमा वर्मा और आपसे बातचीत कर रही हैं हमारी साथी भावना अरोड़ा भूली बिसरी यादें क्रम में।
1: आप सुन रहे हैं एक ऐसा सफर जहां वक्त की रफ्तार थोड़ी थम सी जाती है, जहां पुरानी यादों की खुशबू आज भी दिलों को महका जाती है। हमारे कार्यक्रम भूली बिसरी यादों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, ये वो किस्से हैं जो किताबों में नहीं मिलते। कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनकी खुशबू हमेशा दिलों में बसी रहती है। भूली बिसरी यादों में आज हमारे साथ हमारी वरिष्ठ मेहमान हैं श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, जो आज हमसे साझा करेंगी अपने जीवन के संघर्ष, अनुभव और अनगिनत यादों के बारे में। ये यादें हमारे समाज के लिए एक अनमोल धरोहर हैं। तो स्वागत है प्रतिमा जी आपका हमारे कार्यक्रम भूली बिसरी यादों में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले प्रतिमा जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए।
2: मैं प्रतिमा वर्मा, मैं नजीबाबाद में रहती हूँ। वैसे हाउस वाइफ हूँ, पर मैं स्पिरिचुअल लाइन में जुड़ी हुई हूँ, सत्संग वगैरह से।
1: तो आज हम आपसे आपकी यादों के झरोखों में झांकने वाले हैं और आप भी जरूर तरोताजा हो जाएंगी उन यादों से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो कहाँ आपका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह का बचपन रहा आपका?
2: जी बिल्कुल, मेरा मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। मेरे परिवार में सब लोग आर्य समाजी थे, तो हवन पूजा पाठ चलता ही रहता था, सत्संग वगैरह, तो वही मेरे को अच्छा लगता था। और इसी में हम लोगों को करना भी, हमें यही सिखाया गया, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया जाता था। पापा टीचर थे, मेरी सिस्टर भी टीचर थी, मेरे से 10 साल बड़ी थी मेरी सिस्टर। अच्छा। अभी भी मतलब सिस्टर हैं, तो बहुत ज्यादा उन लोगों से इंस्पिरेशंस रही।
1: तो कोई बचपन की कोई घटना जो आपको आज भी याद हो, कुछ अच्छी यादें या कुछ ऐसी यादें जिनको याद करके आज भी दुख का अनुभव होता हो?
2: बिल्कुल, मैंने बचपन में सब कुछ बहुत अच्छे से ही लगा, सब कुछ गलत नहीं लगता था। लेकिन एक बार मैं 12th में थी, तो मेरी NCC की टीचर थी, तो हम लोगों को यूनिफॉर्म मिलती थी व्हाइट कलर की, तो मेरी सलवार मिस हो गई थी। तो मैंने मैडम से बोला कि मेरी सलवार मिस हो गई है, तो बोली हमें नहीं पता, तुम लेकर के आओ। मैं घर गई, अपनी ही सलवार के पैचे थोड़े छोटे करके NCC की ड्रेस से मैच करके मैंने उनको दे दिए। तो बोलती है कि देखा अपनी साइड में दूसरी टीचर से, इतनी चोर होती हैं ये लड़कियां, और ये सलवार मार लेती अगर मैं इसको ऐसे ना बोलती तो। तो बड़ा मैं हर्ट हुई, क्योंकि बचपन से कभी ऐसा शब्द नहीं सुना था, ना ही कभी ऐसा काम किया था
1: जी।
2: तो दिल में बस यही सबक लिया वहां से, मेरे को यही लगा, इंस्पिरेशन मिली कि मुझे आगे अगर मैं टीचर बनूंगी तो मैं किसी बच्चे का ऐसे दिल नहीं दुखाऊंगी।
1: तो ये तो एक कुछ दुखद पल थे जो आपके बचपन से जुड़े थे। उसके बाद आगे किस तरह की पढ़ाई रही, पढ़ाई में आपने कहाँ तक की पढ़ाई की?
2: पढ़ाई मेरी सही रही, सब बढ़िया रहा, क्योंकि पापा टीचर थे तो वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते थे
1: जी।
2: और वैसे भी मेरे को उन लोगों का देख देख करके यही लगता था कि मुझे भी टीचिंग करनी है। तो MA BEd मैंने हिंदी में किया, BEd किया मैंने होम साइंस और हिंदी में, वो भी ठीक ठाक ही रहा। वैसे BEd मेरे को आफ्टर मैरिज, मेरे ससुर जी ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुमको BEd मैं कराऊंगा, तुम शादी कर लो। मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि मैं पहले जॉब करूंगी फिर शादी करूंगी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम कर लो, हम तुमको BEd कराएंगे
1: जी।
2: बस मैंने बिफोर मैरिज पर बिना BEd के भी बहुत जॉब की।
1: अच्छा, तो फिर शादी हो गई आपकी यहाँ पे, फिर विवाह के बाद भी आपने कोशिश की जॉब करने की?
2: हाँ, चांस भी मिला
1: जी,
2: परफेक्टली चांस, मतलब ऐसा मिला कि शायद वो पल 2-3 मिनट का फेर रहा, मेरी जॉब मिस हो गई
1: जी।
2: घर में से निकलने निकलने में ही किसी ने बोला कि आप इतना कमाओगे उतना तो हम दे देंगे।
1: अच्छा,
2: लेकिन वो आज सोचते हैं इस बात को कि मैं उतना नहीं दे सकता जितना आज मिलता
1: जी। तो ये एक अफसोस रह जाता है कि एक जॉब आपके हाथ से छूट गई।
2: बिल्कुल, जॉब के लिए मैंने ट्राई फिर दोबारा भी किया, पर वो चांसेस ऐसे बने कि मैं नहीं कर पाई।
1: आपके परिवार में कौन कौन है?
2: मेरे परिवार में इस समय तो हम लोग यहाँ पर हैं, बच्चे तो बाहर हैं, मेरे 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है।
1: सभी का विवाह हो गया?
2: 2 बच्चों का विवाह हो चुका है
1: जी,
2: एक अभी अनमैरिड है
1: जी,
2: और 3 ही बच्चे IT लाइन में हैं। भगवान की कृपा से तीनों अच्छे से सेटल है।
1: ये तो बात रही बचपन की और विवाह के पश्चात की, उसके बाद किस तरफ आपकी जिंदगी ने आपको मोड़ा?
2: जब मेरा विवाह हुआ मेरे को एक ही टेंशन रहती थी, सब लोग जॉब करते हैं, सब सैलरी लेते हैं, मेरे को मांगने पड़ते हैं, वो चीज मुझे बहुत हर्ट करती थी। लेकिन उसमें फिर
1: मतलब मेरे... आपको लगता था कि मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ, उसके बाद भी मैं घर में बैठी
2: कुछ
1: हूं,
2: करना
1: कुछ कर नहीं पा रही हूँ,
2: कर नहीं पा रही हूँ। तो फिर सारे ही लोग बिजनेस क्लास से यहाँ पर, तो कोई ज्यादा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे। फिर मैंने ही अपने आप ही सोचा कि मुझे कुछ घर में बैठ करके भी करना चाहिए। मेरी सिस्टर ने बोला तुम अपनी क्रिएटिविटीज कम मत करो, तुम घर में बैठ के भी कर सकती हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस समय तो जिंदगी में ऐसा मन में ऐसा लगता था कि हर वक्त मिलती रहती है सजा मुझे अनजानी सी, मैं तकदीर से कैसे पूछूं मेरा कसूर क्या है। तो
1: ये टसक हर समय मन में रहती थी कि मैं इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जॉब नहीं कर पा रही
2: हूं। बस यही कह सकती हूँ, बाकी मैं सब कुछ ठीक ठाक था
1: जी।
2: फिर मैंने घर में क्लासेस शुरू करी जो मेरे को आता था, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, और मैं फैब्रिक पेंटिंग और मशीन की कढ़ाई, हाथ की कढ़ाई, सॉफ्ट टॉयज, मेरे को ये सब चीजें आती थी पहले से ही। तो मैंने पहले तो यही कोर्सेज कराने शुरू करे, सॉफ्ट टॉयज वगैरह।
1: घर में ही आपने हॉबी क्लासेस स्टार्ट की?
2: हॉबी क्लासेस थी मैंने
1: जी।
2: बहुत अच्छे से ईश्वर की कृपा से इतना बढ़िया चला कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, पूरा टाइम मैं बिजी हो जाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगने

0: को बुलाया, मैंने मना किया, तीसरी बार उसने फोन किया कि आज का सुन लो फिर देखते हैं। तो थैंक्स है उसके कि उसने मुझे बुलाया,
1: अच्छा
0: क्योंकि फर्स्ट टाइम ही जब मैं गई वहां पर तो मैंने सुना, तो मुझे लगा कि हम पढ़े लिखे जरूर हैं पर हमें इस ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज्यादा है,
1: जी
0: क्योंकि जो हमारी बाहर की पढ़ाई है वो उतना हमको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, जो हमारे भीतर की पढ़ाई है वो यहीं से मिलती है।
1: जी
0: तो मैंने उनको बोला कि ये सत्संग तो मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ, पूरे नजीबाबाद में होना चाहिए ये सत्संग।
1: जी
0: तो जैसे उन्होंने कहा अच्छा तो ये पक्का वादा है, मैंने कहा हाँ ये पक्का वादा है, सूखे चने चबाएंगे एको भ्रम लखाएंगे, उन्होंने ये लाइन बोली थी, वो लाइन मुझे रट गई। और मैंने लास्ट में उन्होंने पूछा क्या अच्छा लगा आप पहली बार आए हो, मैंने यही बोला, बोली कि कर पाओगे, मैंने कहा हाँ कर पाएंगे। तो
1: तो
0: ईश्वर की
1: वहां से
0: कृपा
1: आपकी
0: से
1: जिंदगी बदली।
0: वहां से एकदम चेंज आ गया, मन को इतनी शांति होने लगी, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से सॉल्व हुए
1: जी
0: लाइफ के, बहुत सारी चीजें हम मैं खुद अपने ही लाइफ में देखती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन समझती थी मैं
1: सही।
0: ठीक हूँ, तो उसमें मैंने अपने आप को ही ठीक किया हमेशा। तो जैसे जैसे मैं अपने आप को ठीक करती चली गई, मेरे सामने का एटमोसफेयर अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होता चला
1: अगर
0: गया।
1: मैं पूछूं कि आपके जीवन की प्रेरणा स्रोत कौन है, तो वो कौन है जिससे आपने प्रेरणा ली?
0: प्रेरणा स्रोत मैं आपको ये बताऊं कि सबसे ज्यादा तो मुझे पहले तो सांसारिक रूप से अगर देखूं तो मैं अपनी प्रेरणा अपने फादर से लेती थी।
1: जी
0: फादर हमेशा मेरे को पॉजिटिव रखते थे, हमेशा मेरे को बोलते थे नहीं वहाँ जवाब मत देना, नहीं वहाँ बोलना, नहीं गुस्सा नहीं करना, और ये सब चीज़ ठीक हो जाती हैं बाद में, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो मेरे को समझाते थे तो मैं थोड़ा शांत हो जाती थी, तो फिर मैं कहती थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। तो मेरी सिस्टर ने भी मेरे को बोला कि तुम कुछ ऐसा करो कि जिसमें तुम्हारे मन को अब शांति मिले, जो है उसमें सेटिस्फाइड हो जाओ। तो जब से मैं सत्संग से जुड़ी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे इसी सत्संग ने ही दी
1: जी
0: कि अपनी लाइफ को कैसे हमें सेटल करना है, कैसे हम
1: जी
0: बिना बात में दुखी थे,
1: जी
0: परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ था लेकिन फिर भी हम दुखी थे,
1: बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं है,
0: कुछ
1: और
0: नहीं।
1: हम चीजों की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं जीवन में तो वो सबसे बड़ी बात है। बहुत कुछ होते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, सब कुछ होते हुए भी। अगर हम जानना चाहें कि अब इस समय आपका सफर किस तरफ है, अपने जीवन को किस तरह से अब आप बिता रही हैं?
0: बस सत्संग में आने के बाद मैंने अपना एक टारगेट यही बना लिया था कि मुझे अपना समर्पण यहीं पर करना है पूर्ण रूप से।
1: जी
0: तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि घर से हमें अलग करते हैं या किसी काम से रोकते हैं, आप घर के सारे काम करो लेकिन भगवत भाव से करो,
1: जी
0: एक तो चेंज ये आ जाता है।
1: जी
0: और बोले भोजन भी बना रहे हो तो भगवत भाव से बनाओ, तुम्हारा प्रसाद बनेगा वो,
1: जी
0: और अगर वैसे बनाते हो तो तुम बंदे को देख के चिड़चिड़ भी करते रहते हो, खाना बनाते रहते हो, तो वो
1: जी
0: भोजन विषैला बन जाता है।
1: जी
0: तो बहुत सारी चीजों में चेंज आया अपने आप, धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप चेंज आने लगा। तो मन को यही हुआ कि जो चीजें मोटिवेशन औरों को भी दी जाए,
1: जी
0: औरों को भी बताया जाए कि इस चीज से ही जीवन सार्थक होगा वरना सब बेकार है,
1: जी
0: क्योंकि हम बहुत कुछ भी पालेंगे तो भी उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है।
1: बिल्कुल। तो प्रतिमा जी, अब जीवन के इस पड़ाव पर आकर कैसा अनुभव होता है?
0: अब तो ऐसा लगता है कि हर तरफ तेरा जलवा, हर
1: जी
0: तरफ तेरा जलवा, बस उस प्रभु के दर्शन होते हैं। दादा की एक लाइन मुझे याद आ रही है, दुखी देखे किसी को तो दिल उसका तड़पता है।
1: जी
0: तो ऐसे ही मन यही कहता है कि कोई इन छोटी छोटी बातों से दुखी ना हो, क्योंकि शेर बड़े बड़े जानवरों को तो मार देता है
1: जी
0: पर मक्खी मच्छर से परेशान हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: और इसी तरह से हम लोग भी बहुत बड़ी बड़ी बातें तो डाइजेस्ट कर जाते हैं, अरे ये भगवान की इच्छा रही होगी, लेकिन छोटी सी बात की उसने बुलाया नहीं, उसने खड़े होकर के नमस्ते नहीं की, उसने ये
1: इन बातों से
0: उसमें
1: हर्ट हो जाते
0: इससे
1: हैं।
0: हर्ट हो जाते हैं।
1: अंत में आप, हमारी जो बहनें हमें सुन रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रही हैं, या परिवार में हैं, या संघर्षों से गुजर रही हैं, तो किस तरह से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगी?
0: यही विनती है कि अपने को परिस्थिति के हवाले ना करें,
1: जी
0: परिस्थिति आती है लेकिन उसके सामने आप खड़े रहेंगे, एक बंदर खड़ा है सामने,
1: जी
0: आप उसके सामने उसकी नजरों में नजरें डालोगे तो वो अपने आप वापस हो जाएगा,
1: जी
0: और अगर आप डरोगे पीछे होगे तो वो हुड़की देगा आपको,
1: जी
0: काटेगा। ऐसे ही हम परिस्थिति को भी सामने खड़े होकर फेस करें।

0: हैं,
1: जी
0: उसको सोचे कि ये आई है बात, तो इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं।
1: जी
0: खड़े रहते हैं, अडिग होकर के खड़े होते हैं, तो फिर परिस्थितियां खुद ही खुद टल जाती हैं और हमें लगने लगता है कि जिस चीज से हम डर रहे थे वो हमें डरा नहीं सकती।
1: जी
0: तो कभी भी अपने आप को इतना ढीला भी ना छोड़ें कि सामने हमारे अपॉर्चुनिटी है
1: जी
0: और आपने किसी के डर से, किसी की वजह से अगर उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया तो आप फिर आगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे।
1: जी
0: हमेशा यही पश्चाताप करते रहोगे, वो समय मिला था मुझे कर लेना चाहिए था,
1: जी
0: किसी के कहने में आके मैंने क्यों छोड़ दिया।
1: जी
0: तो बोले उस समय करो, करके देखो,
1: जी
0: सेटिस्फेक्शन मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो छोड़ दो।
1: जी बहुत सुंदर वचन आपसे आज हमें सुनने को मिले, और निश्चित तौर पर हमारी बहनें जो हमें सुन रही हैं वो आपकी बातों से ज़रूर प्रेरणा लेंगी, और अपने जीवन के जो संघर्ष हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन्हें हंसते हंसते फेस करेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो यही बातें आज हमारे साथ जो हमारी वरिष्ठ मेहमान थीं प्रतिमा जी, उन्होंने हमसे अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव साझा किए और बहुत सारी प्रेरणादायक बातें भी हमें बताईं। हम आशा करते हैं कि हमारी बहनें इन सभी बातों से ज़रूर प्रेरणा लेंगी। आपसे विदा लेते हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए।
2: बहन भूली बिसरी क्रम में अभी आप सुन रही थी प्रतिमा वर्मा जी को, जिनसे बातचीत कर रही थी हमारे साथी भावना अरोड़ा। और अब यादों में डूबा ये गीत सुन लेते हैं बहनों।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

बहन, उस गीत का आनंद आपके साथ हमने भी लिया और अब कार्यक्रम का समय समापन की ओर है। तो चलते चलते आपको बता दें कि आने वाले गुरुवार यानी कि 25 जून को आप स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज के अंतर्गत महिलाओं में एनीमिया की समस्या, कारण, लक्षण और निदान, इस विषय पर डॉक्टर साहिबा निकिता सिंह से बातचीत आप सुनेंगी। वो इस विषय पर हमें समाधान बताएंगी, तो आप इसको जरूर सुनिएगा। और आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं। अनुमति दें, नमस्कार।

महिला जगत कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 1:45 हो रहे हैं। अब आनंद लीजिएगा लोकधारा कार्यक्रम का। लोकधारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। और आज का ये कार्यक्रम लेकर आपके बीच हूँ मैं, आपकी साथी फरीना। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम हमने आपके लिए सजाया है गढ़वाली लोकगीतों से। और इन गीतों को अपनी आवाज़ दे रहे हैं अमरदीप सिंह नेगी। तो आनंद लीजिएगा गढ़वाली लोकगीतों का।

गढ़वाल की वादियों की महक, पहाड़ों की सादगी और लोक जीवन की मिठास को सुरों में समेटे हुए आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गढ़वाली लोकगीत। तो आइए कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर उत्तराखंड की लोक संस्कृति की रंग बिरंगी छटा को महसूस करते हैं इस गीत में।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा

0: मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की

0: सूर्या आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही संगीतकार।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही संगीतकार में मैं फरीना आपका स्वागत करती हूँ। जब सुरों को एक नई राह दिखाने वाला एक मुसाफिर, हर धुन में अपने हुनर का रंग भरने वाला सुरीला जादूगर, जिनकी संगीत की खुशबू संगीत की फुजाओं में बसी है। और आज अपने इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं ऐसे ही अमर धुनों के फनकार सी रामचंद्र को, जिनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1918 को। श्रोताओं, जब सुर नई नई उड़ान भर रहे थे, हिंदी फिल्म संगीत अपने सुनहरे दौर की ओर आगे बढ़ रहा था, तब एक ऐसा नाम संगीत की दुनिया के आसमान पर उभरा जिसकी चमक दमक सुरों की रोशनी से इतनी फैली कि हर तरफ बस एक ही नाम छा गया, और वो नाम था रामचंद्र नरहर चितलकर, जिन्हें हम सभी सी रामचंद्र चितलकर या अन्ना साहब के नाम से जानते हैं। तो आइए आज के संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं उन्हीं के रचे इस यादगार नटखट गीत से, जिसकी चमक आज भी पहले की तरह बरकरार है।

0: सी रामचंद्र के साज में, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आशा का ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
4: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार का, जो केंद्रित है मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र पर आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो कार्यक्रम में आगे बात करते हैं सी रामचंद्र के बारे में। श्रोताओं, यूं तो सी रामचंद्र का संगीत सफर साल 1942 में आई फिल्म सुखी जीवन से शुरू हुआ था, लेकिन साल 1951 में आई फिल्म अलबेला उनके संगीत सफर का खूबसूरत पड़ाव साबित हुई। अभिनेता भगवान दादा के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत और मनोरंजन का एक ऐसा सुरीला संगम रचा जिसने हर किसी का मन सुरों में भिगो दिया। और बात करें पश्चिमी वाद्य यंत्रों के प्रयोग की, तो उनके फन को खूबसूरती से पिरोने में आपने अपने समय में कहीं आगे निकल गए थे। गिटार, हारमोनिका, सेक्सोफोन, ट्रम्पेट और बोंगो ओबो का उनका संयोजन तो बहुत ही कमाल का था। तो सुनिएगा वो गीत जिसमें आपने इस वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कर हर दिल को धड़का दिया था।

अलबेला। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और चितलकर को। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की। श्रोताओं, एक संगीतकार के रूप में सी रामचंद्र जितने सफल रहे, एक गायक के रूप में भी अपने चाहने वालों का दिल चुराने में पीछे नहीं रहे। सी रामचंद्र के चितलकर नाम से गाए उनके गीत आज भी ना जाने कितने श्रोताओं की पहली पसंद है। तो आइए इन पलों को हसीन बनाते हैं उन्हीं के गाए एक खूबसूरत गीत को अपना साथी बनाकर।

तो जब भी कभी हम देशभक्ति गीतों की बात करते हैं तो एक ऐसा गीत खुद ब खुद हमारी जबां पर आ जाता है जिसका एक एक शब्द श्री रामचंद्र ने ऐसी धुनों में ढाला कि वो गीत राष्ट्रीय भावनाओं का एक ऐसा सुरीला स्वर बन गया कि जब साल 1963 में 26 जनवरी के मौके पर नेशनल स्टेडियम में लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया, तब इसको सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ हर किसी की आंखें नम हो गई थी।

आशा और यास्मीन जैसी फिल्मों में अपनी धुनों से लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे और इसके साथ साथ आपको रागों पर आधारित धुनों को रचने में विशेष महारत हासिल थी। राग बागेश्री आपके प्रिय रागों में से एक था। फिल्म आजाद का गीत राधा ना बोले इसकी सुंदर मिसाल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत गीत जिसमें रागात्मकता और मधुरता का अनूठा मेल है। इसको हमने लिया है फिल्म पतंगा से। आवाज है शमशाद बेगम सी रामचंद्र की और शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

50 का दशक सी रामचंद्र का स्वर्णिम काल था, क्योंकि ये वही दौर था जब आपने अनारकली, आजाद, नवरंग

श्रोताओं, 5 जनवरी 1982 को श्री रामचंद्र अपनी धुनों की अनमोल विरासत हमें देकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। धुनों की वो विरासत जो समय के साथ साथ और भी अनमोल होती चली गई, सुरों का वो जादू जो आज भी दिलों में ताजगी का एहसास कराता है। श्री रामचंद्र एक ऐसा ही नाम है, आप एक ऐसे संगीतकार रहे हैं जिन्होंने सुरों को नए रंग दिए, गीतों को नई पहचान दी। उनकी सुरीली यादों को नमन करते हुए आइए सुनते हैं उनके संगीत की लयबद्ध ये खूबसूरत रचना, जिसको लिया है हमने फिल्म सरहद पार से। आवाज आशा भोसले श्री रामचंद्र की, संगीत रचना भी श्री रामचंद्र जी की है और शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की। आशा है आपको ये गीत सुनकर मजा आएगा।

एक ही संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, मीडियम वेव 314.47 मीटर।

प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। अपनी संध्याकालीन सभा में शाम 4 बजे हम फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिएगा।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 4 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन.
1: जी जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा. लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपना चाहता हूं, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूं, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है. आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप.
0: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ. मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकेंड थर्ड जी

0: से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
1: तो अच्छा, तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
0: अच्छा
1: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के
0: अपने
1: वापस ले आओ।
0: पास ले जा ले, गले लगा ले
1: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवंबर,
0: जी।
1: बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
0: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा
0: आपके साथ रहता है,
1: हमेशा
0: कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना, आपको उठने भी मदद करता है
1: मदद करती है।
0: आप।
1: मेरी मेरी माताजी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल, आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी, उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी
0: जी
1: जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
0: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत
1: बहुत
0: बड़ा
1: बड़ा,
0: योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स, अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
1: तो माँ के, जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है, लुक्का छुपी बहुत हुई,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।
0: हाँ
1: एंड
0: हाँ
1: वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में,
0: जी जी जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
1: मुद्दे
0: गए,
1: उठाए बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड
0: जी
1: आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं,
0: हाँ
1: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
0: जी
1: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूंगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा, और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पोस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरी, मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहां पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन, और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी

0: पूरी हुई, तो उससे उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
1: वाह क्या बात है। अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने में कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए।

0: अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोस्टमेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोस्टमेट मनोज पांडे। तो कई कोस्टमेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी, और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोस्टमेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया, और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोस ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोस 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहां साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है, हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप

0: चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं, चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, स्प्रिट कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजन लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।

कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक

जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेड

0: राणा है, उदाहरण बॉस, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशस्त्र हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं।

0: सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स.
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज्यादा. जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहां पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है.
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है. ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड.
0: क्या बात है.
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना. और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए, मेरे को अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ जाता
0: है. क्या बात है, यानी कि वो पल जिस
1: वक्त आप प्रणय सूत्र में बंधे
0: और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया.

0: राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं। मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा। मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है, वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं कहीं भी नहीं मिल सकता।
1: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
0: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन, जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती था, ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप
0: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा जी। आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देशप्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। और हम

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में किसानों की आय दुगनी करने हेतु सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ईनाम योजना के विषय में जानकारी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम और आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं रेणु कोटनाला। श्रोताओं, भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान की मेहनत से ही देश का अन्न भंडार भरता है, लेकिन खेती के लिए समय पर पूंजी की उपलब्धता यानी पैसे की जरूरत हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। श्रोताओं, इसी चुनौती को दूर करने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई। इस योजना का प्रारूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड ने तैयार किया था, ताकि किसानों को खेती की जरूरतों के लिए सरल और तुरंत करते हुए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण और दूसरी जरूरतों के लिए अनौपचारिक स्रोतों या साहूकारों पर ही निर्भर रहते थे, जिससे उन्हें ज्यादा ब्याज का बोझ उठाना पड़ता था। श्रोताओं, किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उन्हें सरलता और सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रमुख लाभ की अगर हम बात करें तो किसान अपनी फसल उत्पादन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए भी सहायता उपलब्ध है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में राहत का भी लाभ मिलता है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार बार बार ऋण सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों को खेती में निवेश बढ़ाने और उत्पादन सुधारने में भी मदद करती है। अब श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि कौन ले सकता है किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, है ना? तो श्रोताओं, भूमि धारक किसान, बटाई पर खेती करने वाले किसान, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े किसान, पशुपालक और मत्स्य पालक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य रूप से पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, भूमि संबंधी दस्तावेज और फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। श्रोताओं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब किसान के पास खेती के समय पर धन होगा तो वो आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकेगा और उसकी आय में भी वृद्धि होगी। और यही कारण है कि KCC योजना को किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो ये तो थी जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विषय में। और श्रोताओं, अभी आपने जाना कि किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को खेती के लिए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। लेकिन श्रोताओं, सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलना भी उतना ही आवश्यक है। किसान की मेहनत का सही लाभ उसे तभी मिलेगा जब उसे अपनी फसल बेचने के लिए बेहतर बाजार, पारदर्शी व्यवस्था और सही कीमत मिले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कृषि विपणन यानी उपज की खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू की ईनाम यानी राष्ट्रीय कृषि

बाजार योजना। श्रोताओं, ई नाम योजना यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक ऑनलाइन कृषि व्यापार मंच है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को भारत सरकार के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य देश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। ये योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC द्वारा लागू की जाती है। श्रोताओं, ई नाम योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का उचित और पारदर्शी मूल्य दिलाना। इसके माध्यम से किसान अपनी फसल को केवल स्थानीय मंडी तक सीमित न रखकर देश के विभिन्न हिस्सों के खरीदारों तक पहुंचा सकते हैं। इनाम योजना का तो प्रमुख उद्देश्य ही देश की कृषि मंडियों को एक साझा ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर अवसर मिल सके। इस योजना के माध्यम से किसानों और खरीदारों के बीच कीमत से जुड़ी जानकारी की कमी को दूर किया जा सकता है और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के द्वारा फसलों की सही कीमत तय करना सुनिश्चित किया जाता है। इनाम योजना के माध्यम से किसान अपनी कृषि उपज को पंजीकृत मंडी में लाते हैं। उनकी उपज की गुणवत्ता जांच के बाद उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद देश भर के पंजीकृत व्यापारी उपज के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं और इससे किसान को अपनी फसल के लिए बेहतर मूल्य चुनने का अवसर मिलता है और भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है। श्रोताओं, किसानों के लिए ई नाम की अगर लाभ की बात करें तो किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक खरीदार मिलते हैं, उन्हें मंडी में चल रहे भाव की ऑनलाइन जानकारी मिलती रहती है, पारदर्शी बोली के कारण बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ती है और बिक्री की प्रक्रिया भी आसान और तेज होती है। छोटे और सीमांत किसान भी बड़े बाजारों से जुड़ सकते हैं। इनाम योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान इनाम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या अपनी नजदीकी इनाम से जुड़ी कृषि मंडी में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी इनाम योजना के विषय में, और अब इस जानकारी के बाद आइए चलते हैं गीत संगीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना रेहड़ बिजनौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुस्कान पुत्री मकसूद निवासी ग्राम मोहदिनीपुर थाना रेहड़ जनपद बिजनौर, उम्र करीब 24 वर्ष, जो कि दिनांक 2 जून 2026 से लापता है। इनका हुलिया आंख, नाक, कान, औसत गोल चेहरा, इकहरा जिस्म, बाल घने लंबे हैं, लंबाई करीब 5 फुट 2 इंच और रंग कोहरा है। मुस्कान के विषय में कोई भी जानकारी होने पर मोबाइल नंबर 9454403142 पर सूचना दे सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9454403142। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और गुमशुदा संबंधी सूचना सुनिए। उपनिरीक्षक थाना कोतवाली शहर बिजनौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुलेखा पत्नी अमित कुमार मोहल्ला रामपुर बकली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर से 3 जून 2026 से लापता हैं। सुलेखा की उम्र लगभग 26 वर्ष है। इनके विषय में जानकारी मिलने पर मोबाइल नंबर 7505100350 पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लें, 7505100350। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। आज रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड और इनसाइट्स कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे डॉक्टर शिवनारायण चतुर्वेदी का लिखा नाटक सुबह का भूला प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे विभूति भूषण भट्ट और प्रस्तुति सहयोग रहेगा सुंदर लाल गंधर्व का। आज शाम 7:32 पर किरण उत्सव मंडप बिजनौर में वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन प्रतिभा सम्मान समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट हमारे श्रोता सुनेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग होगा जसवंत सिंह का। संध्या 7:47 पर आनंद लीजिएगा शान आलम और साथियों की गाई चंद कव्वालियों का। संध्या 6:45 पर विविधा के अंतर्गत डॉक्टर भावना वत्सल की वार्ता होगी। विषय रहेगा नैतिकता की कसौटी पर जलवायु परिवर्तन। किसान श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आज शाम 6:05 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर मोहम्मद कासिम अली पशु चिकित्सा अधिकारी किरतपुर से जितेंद्र कुमार की बातचीत, और बातचीत का विषय होगा पशुओं में गर्भधारण में आ रही समस्या और समाधान। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज का आकर्षण रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास से आज नॉन फिल्मी चार्ट ताना बाना कहानी के उस पार और सुनिएगा फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम में आज शाम 6:55 पर। रात्रि 8 बजे की संध्या कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर क्रम रहेगा एक ही फिल्म से का, और रात्रि 10:30 पर होगा पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की, और आइए अब एक नज़र डालते हैं हमारे कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल शाम 5:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में विज्ञान भवन नई दिल्ली से विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 के आयोजन का सीधा प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातः 6:05

0: आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में और मैं आपकी वन ऑफ द होस्ट वाणी कौशिक
1: और वाणी के साथ स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं अक्षी त्यागी। आपकी शाम को और खूबसूरत बनाने एक बार फिर आ पहुंची हूँ।
0: अक्षी मुझे एक बात बताओ।
1: हाँ पूछो।
0: आजकल तुम दिन में कितने ग्लास पानी पीती हो?
1: ये भी कोई सवाल है।

0: जो होता है हमारा सेगमेंट उसको।
1: दोस्तों अक्षी के कहने का मतलब है पुश्तैनी यानी कि बूझो तो जाने, जिसके अंतर्गत हम अपने लिसनर से करते हैं एक सवाल, और हमारा जो आज का सवाल है वो आप लोगों के सामने हाजिर है।
2: भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
1: जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इसका जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक अकाउंट आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर के। तो जल्दी से जाइए, जल्दी से फोन उठाइए और जल्दी से दे दीजिए हमारे इस सवाल का जवाब।
2: और इसी के साथ हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाब का। तो चलिए चलते चलते अब सुनवाते हैं आपको पहला नगमा नॉन फिल्मी चार्टबस्टर का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
6: हो जाओगे।

0: भी लेना तो हमारा जो टाइम है और हमारा जो फोकस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फिर हम लॉन्ग वीडियोस देख ही नहीं पाते, उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। जैसे यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स होते हैं, शॉर्ट वीडियोस की वजह से हम वो देख ही नहीं पाते।
1: और अक्षी, इसके साथ साथ फोन चलाने की वजह से हमारी लाइफस्टाइल भी कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। जैसे कि अगर रात को नींद ना आए तो हाथ सीधा फोन पर जाता है और फिर घंटों घंटों वहीं बर्बाद कर जाता है। और रात में फोन चलाने की वजह से आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है।
0: और आधे से ज्यादा लोगों के तो चश्मा भी चढ़ चुका है।
1: और तो और डार्क सर्कल्स भी होते जा रहे हैं और इसी के चलते चलते फ्यूचर भी डार्क ही हो रहा है।
0: लेकिन वानी इस एडिक्शन को या एडिक्शन को लेकिन वानी इस एडिक्शन को ना कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो जरा।
1: अक्षी, फोन चलाना खराब नहीं है, लेकिन उसे लिमिट में चलाना जरूरी है।
0: जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं, तो दोस्तों इंस्टाग्राम के ऐप में आप टाइमर सेट कर सकते हैं, जैसे दिन का 1 घंटा, जिससे आपकी जो लिमिट है वो सेट हो जाएगी कि आपको कितने घंटे तक अपना इंस्टाग्राम यूज करना है, अपना फोन यूज करना है।
1: और हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और अगर इंस्टाग्राम को 1 घंटे का रिवॉर्ड बना लोगे तो और ज्यादा बेटर ऑप्शन है।
0: जी हाँ दोस्तों, जैसे 2 घंटे पढ़ाई के स्लॉट के बाद आप इंस्टाग्राम का 1 घंटा यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ना पढ़ाई जो है आपकी वो बहुत अच्छी होगी और आपकी मेहनत भी दिखाई देगी।
1: और दोस्तों, हम अपने फोन के बाहर भी एक दुनिया है जिससे हमें मिलते रहना चाहिए। वो हमें हमारे रिश्तों से जोड़ता है और अपने फ्यूचर के करीब लेकर जाता है, और हम फोकस्ड भी रह सकते हैं।
0: तो दोस्तों मेरी और वानी की तरफ से तो आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों कुछ खास से आज में बस आज इतना ही, और आप अपना ध्यान रखिए, फोन से थोड़ा दूर रहिए और अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट कीजिए। तो अब चलते हैं अपने इसी कड़ी में नॉन फिल्मी बस्टर को लेकर के और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा नगमा।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे हंस-हंस कर लोट कोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
5: ओबे ओबे ओबे ओबे सुन।
6: अरे क्या हुआ?
5: ओबे यार, मैं ना आज गया था हॉस्पिटल।
6: पागल खाने चला गया था कि जो भागते भागते आ रहा है तुझे निकाल दिया?
5: अबे नहीं यार, तो सुन तो मेरी बात। पता, मैं आज गया था हॉस्पिटल और वहां मैंने आज कुछ और ही देखा।
6: ऐसा क्या देख लिया?
5: अबे यार देख, पहले जब हॉस्पिटल खुलते थे तो डॉक्टर कंपाउंडर रखते थे। अबे आज तो कुछ अलग ही देख लिया मैंने।
6: ऐसा भी क्या देख लिया?
5: अबे हॉस्पिटल तो कंपाउंडर ने खोल रखा था, लेकिन रखा हुआ डॉक्टर था।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
7: दोस्तों, कुछ रिश्ते वादों से नहीं, जी हाँ दोस्तों, कुछ रिश्ते वादों से नहीं, एक नाजुक से भरोसे पर टिके होते हैं।
8: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के थर्ड थर्सडे को हम लेकर आते हैं एक बहुत ही प्यारी सीरीज ताना बाना, जिसमें आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 10, नाजुक सा भरोसा, जिसका आलेख किया है नंदिनी महेश्वरी ने। प्रतिभागी कलाकार रहे मोहित राजपूत व नंदिनी महेश्वरी, और निर्देशक है मिस्टर शोभित शर्मा जी।

0: हफ्ते भर से कहाँ गायब हो तुम?
1: परसों मम्मी डैडी की एनिवर्सरी थी तो फैमिली हॉलिडे पे गया था।
0: नाइस।
1: बाय द वे, तुम्हारे मम्मी डैडी कैसे हैं? यहीं इसी शहर में रहते हैं ना?
0: ठीक है।
1: यहीं रहते हैं। रुचि, जवाब नहीं दिया तुमने।
0: हाँ, यहीं रहते हैं।
1: That's good. और मेरे मम्मी पापा
0: पर साथ नहीं रहते।
1: मतलब?
0: उनका डिवोर्स हो चुका है।
1: ओह, आई एम सॉरी।
0: Why are you sorry if they are not? उन्हें मिल गई एक दूसरे से आजादी, शायद मुझे कैद करके। खैर,
1: पानी पियोगी?
0: नहीं। तो मिस्टर दर्पण, तुम बताओ, एक हफ्ते की छुट्टी के बाद वर्कलोड बढ़ गया होगा ना? बॉस ने एक्चुअली दर्पण दिखा दिया होगा।
1: हाँ यार, बहुत सारी पेंडिंग फाइल्स हो गई।
0: कंप्यूटर पे नजर गर गर के थक गई होंगी बेचारी।
1: इसलिए तो नजरों को रिफ्रेश करने आया हूँ यहाँ पे। रुचि है मुझे ब्यूटी में।
0: तुम?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं शाम को कह रहा था। हवा कितनी फ्रेश है ना, आसमान एकदम शांत। सोचो तो लोगों के दिल में कितना कुछ है। दर्द है, तूफान है, जाने इस आसमान के दिल में क्या है।
0: शायद तकलीफें, बहुत सी चोटें जो सिर्फ एक घायल रूह ही भांप पाए।
1: जो इसकी तकलीफें भांप पाता है वो जानता भी है बगैर जुबान के ये कितना कुछ कह जाता है।
0: तुम्हें क्या लगता है दर्पण, ये कर लेता होगा भरोसा?
1: पता नहीं,
0: तुम्हें है किसी के साथ पे भरोसा?
1: एक बार किया था किसी पर, इतने टुकड़ों में टूटा, सब आंसुओं में बह गया। तुम्हें है भरोसा रुचि, किसी के साथ पर?
0: भरोसा बहुत नाजुक होता है, मेरी कीमती चीजें गुम जाती हैं।

0: मेरी फैमिली में इतना कुछ हो चुका है पिछले सालों में कि प्यार है, शिकायत है, दर्द है या गफलत है, कुछ पता नहीं,
1: इतना पोएटिक,
0: बस पूरी नहीं हो पाती।
1: पूरा पूरा तो जमाने में धोखा ही मिलता है रुचि जी।
0: तुमने बड़ी जोर से खाया है।
1: शायद मेरी शक्ल पे अवेलेबल का बोर्ड दिखा हो उसे। हाँ,
0: मुझे तो नहीं दिख रहा,
1: हटा दिया मैंने,
0: फेंक ही दिया।
1: ऐसा तो नहीं कहा मैंने।
0: तुम कर सकते हो दर्पण किसी पर भरोसा, जैसे
1: जैसे
0: कि जिसमें तुम्हारी रुचि हो।
1: मुश्किल है, एक रुचि फॉर एग्जाम्पल बड़ा भयानक सेट करके गई है और बिखरने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम कर सकती हो किसी पर भरोसा?
0: किस पर?
1: शायद वो जो तुम्हें दर्पण में दिखता हो।
0: पता नहीं, मेरे दर्पण में बहुत सी चटक हैं।

चलिए पता स्टोरी। तो दोस्तों अब आप सुनेंगे हमारे सेगमेंट कहानी के उस पार में कहानी भोली, जिसको प्रेजेंट किया है हमारी ही साथी सिमरन कौर ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आप सभी के साथ हम भी ये कहानी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ हमारी कहानी का अगला एपिसोड लेकर, आपकी अपनी दोस्त सिमरन। दोस्तों, आपने देखा कि भोली की शादी विश्वंबर नाथ से तय हो जाती है और भोली के दाग को देखकर विश्वंबर नाथ और अधिक 5,000 रुपए की जिद करता है, जिसे देने के लिए रामलाल तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भोली की शादी विश्वंबर नाथ से होती है या नहीं। दोस्तों, भोली अब वो पुरानी डरी हुई सहमी हुई लड़की नहीं थी। शिक्षा ने उसे आत्मसम्मान और साहस दिया था। जब उसने देखा कि दूल्हा केवल पैसों के लिए उससे शादी करना चाहता है, तो उसने सबके सामने खड़े होकर दृढ़ आवाज में कहा,

ने जिस आत्मविश्वास का बीज वर्षों पहले भोली के मन में बोया था, वो आज विशाल वृक्ष बन चुका था। तो दोस्तों, भोली के जीवन में ये नया मोड़ आया और वो आत्मविश्वास से जीना सीख गई। दोस्तों, इस कहानी का क्या निष्कर्ष है, ये हम आपको बताएंगे हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 5 में, जो कि आएगा कल यानी शुक्रवार को। दोस्तों, सुनना ना भूलिएगा हमारा एपिसोड नंबर 5।

0: क्या आप जानते हैं कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बूझो तो जाने के अंतर्गत आपसे एक सवाल किया था, और आज का हमारा सवाल था, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जिसका सही जवाब है
1: टिहरी बांध। तो अब देखते हैं वाणी की हमारे जो सही जवाब देने वालों में श्रोता शामिल हैं वो कौन कौन है। रामकुमार रेवार, दीपेश वर्मा, जगदीश धाकड़ नायमा, अल्ताफ हुजैर, हीरामणि वर्मा, परवीन चौहान, कमल सिंह, दिग्दर्शन गौर, मीरा सिंह, नंद कुमार ठाकुर, निसार सलमानी, सुदर्शन शाह, दिनेश वर्मा, धर्मेंद्र छीपा, सोमदत्त नाभा, जाकिर मंसूरी, नानक खन्ना, आसिफ चौधरी, संजय ढींगिया, तुलसी मस्कीम, आर्यन राज, दिलशाद हुसैन, ताज अंसारी, हल्के जयपाल यादव, राष्ट्रपाल गजबिये, राधेश्याम पांडे, दिलीप भाभर, इरशाद अहमद, विट्ठल सुरेशो, बी आई धाकर, राजेश वर्मा, सोहन जोशी, मुजफ्फर अली खान, मोहम्मद जाहिद अली, निर्मल नहावकर, सुरेश खुराना, आरसी कांबड़े। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे दोस्त जिन्होंने हमें सही जवाब लिखकर भेजा है, और जो दोस्त हमारे रह चुके हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो आगे हम उनका नाम जरूर शामिल करेंगे। लेकिन अब चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।
2: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वही हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: दोस्तों, सुरों की कोई सरहद नहीं होती। जी हाँ, जो दिल को छू जाए वही संगीत होता है। और आज के इस सफर में हमारे नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर में हमने सुने ये फिल्मी गाने, जिन्होंने बिना किसी फिल्मी सहारे लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस महसूस किए जाते हैं, और जो हम इन गानों के द्वारा महसूस भी करते हैं। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, कई बार हमारी अधूरी बातों का जवाब भी बन जाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम अपने दिल की बात किसी से कैसे कहें, तो बस बच जाता है ये गाना, और उसके द्वारा हम एक दूसरे के दिल में जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उसको शेयर कर पाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार सोचा होगा और ये आपने ऑब्जर्व किया भी होगा कि आप अपने दिल की बात अपने दोस्त से या कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत करीब है उससे आपने कभी अपने दिल की बात नहीं कही या आप नहीं कह पाते, तो उसके लिए आप लोग सोचते हैं कि कैसे, कहना भी ज़रूरी है तो कैसे कहें। तो कई बार अल्फाज हमारे बन जाते हैं शायरी में, तो कई बार बन जाते हैं गीत में। और इसी तरह हमारा आज का जो ये सेगमेंट था नॉन फिल्मी बस्टर, तो कईयों के दिलों में तो ये काफी मशहूर भी हो चुका होगा और अपने दिल की बात कह भी चुका होगा। जी हाँ दोस्तों
1: ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। उसके लिए हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम युववाणी अनुभव द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
0: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से दोस्तों, 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपडेटेड रहने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारा फेसबुक अकाउंट आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी @आकाशवाणी नजीबाबाद, साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, जिससे और हम उसी के साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे जितने भी प्रोग्राम्स लेटेस्ट होते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो इसी के साथ मैं अक्षी त्यागी
1: और मैं वाणी कौशिक को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटिक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
4: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले 3 दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की।

0: है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। किसान श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भाई देखो जो हमारे खेतों में फसलें खड़ी हैं उनमें तो हमारे भाई दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं, चाहे भाई उसमें गन्ने की फसल हो या भैया हरे चारे में भैया चरी बाजरे की फसल हो, क्योंकि भाई खेती और पशुपालन एक दूसरे के भैया पूरक व्यवसाय हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे भाई जो है अपने पशुओं का भी विशेष ख्याल रखते हैं, भाई उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था अपने पास रखते हैं और भाई उनसे जो है समय से पशुओं से अपनी खेती किसानी में काम करते हैं। भाई देखो जो फसलें हमारे खेतों में चाहे गन्ने की हो तो उसमें खड़ी है और भैया हमारे किसान भाई उसमें निकाई गुड़ाई कर रहे हैं, चाहे भैया खरपतवार नियंत्रण की हो या भैया देखो कीट नियंत्रण की हो, काफ़ी सारे काम हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और भाई आने वाला सीजन यानी कि खरीफ मौसम की फसलों का है, और भाई खरीफ मौसम की फसलों का क्या है भाई, हमारे किसान भाइयों के खेत जो खाली पड़े हैं उनमें भैया हमारे किसान भाई मेड़बंदी कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो खरीफ मौसम है वो भैया बरसात का मौसम हो है और भाई इसमें खाद्यान्न में हमारे किसान भाई धान की फसल लगाते हैं तो भाई उसमें अपने किसान भाई जुताई करके खेतों की भैया और मेड़बंदी करके और भैया नर्सरी तो उन्होंने सबने तैयार कर ही दी होगी कि कौन कौन सी फसल हम जो है धान की प्रजाति उन्हें लगानी है। तो इस तरह से भैया हमारे किसान भाई दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते रहे हैं। और भाई एक चीज और है कि भाई खेती किसानी के साथ साथ हमारे किसान भाई आजकल और हमारे जो नौजवान साथी हैं वो भैया सह व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, चाहे भैया पशुपालन हो, चाहे भैया मत्स्य पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो या भैया मधुमक्खी पालन हो। तो भाई मत्स्य पालन की यदि हम बात करें तो भाई मत्स्य पालन में भी भैया काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनसे भाई हमारे नौजवान साथी मदद ले सकें। योजनाओं का जब हमें जानकारी होगी पता होगा कि भाई कौन सी योजना चल रही है, किसके तहत हम अपने जो है अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई एक ऐसी योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। भाई इस योजना के अंतर्गत भाई हमारे सभी किसान भाई बहन जो है भैया ये भारत सरकार की योजना है और भाई मछली पालन के क्षेत्र में सतत वृद्धि करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में भैया रोजगार बढ़ाने के लिए जो हमारे नौजवान साथी आज भैया खाली घूम रहे हैं वो भैया रोजगार पर व्यवसाय कर सकते हैं और भाई नीली क्रांति जो मछलियों संबंधित है भाई उसका जो है बढ़ावा देने के लिए ये भैया योजना चलाई जा रही है। और भाई इस योजना में जो है हमारे किसान भाइयों को काफ़ी भैया जो है शुरुआत करने के लिए लोन भी मिल जाता है जिससे हमारे किसान भाई इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। किसान भाइयों इस योजना की शुरुआत वैसे तो भाई 2019 में हुई थी लेकिन भैया 2020 में इसका बजट आया था तो इसका उद्देश्य नीली क्रांति को गति देना और इस योजना के माध्यम से मछली उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को अपनाने यानी के जो हमारे किसान भाइयों की आज आर्थिक स्थिति है, जो मछुआरों की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाने की दृष्टिकोण से भैया ये योजना चलाई जा रही है। भाइयों इस योजना के तहत भैया जो हमारे किसान भाइयों को छूट दी जाती है उसमें भैया तालाब निर्माण है, हैचरी बायोफ्लोक है, सिस्टम कोल्ड स्टोरेज का है, आइस प्लांट है और मछली प्रोसेसिंग की यूनिट यदि हमारे किसान भाई या हमारे नौजवान साथी लगाते हैं तो भाई उसके तहत उनको छूट दी जाती है और काफ़ी भैया

0: दर में छूट उनको मिलती है, जिससे भैया वो मछली उत्पादन करके अपनी आमदनी में चार चांद लगा सकते हैं। भाई देखो, ये तो कुछ बातचीत हो गई इस योजना के संबंध में। यदि वित्तीय सहायता के संबंध की थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो भाई देखो, इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना का लगभग 40% और महिलाओं को, चाहे SC ST वर्ग के लोगों को, 60% तक की वित्तीय सहायता यानी कि सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो भाई इस तरह से आप जो है सब्सिडी पर ले में और भैया इस योजना का लाभ उठा में और भैया आप लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने। तो भाई देखो, ये तो कुछ बातचीत हो गई मत्स्य संपदा योजना की, और भाई अब कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई हम बात कर रहे थे देखो मत्स्य पालन की। भाई देखो, आज बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जोत की भूमि को देखते हुए भाई हम जो है खेती के साथ साथ अन्य काम भी करने पड़ेंगे, जिससे भैया जो है हमारे किसान भाइयों की 12 महीने आमदनी बरकरार चलती रहे। तो भाई देखो, जब हम काम कर रहे हैं खेती के साथ साथ, आप फसल लगा रहे हैं चाहे गन्ने की लगा रहे हैं, तो भाई गन्ने की फसल का जो बीच का स्थान होता है, लाइनों से लाइनों के बीच का जो खाली स्थान होता,

टमाटर और मिर्च की नर्सरी का जो समय है वो ये समय भैया जो जून और जुलाई का होता है, ये बहुत उचित समय होता है भाई। इस समय आप उसकी यानी कि टमाटर और मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। और भाई नर्सरी आपको लगानी कैसे है भाई, सबसे मुख्य होता है मिट्टी, कि कौन सी मिट्टी में आपको नर्सरी तैयार करनी है। तो भाई देखो, अच्छी नर्सरी के लिए भाई जरूरी हो जाती है दोमट मिट्टी भाई, जिसका जो है जल धारण क्षमता अधिक हो। और भाई उसमें थोड़ा सा एक आप अगर भैया रेत मिला लें या बालू मिला लें तो बहुत अच्छा भैया वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और साथ ही साथ आप उसमें गोबर की सड़ी खाद मिला लें। और भाई इस तरह से आप एक जगह उसको करके यदि आप मिट्टी को भैया ट्रे में बना रहे हैं तो भैया ट्रे में आप नर्सरी तैयार करने के लिए भैया उनको कोकोपीट से और भर लें। साथ ही साथ यदि आप खेत में जमीन पर बना रहे हैं तो भैया नर्सरी बनाने के लिए आप जमीन के लेवल से उसको भैया 1-2 इंच ऊपर उठा लें, ताकि भाई उसमें किसी तरह का जल भराव ना हो और भाई आपकी जो नर्सरी है वो भैया अच्छी तरह से बढ़वार करे। भाई देखो, हमें एक काम जरूरी हो जाता है कि जब भी हम कोई सी फसल का बीज लें तो भाई उसको उपचारित करके हमें बोना चाहिए। यदि आपको दवाई से उपचारित नहीं करना तो भैया आप 4-5 घंटे आप पानी में ही भिगो दें, जिससे भैया उसका अंकुरण जल्दी हो, बढ़िया हो, अंकुरण में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो भाई यदि आप उसको भिगो देंगे तो वो भैया थोड़ा सा नमी लेकर फूल जाएगा और अच्छा अंकुरण हमारे किसान भाइयों को, चाहे टमाटर का बीज हो या मिर्च का बीज हो, उसको आप लगा दें। साथ ही साथ भाई टमाटर और मिर्च की नर्सरी को हल्का स्प्रे यानी कि पानी बौछार या फुहारे से, या भैया एक किसी कोई सी बर्तन से आप हल्का हल्का पानी एक नमी बनाने लायक देना है, जल भराव नहीं करना। उस जल भराव से भैया बीज में जो है गलन होने लगती है, जिससे भैया वो जमाव अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। भाई बहुत तेज धूप से अपनी सब्जियों की नर्सरी को बचाना है, क्योंकि भाई सब्जी जो होती है वो कोमल होती है और भाई उसकी नर्सरी तो और भी कोमल होती है, तो भैया वो धूप से जो है थोड़ी सी मुरझा जाती है। तो भाई इस तरह से आपको जो है नर्सरी करने के 20 से 25 दिनों के बाद, यानी कि 25 से 30 दिनों के बाद आप उसकी खेत में जो मुख्य खेत है आपका उसमें रोपाई कर दें। और रोपाई करने के बाद भैया हमें ध्यान यो रखना कि काफी तरह की बीमारियों से अपनी फसलों को बचाना है, क्योंकि भाई जब फसल हम लगाते हैं तो देखो खेत में हमारे खरपतवार भी उगे हैं, कीट बीमारी भी लगे हैं। तो भाई हमारे किसान भाइयों को वैसा सभी जागरूक हैं और तजर्बा है कि भाई हमारे किसान भाई इन चीजों से जो है वाकिफ भी हैं, कि भाई फसल लगाने के तुरंत बाद ही भैया वो जो है इन रोगों से, इन कीटों से लड़ने के लिए भैया अपनी व्यवस्था बनानी चालू कर दे हैं। लेकिन भाई हम जो है मिट्टी को भी उपचारित करना है। मिट्टी को आप भैया 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें, उसके बाद ही आप भैया सीधे रोपाई करें खेत में। इस तरह से यदि आप भैया अपने खेत में नर्सरी की बुआई करेंगे, नर्सरी की बुआई के बाद भैया रोपाई करेंगे, तो भाई आपको अपने टमाटर हो, मिर्च हो या अन्य कोई फसल हो, उससे भैया अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भाई देखो, खेती किसानी, बागवानी और पशुपालन, भाई देखो सारे जो काम हैं भैया वो हमारे किसान भाई कर ही रहे हैं। तो भाइयों, जैसे गर्मी का मौसम चल गया और भाई गर्मी के मौसम में आजकल हमारे किसान भाई कहते भी हैं, गांव में हम देखते भी हैं भैया, कि आजकल हमारे पशुओं में गर्भ धारण की कुछ समस्या है, कि भाई आजकल देखते हैं हम कि हमारा पशु समय से गर्मी में नहीं आ रहा, हमें यो पता नहीं लगता कि भाई हमारा पशु कब गर्मी में आया था, कब नहीं आया था। और भाई इसी चक्कर में भैया हमारा पशु जो है गाभिन नहीं रह पाता है। तो आज भैया पशुओं संबंधित आज हम अपने किसान भाइयों के लिए एक जानकारी लेकर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है पशुओं में गर्भ धारण में आ रही समस्या और उसका समाधान। भाई जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कासिम अली, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं किरतपुर जनपद बिजनौर में। तो आइए उनसे करते हैं बातचीत। हम पहुंचे राज्य के पशु चिकित्सालय किरतपुर जनपद बिजनौर में और बात की डॉक्टर मोहम्मद कासिम अली, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी किरतपुर जनपद बिजनौर में उपस्थित हैं। और डॉक्टर साहब से जानकारी का विषय है पशुओं में गर्भ धारण में आ रही समस्या व समाधान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।

0: अपने पशुओं को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि कहते भी हैं लोग बाग कि जो हमारे पशु गाभिन नहीं रह रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को इसी संबंध में जागरूक कीजिए कि पशुओं में गर्भधारण न होने के प्रमुख क्या क्या कारण हैं।
1: आज का जो ये विषय है पशुओं के अंदर गर्भधारण न होना या बांझपन का, पशुओं का शिकार हो जाना, ये एक समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है। हम जब देखते हैं हमारे किसान भाई जो पाल रहे हैं गाय भैंस या कोई भी अन्य पशु
0: जी,
1: उसका मूल उद्देश्य होता है उससे या तो दूध का उत्पादन करे
0: जी जी,
1: या उससे उसको बेच कर धन का उपार्जन करे।
0: बिल्कुल सर।
1: मगर ये तब होगा अगर वो पशु नए दूध रह जाएगा, ग्यावन रह जाएगा, तो उससे संतति की उत्पत्ति होगी।
0: बिल्कुल।
1: अगर यही सिस्टम रुक जाएगा तो उससे उसको लाभ ना होके उत्पादन में भी
0: जी
1: और पशु की संख्या बढ़ोतरी में भी घाटा होगा।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: और आज के वक्त में ये बड़ी समस्या है। बांझपन के या पशुओं के ना रुकने के जो मूल कारण है उसमें सबसे पहला मूल कारण होता है जो भी पशु होगा वो अपने पोषण के लिए, खान पान के लिए जमीन से, धरती से, खेती से जो हरा चारा जाता है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है।
0: बिल्कुल सर।
1: उन पोषक तत्वों की कमी होने के कारण पशु के अंदर भी पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिस कारण पशु सही समय पर हीट में नहीं आता है, गर्मी में नहीं आता है, वो साइलेंट हीट में चला जाता है, पता ही नहीं लगता कि वो हीट में कब आया था
0: जी, जी, जी।
1: पानी नहीं गिरता है। हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमारी जो गाय है, हमारी जो भैंस है, वो गूंगी बिगर बोले ही नहीं होती है, मगर वो पोषक तत्व कम होने की वजह से वो प्रॉपर हीट नहीं आती, उससे पशु के अंदर अंडों का विकास नहीं होता है प्रॉपर, जिससे उसके जो शुक्राणु है मेल के मिलेंगे तो ना मिलन होने के कारण ये भी एक बड़ा कारण होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसमें इस पोषक तत्वों के अलावा और भी मूल कारण है जिसमें एक आनुवंशिक कारण भी होता है
0: जी।
1: बहुत सी पशुओं में आनुवंशिक बीमारियां हो जाती हैं, और इसके अलावा सबसे अनभिज्ञता का कारण एक आता है पशुओं में लवण की कमी।
0: अच्छा, खनिज मिश्रण जी।
1: जो खनिज मिश्रण होते हैं, हमारे किसान भाई जो हमारे ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो
0: जी, जी।
1: खास तौर से ये बीमारी गायों में आती है
0: जी।
1: क्योंकि गाय ज्यादा दूध देती हैं भैंसों के मुकाबले, और हमारे पशु जो आनुवंशिक रूप से अच्छे होते हैं
0: तो
1: ज्यादा दूध देते हैं, ज्यादा दूध देने की वजह से खनिज लवण ना मिलने के कारण उसके शरीर से पोषक तत्वों को लेते हैं और जो दूध में आते हैं उससे पोषक तत्व उसके शरीर में कमी आ जाती है और उसी से उसके हीट की साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को दी। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि जो हमारे पशु हैं उनको गर्भधारण में किस तरह से क्या क्या समस्याएं आती हैं और किस तरह से वो जो है हमारे किसान भाई उनका खाने पीने का उनका ध्यान रखें, और आनुवांशिक भी होती है। अच्छा सर, जैसे आनुवांशिक आपने बताई तो इसका भी कोई निदान है जो जिससे हमारे किसान भाई अपने पशुओं को गाभिन करा सकें?
1: ये आपने बड़ा ही सरल और उत्तम सवाल किया है। जो आनुवंशिक बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जिनका हम कोई निवारण नहीं कर सकते
0: जी।
1: जैसे अगर किसी पशुओं के अंदर ब्रुसेला बीमारी होती है,
0: ब्रुसेलोसिस।
1: हाँ, ब्रुसेलोसिस
0: जी जी।
1: इसमें क्या होता है, जो हमारी फीमेल होती है उनके अंदर ब्रुसेला का इन्फेक्शन हो जाता है
0: जी,
1: उसकी वजह से वो नहीं रुकती
0: जी। अच्छा।
1: और ये बीमारी एक ऐसी और होती है, ये जूनोटिक होती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती है
0: जी,
1: एक जाति से दूसरी में। जरूरी नहीं है उस गाय से उसके बच्चे में जाए, जरूरी है उस गाय से अगर कोई मनुष्य उसके कांटेक्ट में आता है
0: जी,
1: उसका सलाइवा लगता है, उसको म्यूसिलेज लगता है, तो वो उस मानव में भी हो जाती है।
0: अच्छा।
1: और इसका उपचार बहुत मुश्किल है और संभव नहीं है।
0: आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी कि आनुवांशिक ये बीमारी होती है और जो ब्रुसेलोसिस एक बीमारी है उसके कारण भी हमारे जो पशु हैं वो गाभिन नहीं रह पाते हैं कभी कभी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बीच में एक बात थोड़ी सी और की थी कि जो हमारे पशु हैं उनको अच्छा पोषण की जब बात आती है तो हमारे किसान भाई पोषण में भूस खिलाते हैं, दाना मिश्रण खिलाते हैं, तो उनको किस तरह से वो संतुलित पोषण दे सकें, किस तरह से संतुलित दाना मिश्रण खिला सकें, इस संबंध में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवान

0: पशुओं में हर 2 से 3 वहां पर हम कृमि नाशक दवा का पान कराएंगे
1: जी।
0: और संतुलित पशु का आहार दिलाएं। अब वो किसान भाई हमारे ये कहेंगे संतुलित आहार हमारा क्या होगा?
1: बिल्कुल।
0: तो उस संतुलित आहार के लिए उसके अंदर जो हम उसको राशन दे रहे हैं उसके अंदर उचित मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए और उचित मात्रा में एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा राशन ना दें जो एनर्जी ही एनर्जी हो या एनर्जी की कमी हो या प्रोटीन ज्यादा हो। तो तीनों चीजें बड़े समावेश के साथ होनी चाहिए।
1: जी जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, जैसा आपने बताया कि कृमि नाशक दवाई हमारे किसान भाइयों को, हमारे साथियों को, अपने पशुओं को खिलानी चाहिए। अच्छा, इसका कोई समय है कि किस किस समय अपने पशुओं को ये कृमि नाशक दवाई देनी चाहिए?
0: जो हमारे पशु होते हैं इसमें पूरी साल के साल हम कृमि पान करा सकते हैं और इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर समय नहीं होता कि इस समय हम देंगे इस समय। बस एक समय यह होता है
1: जी,
0: ये देखना होता है हमारा पशु ग्यावन है या खाली है।
1: अच्छा सर।
0: अगर हमारा पशु खाली है तो आप हर 2 से 3 महीने के अंतराल पर कृमि नाशक दवा का पान कराएंगे।
1: अच्छा।
0: और ग्यावन है तो उसके लिए अलग दवा आती है जो हम ग्यावन पशुओं को ही देते हैं।
1: अच्छा,
0: उसको पूरी साल कभी नहीं दे सकते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि यदि हमारा पशु जो है सूखा है या ड्राई है तो आप अपने पशु को 12 महीने किसी भी समय आप दवाई दे सकते हैं, हर 3 महीने पर दवाई दे सकते हैं। और यदि आपका पशु गाभिन है तो आपको समय देखकर डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाई का पान अपने पशु को कराना है। अच्छा सर, जैसा आज का विषय है कि पशुओं में गर्भधारण में आ रही समस्या व समाधान, तो डॉक्टर साहब जैसा कि गर्भधारण में समस्या के संबंध में तो आपने हमारे किसान भाइयों को काफी जागरूक किया, अच्छा जो समाधान होता है, निवारण होता है, वो हमारे किसान भाई किस तरह से अपने पशुओं में इस समस्या का कर सकते हैं?
0: जो हमारे किसान भाई हैं, कुछ चीजें हमारे किसान भाइयों के हाथ में है और कुछ चीजें हमारे किसान भाइयों के हाथ में नहीं है। जो चीजें उनके हाथ में है उनको वो करें और नहीं है हाथ में वो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से उसके बारे में जानकारी लें और जैसा वो बताएं या उपचार बताएं वैसा उनसे उपचार कराएं।
1: जी जी जी,
0: ये 2 तरीके हैं। उसमें जो उनको जानकारी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया अपने कृमिनाशक दवा का पान कराएं
1: जी
0: और संतुलित पशु का। अब हमारा किसान भाई करेगा, डॉक्टर साहब हम ये संतुलित आहार कैसे बनाएंगे?
1: बिल्कुल सर।
0: जो हमारा किसान भाई जो अपने गाँव में है, सबसे बेहतर तरीका उसके लिए यह होता है तीनों चीजों को बनाने के लिए, उसमें एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करने के लिए, उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि किसान भाई जो बैलेंस राशन बनाए उस राशन के 3 हिस्से कर ले।
1: अच्छा।
0: और एक हिस्से के अंदर कोई भी खल या केक जैसे सरसों की खल, राम तिल का, सोयाबीन खल
1: जी,
0: इस तरह की खल का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा ले ले
1: जी जी।
0: और ऐसी फसलें जो हमारे छिलकेदार फसलें होती हैं उनके छिलके जैसे चने का छिलका
1: जी
0: या चोकर
1: जी,
0: 1/3 हिस्सा उसे ले ले। और जो हमारी दानेदार फसलें होती हैं जैसे गेहूं, बाजरा और मक्का, तो 1/3 हिस्सा उसका ले ले 1/3। और इन तीनों को 1/3 1/3 1/3 करके इसको मिलाएगा तो ये हमारा कंसंट्रेट बैलेंस में हमारा राशन बन जाएगा।
1: जी जी जी।
0: और इसको जो हमारा पशुपालक है जो उसको भूसा हरा चारा मिलाएगा उसमें एक पशु को अगर हमारी गाय है तो गाय को 1 किलो दूध पर 400 ग्राम कंसंट्रेट
1: दाना मिश्रण
0: हम गाय को देते हैं
1: जी।
0: अगर 10 किलो वो दूध दे रही है तो 4 किलो हमें उसको दाना ये बनाया हुआ राशन उसको देना पड़ेगा
1: जी जी।
0: और अगर हमारी भैंस है तो 1 किलो पर 1/2 किलो हम उसको वो देते हैं
1: जी।
0: तो 10 किलो पर 5 किलो हमें वो देना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: ये हो गया हमारे दूध के लिए कम से कम हमें इतना देना है। और 1 से 1.25 किलो राशन हमें उसके शरीर के लिए अलग से देना पड़ेगा जिससे उसका शरीर भी बैलेंस में रहे।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, वो कमजोरी महसूस ना करे।
0: हाँ, तो ये हम उसको ये पोषक तत्व देंगे उसके किसान के माध्यम से बता दिया।
1: जी जी जी बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि किस तरह से वो अपने घर पर ही संतुलित आहार अपने पशुओं के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को आपने ये बताया कि किस तरह से वो अपने पशुओं को गाभिन करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात करनी है कि हमारे किसान भाई जो है निदान किस तरह से इसका करें?
0: पशु में बहुत सी ऐसी बीमारी हो जाती है जिनका निदान डॉक्टर ही कर पाएगा।
1: बिल्कुल सर।
0: जैसे किसान हमें आके ये बताएगा

0: जी जी
1: और मैं हर बार इसको नहीं कराता हूँ, मगर डॉक्टर साहब ये नहीं रुकती है।
0: जी जी जी
1: तो उसके लिए सबसे पहले वो किसी योग्य डॉक्टर को बुलाए और ये चेक कराए कि अंदर उसे

0: हाथ डाल लेता है और उसके हाथ में जो इन्फेक्शन होता है वही खुद इन्फेक्शन करके चला जाता है।
1: बिल्कुल,
0: उसी की वजह से उसको मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। जब तक ये बीमारी रहेगी नहीं, दूध नहीं रहेगी, किसान आकर ये कहेगा डॉक्टर साहब मेरी गाय सफेद सफेद थोड़ा सा ज्यादा घेर रही है।
1: जी जी।
0: तो उसके लिए योग्य डॉक्टर सफाई का ध्यान रखकर उसके अंदर जो बैक्टीरियल और इन्फेक्शन वाली दवाइयां हैं अंदर छोड़ेगा और कुछ खाने की दवाइयां आपको देगा
1: जी जी।
0: जिससे वो ठीक हो जाएगी और नए दूध आसानी से रह जाएगी।
1: बिल्कुल सर,
0: समाधान आपका इससे हो जाएगा। बहुत सी जो गाय भैंस में हार्मोनल डिस्टरबेंस आ जाता है
1: जी,
0: जो मेरा पशु बहुत ज्यादा हीट में आ रहा है तो इसलिए वो देखेगा कहीं उसके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं बन गई
1: जी जी।
0: उस सिस्ट को इंजेक्शन

0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को, और किस तरह से एक अच्छे पशु चिकित्सक से मिलकर वो समय से अपने पशु को गर्भित करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, कोई जानकारी ऐसी शेष रह गई हो या कोई संदेश आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवान साथियों को देना चाहते हो तो उनके लिए क्या संदेश, कोई जागरूकता की दृष्टि से आप देना चाहेंगे?
1: ये सवाल भी आपने बड़ा महत्वपूर्ण किया है कि मैं आज देख रहा हूँ

0: जी सर
1: क्षेत्र के अंदर कोई भी पशु चिकित्सालय आता है या पशु सेवा केंद्र आता है, उन पशु सेवा केंद्रों पर पशु चिकित्सालय पर जाकर डॉक्टरों से मिलकर पशुओं के विषय में जानकारी लें और सरकार के द्वारा जो दवाई दी जा रही है, कृमिनाशक दवा वो अन्य दवा दी जा रही है, उन्हें आकर लें और उसका लाभ उठाएं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारे नौजवान साथियों को दी। और जो भी हमारे नौजवान साथी पशुपालन से जुड़ना चाहते हैं या जो पशुपालन कर रहे हैं, तो वो आपकी जानकारी का अपने पशुपालन में लाभ उठाएंगे। और डॉक्टर साहब, आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
0: भाइयों ने अभी ये जानकारी सुनी। भाई विषय था पशुओं में गर्भधारण में आ रही समस्या और समाधान। भाई जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मोहम्मद कासिम अली। भाइयों देखो कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने पशुओं के संबंध में दी। भाई सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने देखो हमारे किसान भाइयों को यही बताया कि भाई आज हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका जो रुझान है भैया वो पशुओं के प्रति थोड़ा कम होता जा रहा है, पशु भैया उन्होंने रखने कम कर दिए। भाई ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, आप पशु रखें, समय से उन्हें चारा दाना मिश्रण खिलाएं। साथ ही साथ भाई देखो डॉक्टर साहब ने पशुओं के गर्भधारण में आ रही समस्या के संबंध में बताया कि किस तरह से भाई हम अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, उन्हें भैया ताज़ा साफ सुथरा पानी पिला सकते हैं, साथ ही साथ भाई अपने पशुओं को भैया हर तीसरे महीने पर भैया कृमिनाशक दवाई खिलाते रहें। साथ ही डॉक्टर साहब ने एक बात और बताई कि भाई जो चारा दाना मिश्रण हम अपने पशु को खिलाते हैं वो भैया वहाँ कहीं ना कहीं हम उसमें कमी कर देते हैं, यानी कि यदि हमारा पशु दूध दे रहा है तो भाई हम उस एक किलो दूध पर भैया डॉक्टर साहब ने 400 ग्राम दाना भैया गाय के लिए बताया और 500 ग्राम दाना भैया अपनी भैंस के लिए बताया। तो भाई हम वही 500 ग्राम और भैया वही 400 ग्राम दाना अपने पशु को देते हैं, यानी कि यदि हमारा पशु 10 लीटर दूध दे रहा तो भैया 4 किलो दाना और भैया 5 किलो दाना इस तरह से हम अपने दाना खिलाते हैं, ना कि भैया उसके शरीर भार का। तो कहीं ना कहीं हमारा पशु शरीर रूप से थोड़ा सा कमजोर होता चला जाता है। तो भाई हम जब भी अपने पशु को चारा खिलाएं तो भाई उसके शरीर भार का चारा दाना अवश्य खिलाएं, ताकि भाई हमारा पशु जो है अगले ब्यात में भी समय से गाभिन हो, समय से गर्मी में आए। दूसरे भाई डॉक्टर साहब ने एक बात और थोड़ी सी बताई इसमें कि भाई जब भी हम पशु अपना खरीदें तो भाई देख कर पशु को खरीदें, ताकि भाई हमें यो पता लग सके कि हमारा पशु कौन सी प्रजाति का है, किस तरह का पशु है, किस तरह से भैया वो हरा होता है। और भाई कभी कभी देखो हम थोड़ी सी गलती ये कर देते हैं कि भाई जब भी हम किसी पशु चिकित्सक को बुलाते हैं तो भैया वो दस्ताने बिना पहने ही भाई हमारे पशु की एआई करता है या अन्य कोई कार्य कर लेता है। तो भाई कभी कभी जो इन्फेक्शन है वो भैया हमारे पशु चिकित्सक के द्वारा भी हो जाता है। तो भाई कभी भी हमें जो है ये काम नहीं करना, हमें सावधानी बरतनी है कि भाई जो भी पशु चिकित्सक हमने बुलाया है भाई वो जो है कोई सा भी कार्य यदि हमारे पशु के प्रति कर रहा है तो भाई वो जो है दस्ताने अपने हाथों में आवश्यक रूप से पहन ले। भाई ये छोटी छोटी जानकारी हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे भैया आप अपने पशुओं को देखभाल कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें भैया समय से गर्भधारण में आ रही समस्या से बचा सकते हैं और अच्छा भैया लाभ अपने पशुपालन व्यवसाय से कमा सकते हैं। तो भाइयों ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं अपने पशुपालन व्यवसाय में लाभ भी देगी और आप इस जानकारी का लाभ भी उठाएंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान साथी हैं वो भी भैया पशुओं पालन की तरफ भैया बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। तो भाई इस जानकारी का आप लाभ लेंगे। और भाई जब बात लाभ की होती है तो लाभ एक और चीज से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो किसान भाई भी सोच रहे होंगे कि भाई गीत संगीत की तरफ नहीं चल रहे, तो भाई बिल्कुल गीत संगीत की ओर लिए चलते हैं आपको और सुनते हैं भैया ये प्यारी सी रागनी।

अभी भाइयों ने ये रागनी सुनी जयविंदर सिंह की आवाज में, मीठा बोल बोलने वाला। भाइयों उम्मीद करते हैं आपकी दिन भर की थकान उतर गई होगी और भरपूर मनोरंजन आपका हुआ होगा। भाइयों देखो, हम खेती किसानी करते हैं और हमारा खेती किसानी का जो काम है वो भैया कहीं ना कहीं मौसम पर आधारित होता है। तो भाई क्यों ना थोड़ी सी जानकारी आपको मौसम की भी दे दी जाए। तो भाई बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले 21 जून तक भैया मौसम शुष्क बना रहेगा। तो भाई जो भी हम अपनी फसलों में कोई कृषि कार्य करना है या भैया सिंचाई करनी है, तो आप वैसे अपने फोन से भी मौसम से अपडेटेड रहिए और भैया अपनी फसलों में सिंचाई का कार्य पूरा कर लें। साथ ही साथ भैया यदि निकाई गुड़ाई करनी है या भैया खरपतवार नाशियों का, कीटनाशियों का इस्तेमाल करना है, तो भाई वो भी आप मौसम को देखते हुए करते रहें। किसान भाइयों, भैया पशुओं की आप देखभाल रखें, समय से सुबह दोपहर शाम तीन समय उन्हें ताज़ा साफ सुथरा पानी पिलाएं। और भाई अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाज़त किसान भाइयों से बिल्कुल नहीं दे रही है। तो भाइयों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा, क्योंकि भाई आपके चिट्ठी पत्रों के आधार पर ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। भाई आजकल सभी के पास बड़े फोन हैं, तो आप हमारा एक मोबाइल नंबर लिख लें 94-57-07-82-88। भाई इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। भाई नंबर एक बार और नोट कर लें 94-57-07-82-88। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें भैया कार्यक्रम कृषि जगत और जो भी आपकी समस्या है या हमारे कार्यक्रम में आपको सुनना चाहते हैं। और भाई अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं ये सुनते हैं डॉक्टर भावना वत्सल की वार्ता, नैतिकता की कसौटी पर जलवायु परिवर्तन।
1: जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। तेजी से बढ़ रही वैश्विक तपन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एवं इसके कारण दिन प्रतिदिन गहराता जलवायु संकट आज संपूर्ण विश्व एवं मानवता के समक्ष एक ऐसी चुनौती बनकर खड़ा है जिसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। यह विषय भौगोलिक या वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि नैतिकता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नैतिकता एक दिशा सूचक के रूप में कार्य करती है जो समाज के भीतर अंतःक्रियाओं का मार्गदर्शन करती है। हम इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, समुद्र स्तर ऊंचा हो रहा है। तरक्की की दौड़ में हमने प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ किया और निरंतर कर रहे हैं कि वातावरण में जहरीली गैसों का जमाव बेहिसाब बढ़ रहा है। इससे जलवायु असंतुलित हो गई है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, आने वाले वर्षों में सूखा और बाढ़ से तबाही की भावनाएं बढ़ रही हैं। क्या यह नैतिक रूप से उचित है? हम धरती को बचाने में अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर सके तो हमारे छोटे छोटे सामूहिक प्रयास मिलकर बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। भारतीय चिंतन में तो आदिकाल से ही यह बोध रहा है कि पृथ्वी मात्र हमारे लिए एक भूमि का टुकड़ा न होकर एक जीवंत माँ है जो हमारी रक्षा वात्सल्य से परिपूर्ण होकर करती है। मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध युगों से है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अथर्ववेद में एक प्रतिज्ञा का वर्णन है, हे धरती माँ, जो कुछ भी तुमसे लूंगा उतना ही तुझे वापस करूंगा, तेरी जीवनी शक्ति सहन शक्ति पर कभी भी आघात नहीं करूंगा। गांधी जी ने भी कहा था कि इंसान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, लालसाओं को नहीं। हम आजकल सामूहिक रूप से लालसाओं के पीछे भाग रहे हैं और इन्हें पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं, नैतिकता, ईमानदारी को अनदेखा कर रहे हैं। संस्कृत की भी एक सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अर्थात अति से हमेशा बचना चाहिए। जब पृथ्वी पर जीवन को बचाने की बात हो या जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक

बढ़ने लगा। वर्ष 2013 में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यदि अभी हम नहीं संभले तो वर्ष 2080 तक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अप्रत्याशित रूप से देखने को मिलेगा। वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा और जंगल में आग जैसी आपदाओं में 30% की वृद्धि देखी गई है। पृथ्वी निरंतर गर्म हो रही है, यह एक दो दिन की नहीं वर्षों से अति भौतिकवाद की ओर आंख बंद कर भागने का ही नतीजा है कि हम एक असहनीय गर्म प्रदेश के निवासी होते जा रहे हैं। नैतिकता को छोड़ने के कारण हम आंख मूंद कर भौतिकता की ओर अग्रसर हैं। इसी कारण प्रकृति के चक्र में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अचानक भारी बारिश होना, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं सब मिलकर जीवन स्थितियों को मुश्किल में डाल रहे हैं। मौसम में यह बाहरी बदलाव अचानक नहीं हो रहा है, मानव की स्वार्थ और अहंकार की शोषणात्मक प्रवृत्ति के कारण प्रकृति को निरंतर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन जैसी गैसें वातावरण में बढ़ रही है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान समय से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम था। अनुमान है कि यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा तो बचे हुए ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, समुद्री जल का स्तर ऊंचा हो जाएगा, जिससे प्राकृतिक आपदाएं और अधिक गंभीर हो जाएंगी। यह केवल विज्ञान की समस्या नहीं है बल्कि नैतिकता से भी इसको जोड़ा गया है, क्योंकि नैतिकता हमें सही और गलत का ज्ञान कराती है। जब हम जलवायु परिवर्तन को नैतिकता दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ ज्वलंत प्रश्न हमारे समक्ष आते हैं कि हम जो आज अधिक कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक असुरक्षित और विनाशकारी पर्यावरण छोड़ेगा। क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों को सौंपें? जैसा हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के निकट रहकर सीमित आवश्यकताओं का प्रयोग किया और हमें एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन दिया है। न्यायोचित तर्क के आधार पर नैतिकता यह भी कहती है कि जिस प्रकार विकसित देशों ने औद्योगिकरण के दौरान पिछले अनेक दशकों से अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, लेकिन वे अब विकासशील देशों से प्रदूषण कम करने की मांग कर रहे हैं। विकसित देशों ने 19वीं और 20वीं सदी में भारी मात्रा में कोयला और तेल का उपयोग किया, लेकिन अब वे भारत और अफ्रीकी देशों से कह रहे हैं कि वे अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करें। यह नैतिकता के स्तर पर बिल्कुल भी उचित नहीं है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव गरीब देशों और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। साथ ही ऐसा मानव समुदाय जो केवल अपना जीवन निर्वाह सीमित रहकर कर रहे हैं और जलवायु प्रदूषण में सबसे कम योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, मालदीप, मॉरिशस जैसे देशों में समुद्र स्तर बढ़ने से लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, जबकि उन्होंने बहुत कम कार्बन उत्सर्जन किया है। समुद्र स्तर बढ़ने से कुछ देशों के तो डूबने का खतरा भी पैदा हो गया है। यह असमानता नैतिक रूप से अनुचित है। अब प्रश्न उठता है कि यदि यह एक नैतिक समस्या है तो इसके समाधान भी नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। तो इसका समाधान भी हम अलग अलग तीन स्तरों पर चर्चा कर करके करना चाहेंगे, व्यक्तिगत स्तर, राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर। व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम आधुनिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए अपने घरों में ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, जहां भी हो सके ऊर्जा बचाएं। हम सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलकर प्रकृति के निकट रह सकते हैं। इसी प्रकार सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे का प्रयोग कम कर उन पर अपनी आवश्यकताओं को न्यून कर सकते हैं। डीजल पेट्रोल वाहनों के स्थान पर सोलर या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके कम कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि एक अकेला वृक्ष अपनी जिंदगी में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। खाना बिल्कुल बर्बाद न करें, इसे तैयार करने में बहुत ऊर्जा लगती है। फ्रोजन फूड की जगह ताजा खाना खाएं। ऐसे बहुत सारे मानवीय प्रयास जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक होंगे, क्योंकि मनुष्य ही इस वातावरण का महत्वपूर्ण घटक है। मानव का नैतिक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण को प्रदूषित न होने दे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर सभी जीव जंतुओं का भी मानव के समान अधिकार है। सर्व कल्याण की भावना पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस नीतियां बनानी पड़ेंगी। भारत

0: सरकार ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य रखा है, अर्थात कार्बन उत्सर्जन न्यून करने का लक्ष्य तय है। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित भी हो रही है। भारत सरकार की ओर से सोलर ऊर्जा पर सब्सिडी देकर इसे लोकप्रिय और सर्वसुलभ किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2015 में पेरिस में यह तय हुआ था कि विकसित देश प्रत्येक वर्ष $100 बिलियन गरीब देशों को देंगे, परंतु अभी भी वे इस बात पर कायम नहीं हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी है, परंतु विकसित देश अपनी अनैतिकता का प्रदर्शन कर विकासशील देशों पर ही इसका ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। अनेक स्तरों पर लगातार वर्षों से विश्व के बड़े देशों के मध्य वार्ता होते हुए भी कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं हो पा रहा है। नैतिकता इस बात की भी है कि विकसित देश बड़ा दिल दिखाते हुए इस जलवायु परिवर्तन का कारण स्वयं को मानते हुए इस पर मिशन मोड में कार्य करें। इसके पीछे का सच यही है कि जब हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तब जब तक प्रकृति के पास सहज होकर समर्पण से नहीं जाएंगे, तब तक इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव होना संभव नहीं है। नेचर कम्युनिकेशंस में हाल में ही प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार आगामी 4 वर्ष असंगत रूप से काफी गर्म रहेंगे। पिछले वर्षों की लंबी भयावह गर्मी को देखते हुए यह बात कही जा रही है कि कम से कम अगले 4 वर्षों के लिए हमें पर्याप्त तैयारी कर लेनी चाहिए कि आने वाले वर्ष इस वर्ष की अपेक्षा और भी गर्म होंगे। शोध से यह भी तथ्य सामने आया है कि पृथ्वी के ऊपर की वायु की अपेक्षा समुद्र की ओर भी जल्दी तथा ज्यादा गर्म होंगे, जिसके कारण हरिकेन, बवंडर और प्रचंड तूफान इत्यादि आने की संभावना बढ़ गई है।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे डॉक्टर भावना वत्सल की वार्ता। विषय था नैतिकता की कसौटी पर जलवायु परिवर्तन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:55 हुए हैं। अब पेश FM संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम छाया गीत में।

आंसू बन गए फूल। आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर था आशा भोसले और किशोर कुमार का, शब्द रचना थी गोविंद मुनीस की और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। छाया गीत कार्यक्रम इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ हसरा जयपुरी का लिखा गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म थी प्रोफेसर। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म पेंगेस्ट से। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।

और श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म बालिका वधू से आवाज अमित कुमार की है। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

अमित कुमार के गाये फिल्म बालिका वधू के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का छाया गीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए देश गान।

आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें।

आज रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड और इनसाइट्स कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे डॉक्टर शिव नारायण चतुर्वेदी का लिखा नाटक सुबह का भूला प्रसारित होगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे विभूति भूषण भट्ट और प्रस्तुति सहयोग रहेगा सुंदर लाल गंधर्व का। समय याद रखिएगा, आज रात्रि 10 बजे। आज शाम 7:32 पर किरण उत्सव मंडप बिजनौर में वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन प्रतिभा सम्मान समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट हमारे श्रोता सुनेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग होगा जसवंत सिंह का। संध्या 7:47 पर आनंद लीजिएगा शाने आलम और साथियों की गाई चंद कवालियों का। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं गीत संध्या कार्यक्रम में आज रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम में और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। कल संध्या 5:30 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में विज्ञान भवन नई दिल्ली से विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 के आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखिएगा, कल शाम 5:10 पर।

0: कल दिन में 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में क्रम रहेगा थारी पसंद। बीना तिवारी के गाय कुमावनी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा हमारे लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। संध्या 5 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम योगी मानधन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना विषय पर जानकारी हमारे श्रोता ले सकेंगे। युवाणी कार्यक्रम में क्रम रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास से आज ये शाम गजलों के नाम और आपका सितारा में गौराश्री से सना की बातचीत हमारे युवा श्रोता सुनेंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PMSooryaghar.gov.in पर।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
8: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का 6ठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि आज उन्नाव की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
10: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से, हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक

0: खेती पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही हैं। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाली फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी दे रही है।
1: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे और आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। आगरा में कल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित 21 ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। इसी क्रम में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और विरासत के समन्वय का एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। इसी क्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉ शैलेंद्र तोमर ने मेरठ में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के बाद समाज की सहभागिता जुड़ने से परिदृश्य बदला है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्वच्छता का संदेश दिया गया था तो उसमें पूरे समाज की भागीदारी जोड़ने का आह्वान किया गया और उनके आह्वान के पश्चात आज हम देखते हैं कि उसके पूर्व रेलवे स्टेशनों का जो परिदृश्य हुआ करता था, प्लेटफार्म गंदगी से भरे पड़े रहते थे, लेकिन जब माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा आह्वान किया गया, समाज की सहभागिता इसमें जुड़ी, आज रेलवे स्टेशनों का दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यनाथ, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत आज लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के बच्चों का पोषित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता बताई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स MSME फोरम और SME वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए, किरण उत्सव मंडप बिजनौर में वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन प्रतिभा सम्मान समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग जसवंत सिंह का है।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वैश्य शिक्षक समाज बिजनौर और वैश्य समाज उत्तर प्रदेश शाखा बिजनौर। श्रोताओं नमस्कार। दिनांक 16 जून 2026 की शाम को महाराजा अग्रसेन प्रतिभा सम्मान समारोह का शहर बिजनौर के एक उत्सव मंडप में आयोजन किया गया। जनपद बिजनौर के सैकड़ों वैश्य परिवार के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर के कुलाधिपति श्री अमित गोयल और मुख्य अतिथि रहे कानूनी मापतौल विभाग भारत सरकार के निदेशक श्री आशुतोष अग्रवाल। मंचासीन अतिथियों द्वारा मां शारदे के समक्ष सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया और उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। रिद्धि अग्रवाल द्वारा इस अवसर पर सरस्वती वंदना की गई।

कार्यक्रम को और भी आकर्षक और ऐतिहासिक बनाने के लिए आयोजक समिति ने सभी का स्वागत तिलक लगाकर किया। कार्यक्रम में आकांक्षा मित्तल ने आरती गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

0: महाराजा अग्रसेन प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजक मंडल से वैश्य परिवार बिजनौर के वरिष्ठ सदस्य श्री गुलशन गुप्ता जी ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई।
1: लगभग एक वर्ष पहले हमने वैश्य जाति के जो शिक्षक थे उन सबको एकत्र किया, तकरीबन एक दर्जन, और हमने ये निश्चय किया कि हम ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा इस वैश्य समाज में जागृति की लौ जलाने का प्रयास करेंगे, जो समाज के लिए एक टॉर्च बियरर की तरह काम कर सकते हैं। यानी हमारी वो भावी पीढ़ी जो आज आपके सामने है, कल यही IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनकर हमारे वैश्य समाज नहीं पूरे राष्ट्र को उत्कृष्ट बनाने में अपना योगदान देगी। ऐसी हमारी ये भावी पीढ़ी, इसको सम्मानित करने का एक छोटा सा विचार मैंने तकरीबन एक दर्जन शिक्षकों के साथ वैश्य वर्ग के साथ शेयर किया, और उस छोटे रूप को इतना बड़ा करने में हमारा वैश्य समाज प्राचीन काल से कितना उदार रहा है, इसकी अनुभूति मुझे यहाँ हुई कि इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम बना दिया मेरे बड़े भाई सजल अग्रवाल जी ने, जो आप देख रहे हैं वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के जिला मंत्री हैं, अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी टीम चाहे जिला अध्यक्ष राजीव गोयल जी हों या उनकी पूरी टीम, सभी ने मिलकर और साथ में जुड़े मेरे जो इस समय ADGC हैं श्री गौरव अग्रवाल जी, दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को ऐसा भव्य बना दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था।
0: मंचासीन अतिथियों में से श्री जगदीश प्रसाद गोयल ने वैश्य समाज के इतिहास और विचारधारा के विषय में बताया।
1: हम जिनकी संतान हैं, उनका नाम अगरोहा धाम में अमर है अमर। हमारे समाज के 17.5 गोद माने जाते हैं कि हमारे अग्रसेन महाराज ने 17 राज्यों को जीतने के बाद 18वां राज्य अगरोहा धाम हरियाणा में है उसे जीता था।
0: कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बिजनौर जनपद के विभिन्न स्थानों से आए मेधावी विद्यार्थी रहे। लगभग 40 मेधावियों को उनके अभिभावकों के साथ मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 में हाई स्कूल, इंटर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट और आदर्श प्रदर्शन करने वाले सभी होनहार विद्यार्थियों को पगड़ी पहनाई गई, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिए गए, बैग और अन्य उपहार भी उन्हें प्रदान

0: से जो आज की इस कार्यक्रम की ऊर्जा है वो है बच्चे हमारे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान बनाकर आज यहाँ पर वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। पूरे विश्व को वैश्य समाज दिशा और दशा देता है, दशा और दिशा दिखाता है। उसका कारण एज पर माई असेसमेंट वैश्य समाज पॉजिटिव आइडियोलॉजी रखता है, सकारात्मक आइडियोलॉजी के कारण वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वो झगड़े में नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति एक झगड़े में पड़ गया, पता लगा 10 साल उसी झगड़े में पड़ा हुआ है, वो आगे का सोच ही नहीं रहा। जिस व्यक्ति ने ये निर्णय लिया, छोड़ जो नुकसान हो गया इसे निकाल, एक पिक्चर आई थी रीस्टार्ट, देखी होगी आप सबने, वो फेलियर है आईएएस का, आईपीएस का, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होते हैं, रीस्टार्ट। तो वैश्य समाज में एक रीस्टार्ट ऑटो जनरेटेड है, तो हम कहीं पीछे नहीं है, बस संगठित होने की थोड़ी सी जरूरत है। इसके अलावा मैं एक मैसेज और इन बच्चों के लिए देना चाहूंगा, इनके माता पिता के लिए देना चाहूंगा, ये ओवर पजेसिवनेस जो होती है ना, जो बच्चे का कान नहीं पकड़ना मेरे टीचर से, बच्चे का कान पकड़ लिया आपने मेरे, वो बच्चा भी इतना सहन क्षमता ही नहीं रहती बचपन से, इतना प्यार, ओवर पजेसिवनेस कि वो टीचर ने कहा आज तो लेट कैसे आया, इतना डाटा बस, उसे बुखार आ गया। ये बच्चे निश्चित आप इनके माता पिता से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा होगा, इनका पढ़ जा, टीचर कह रहा है 12 बजे जाना है, धूप में जा 12 बजे। तो ओवर पजेसिवनेस छोड़नी है, बच्चों को निकलने दीजिए, साधनों का प्रयोग किसी और बात में कीजिए। जब तक आप बच्चे को तैरने नहीं छोड़ेंगे वो तैराक नहीं बनेगा, आप उसके साथ खड़े रहेंगे, आप उसके रहेंगे, वो कहीं ना कहीं रहेगा। तो स्कूल कॉलेजेस की सारी जिम्मेदारी स्कूल कॉलेजेस पे मत छोड़िए, माता पिता की जो जिम्मेदारी है उसकी कोई मुकाबला नहीं है। टीचर के पास लिमिटेड टाइम के लिए बच्चा रहता है, बाकी तो समय माता पिता के पास रहता है।
1: ऐसे सम्मान समारोह निश्चित ही समाज के लिए प्रेरणादायी होते हैं। समाज और देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए मुख्य अतिथि भारत सरकार के कानूनी मापतौल विभाग के निदेशक श्री आशुतोष अग्रवाल जी ने बताया,
2: हमारा जो अग्रवाल समाज है, जो ये एक प्रेरणा है महाराजा अग्रसेन की, समाज को साथ में लेकर चलने की, ये एक ऐसी चीज है जिसके हम लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में, ट्रस्ट। और मुझे लगता है जो समाज, जो ट्रस्ट हमारे समाज में है शायद कहीं नहीं है। जो आज इन बच्चों ने, जो इन नए लोगों ने किया है, मैं इनको बहुत दिल से इनका आभारी हूं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को किया। हमारे बच्चों को पता तो चले क्या समाज है, यदि आज हम अपने बच्चों को सम्मानित करेंगे तो यही बच्चे कल हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे। इन्हीं लोगों के ऊपर है जो महाराज अग्रसेन ने कहा 1 रुपी और 1 ईंट, 1 रुपया और 1 ईंट का जो सिद्धांत था, मुझे लगता है अब अग्रवाल समाज को, हमारे समाज को यही करने की आवश्यकता है। आज आप जो भी कुछ हम कर रहे हैं, कल यही सब लौट करके हमारे सामने आएगा। क्या हमें भगवान ने, हमें समाज ने सब कुछ दिया है, अब क्या रह गया, रिटर्न टू द सोसाइटी, वापस करना है समाज को, हर व्यक्ति को जो समृद्ध है, जो शक्तिमान है, जो कर सकता है, उसको एक बच्चे का भविष्य, एक बच्चे का एजुकेशन अपने साथ लेना चाहिए। और ये लिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि एक बच्चे को मुझे मेंटर करना है, एक बच्चे को अपने समाज के मुझे आगे लेके जाना है।
1: वैश्य शिक्षक समाज जनपद बिजनौर की सहभागिता से आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की वर्धमान कॉलेज बिजनौर के रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर जी आर गुप्ता जी ने।
3: विद्यार्थियों से एक विशेष बात मुझे कहनी है कि आपने जो उपलब्धि प्राप्त की है ये आपकी मंजिल अभी नहीं है, ये पड़ाव है, अभी सीढ़ियां हैं, और मंजिल प्राप्त करने की सीढ़ी अभी और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करके आपको आगे बढ़ना है। आपके गार्जियंस, समाज और राष्ट्र आपसे बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि आप हमारे कर्णधार हैं। हमारे देश के इतिहास में ये है कि जिस व्यक्ति की साधना, तपस्या और लक्ष्य जितना बड़ा होता है, संघर्ष भी उतना बड़ा होता है, लेकिन इस संघर्ष के बाद तब तक वो मेधावी प्रतिभा निकलती है तो निश्चित रूप से वो सरप्राइजफुल होती है।
1: विद्यार्थी जीवन में ऐसे सम्मान समारोह निश्चित ही प्रेरणादायी होते हैं। कार्यक्रम में सम्मानित कुछ विद्यार्थियों ने भी अपने उद्गार प्रस्तुत किए।
4: मेरा नाम पार्थ अग्रवाल है, मैं जी एडवांस 2026 को क्लियर किया हूँ, और मैं सबको यही

0: बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी में भी काफी बार ऐसा हुआ कि मेरे को लगा कि मेरे को मेरे सब नहीं होने वाला, अब घर ही चले जाना चाहिए, लेकिन बस मैं ट्राई करता रहा, हिम्मत बनाए रखी मैंने, और फिर आखिरी में जाके मेरे को उस चीज़ का फल मिल ही गया। बस हिम्मत किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, कम कम करो, थोड़ा ब्रेक ले लो 2-4 दिन का, पर ट्राई करता रहना है।
1: कार्यक्रम में आए विद्यार्थियों के अभिभावक भी प्रसन्न हुए और सम्मानित विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी अपने विचार साझा किए।
2: मेरा नाम आलोक अग्रवाल है, मेरा बेटा IIT एडवांस में इस बार बहुत अच्छे नंबर लेकर उसको IIT रुड़की मिल जाएगा, और मेरी बेटी ने भी NIFT का एग्जाम पहले ही उसमें अपने प्रयास से पास कर लिया है। और मैं दोनों बच्चों को शुभकामनाओं के साथ साथ, जो हमारे सर ने बोला था कि अभी ये बच्चों की पहली सीढ़ी है, ये मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप अभी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो आप निरंतर मेहनत करते जाइए, भगवान आपको सफल करता रहेगा, और ऐसे ही आप समाज के लिए प्रेरणादायी बनते रहें।
1: और आयोजक समिति के ही एक वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका नाम?
3: रजत रस्तोगी।
1: रजत जी, क्या कल्पना आपने की थी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए?
3: हमने ये प्रयास किया था कि हम लोग अपने बच्चों को, वैश्य समाज के बच्चों को सम्मानित करें और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसमें हमने जिले के लगभग 95% से ऊपर एक रैंक क्राइटेरिया बनाकर 36 बच्चों का नामांकन किया था, जिसमें आज अधिकतम बच्चों ने उपस्थिति दिखाकर उस सम्मान को प्राप्त किया, और हमें खुशी की अनुभूति है कि ये प्रोग्राम हमारा काफी हद तक सफल रहा। और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि महोदय ने भी इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से, हमारे आयोजन को धन्यवाद दिया, और हम इसके प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: महाराजा अग्रसेन सम्मान समारोह की जो ये एक संस्था यहाँ बनी हुई है, वैश्य समाज संस्था, तो भविष्य में क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं इस संस्था की?
3: ये भविष्य में जितने बच्चे जो वैश्य वर्ग से संबंधित है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग उनके जो भी उन्हें भविष्य में जरूरत है, जिस चीज की, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है या पढ़ाई से संबंधित कोई भी बात है, तो हम लोग उनके लिए मदद करेंगे और हर प्रयास करेंगे। हर साल प्रत्येक वर्ष हम लोग ये आयोजन करेंगे ताकि समाज में एक नई दिशा की पहल हो, ताकि बच्चे सम्मानित होकर एक गर्व की अनुभूति करते ही हैं, और बच्चे भविष्य बनाने के लिए आगे नए नए क्षेत्रों में जाएं, और हमारी ऐसी कामना है।
1: महाराजा अग्रसेन प्रतिभा सम्मान समारोह की आयोजक समिति के सदस्य सजल अग्रवाल, गौरव अग्रवाल और गुलशन गुप्ता आदि की सक्रिय सहभागिता से कार्यक्रम सफल रहा। इस कार्यक्रम का संचालन किया श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने। उनके संचालन में कार्यक्रम कहीं भी नीरस नहीं लगा। कार्यक्रम के विषय में बताते हुए आप हैं समिति के सदस्य सजल अग्रवाल।
4: आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ ताली बजाने नहीं, बल्कि ये बताने कि मेहनत की कदर होती है। इस समारोह का उद्देश्य हमारे मेधावी छात्रों को मंच देना, ताकि वो और ऊंचा उड़ें और समाज के लिए मिसाल बने। आज वैसे समाज के मेधावी बच्चों का अग्रसेन प्रतिभा सम्मान समारोह बिजनौर में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ, जिसके लिए कार्यक्रम में सहयोग करने वाले समस्त उदार हृदय वैसे बंधुओं का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने में दिन रात परिश्रम किया, उस पूरी आयोजक मंडली को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सभी वैसे समाज के सम्मानित भाई बहनों का भी कार्यक्रम में सहभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एवं सम्मानित होने वाले सभी बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है अगले वर्ष यह कार्यक्रम और अधिक व सुंदर रूप से संपन्न होगा। महाराज अग्रसेन की जय।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वैश्य शिक्षक समाज बिजनौर और वैश्य समाज उत्तर प्रदेश शाखा बिजनौर।
5: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे किरण उत्सव मंडप बिजनौर में वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन प्रतिभा सम्मान समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था जसवंत सिंह का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोताओं, ये सुनते हैं शाने आलम और साथियों की आवाज़ में कव्वाली।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे शाने आलम और साथियों के स्वर में कव्वाली। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। रात के इस खूबसूरत सफर में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम गीत संध्या में। श्रोताओं, कहते हैं दूरियां रिश्तों की पहचान नहीं होती। जी हाँ, असली रिश्ता तो वो होता है जो दूरी में भी दिल को करीब महसूस कराए। रात के शांत पलों में अक्सर कुछ खास लोग और उनसे जुड़ी यादें हमेशा हमारे साथ होती हैं।

0: हृदयनाथ मंगेशकर का संगीतबद्ध किया हुआ जावेद अख्तर का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म थी मशाल। श्रोताओं, यादें जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा होती हैं जो बीते हुए कल को आज भी हमारे करीब ले आती हैं। कभी आंखों में नमी लाती हैं तो कभी चेहरे पर मुस्कान, लेकिन हर बार अपनेपन का एहसास जरूर दे जाती हैं।
1: वो जब याद आए वह

पारसमणि फिल्म का गीत आपने सुना, स्वर था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का, शब्द रचना थी असद भोपाली की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, जिंदगी एक सफ़र है जिसमें कुछ साथी हमेशा हमारे साथ चलते हैं और कुछ अपनी यादों की रोशनी छोड़ जाते हैं। जी हाँ, रात के इस शांत माहौल में आइए सुनते हैं और महसूस करते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें अकेलेपन में भी उम्मीद और अपनापन छिपा है।

0: मुकेश की आवाज़ में आपने सुना फिल्म आनंद का गीत। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था सलील चौधरी ने।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है गीत संध्या। श्रोताओं, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनकी मौजूदगी एक खूबसूरत याद बन जाती है, और फिर वही यादें हमारे साथ यूं ही चलती रहती हैं।

श्रोताओं, भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म शंकर हुसैन का गीत। गीत लिखा था कमाल अमरोही ने और संगीत दिया था खयाम ने। श्रोताओं, कुछ पल, कुछ मौसम और कुछ एहसास जिंदगी में ऐसे रंग भर देते हैं कि वो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। जब दिल खुशियों से भरा हो तो हर पल खास लगने लगता है। सुनिए एक ऐसा ही मन को छू लेने वाला गीत फिल्म कटी पतंग से। स्वर किशोर कुमार का है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, समय बदलता रहता है, ज़िंदगी के रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों की खुशबू कभी कम नहीं होती। इंसान भले ही वक्त के साथ दूर हो जाए, मगर उसके दिए हुए प्यार और यादें हमेशा हमारे दिल में जीवित रहती हैं।

किनारा फिल्म का गीत आपने सुना, स्वर था लता मंगेशकर और भूपेंद्र का। गुलजार का लिखा ये गीत था और संगीत दिया था आरटी बर्मन ने। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म हम दोनों से, स्वर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का है। गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है जयदेव ने। श्रोताओं, कभी कभी किसी अपने का साथ इतना खास होता है कि कुछ पल और साथ बिताने की इच्छा दिल में रह जाती है। जी हाँ, वक्त भले ही आगे बढ़ जाए लेकिन कुछ मुलाकातों की मिठास हमेशा यादों में बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत नगमा।

और श्रोताओं, अब आज के संगीतमय सफर को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे गीतों और यादों के एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आप पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।

एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों को लिखा है समीर ने, संगीत अनु मलिक का है। आइए लीजिए सुनिए अब आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, आवाज अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

0: एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज आपने सुने फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से कुछ गीत। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर।

0: and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई. बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया. एक रिपोर्ट.
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है. मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है. सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है. महेश सोबरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस.
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर

0: करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी

0: विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparation for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinal the World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
1: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
2: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion plans in India. Talking to Akashvani, CMA CGM Chairman and CEO Rodolphe Sade said, India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding.
3: It's a great honor to meet with the Prime Minister to discuss about our development in India. We have been serving this market for many years and we are looking forward to expanding.

0: In the women's 51 kg category, Meenakshi will face Kazakhstan Alua Balkibekova, while Sani will take on Poland's Kinga Krovaka in the women's 65 kg division. Prachi is set to meet Chinese Taipei's Qingyu Yang in the women's 57 kg quarterfinals. In the men's competition, Nikhil will face Azerbaijan's Amin Mamadzada in the 55 kg category. In hockey, India defeated Uruguay 3-2 in their third Pool A match of FIH Women's Nations Cup in New Zealand today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो. उन्होंने पेरिस में वीवाटेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया. वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादले ख्याल भी किया. वज़ीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की. ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखतशुदा मफाहमतनामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया. यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है. और मीनाक्षी हुडा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं. कल चार भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तिराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो. उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि रखना अंदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए. उन्होंने आलमी इख्तिराआतकारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026
1: वजीर आजम ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी की नहीं मिन्नत है. जनाब मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंग की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके. मजीद तफसील हमारे नामा निगार से.
3: पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचनी चाहिए. उन्होंने मालियाती शमूलियत, तालीम, हिफ्जान सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट को उजागर किया. उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब दुनिया के बरवक्त होने वाले डिजिटल लेन देन का तकरीबन आधा हिस्सा UPI से तय पाता है और अब ये फ्रांस में भी दस्तयाब है. इससे कबल दिन में आज जनाब मोदी ने फ्रांस के बड़े CEO से मुलाकात की. सेंट गोबेन, मिस्टर

0: ले आए और CMA CGM लीडरों ने भारत की तरक्की के इम्कानात में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और सब्ज जहाजरानी के शोबों में ज्यादा सरमायाकारी और शराकतदारी के मंसूबों का ऐलान किया। वजीर आजम इस वक्त एक अजीमुशान सकाफती प्रोग्राम बोंजो में शिरकत कर रहे हैं जिसे पेरिस में सॉल पेलेल सेंटर में भारतीय बरादरी ने मुनाकिद किया है। फ्रांस के शहर पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
1: वजारत खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतज को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान तीन अहम सुतूनों तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैन अवी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीस में मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिता किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने शिरकत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने इम्तिहान के अमल में सालमियत, शफाफियत और सलाहियत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतालिका अहलकारों को हिदायत दी कि वो निगरानी कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को आजादाना और मुनसिफाना तौर पर मुनक़िद किए जाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात हों। जनाब प्रधान ने कहा कि वजारत की जानिब से नामजद अफराद तमाम रियासतों में तैनात होंगे ताकि वो इम्तिहान से मुतालिक सरगर्मियों से तालमेल कायम रखें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की सदारत में कायम मरकजी कमांड सेंटर को रिपोर्ट करें। मीटिंग के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से भी ये कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उम्मीदवारों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएं, जिसमें इम्तिहान में बैठने के मुनासिब इंतजामात और पीने का पानी शामिल है ताकि वो हर किस्म के दबाव से पाक माहौल में इम्तिहान दे सकें। नीट यूजी इम्तिहान 2026 में अब जबकि सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चाहिए कि पुरसुकून रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने पूरे साल सख्त मेहनत की है, लिहाजा अब उन्हें मुनासिब सुकून और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। NTA ने एक महफूज, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में इम्तिहान मुनाकिद कराए जाने की यकीन दहानी भी कराई है। वजारत तालीम ने आज बताया कि यूनिवर्सिटी की QS आलमी दर्जाबंदी 2027 में 52 भारतीय तालीमी इदारे शामिल हैं। भारत की जानिब से सबसे ऊपर के दर्जे में IIT दिल्ली है जो आलमी सतह पर 118वें नंबर पर है, जबकि IIT बॉम्बे और IIT मद्रास भी दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर भारत के तालीम से मुतालिक नक्शे कदम मुसलसल वसत इख्तियार कर रहे हैं। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊद अरब के हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 लब्बैतुल अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग, नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव बरामदात को मुस्तहकम करने के कौमी लाए अमल का जायजा लिया। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बड़ी स्कीमों का जायजा लेने के दौरान जनाब शाह ने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके हुक्मरानी को बेहतर बनाकर और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगी, खिदमात के मुश्तरका प्लेटफॉर्म और खिदमात की फरोखशुदा डिलीवरी के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग को मुस्तहकम करने की गरज से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया कि आने वाले बरसों में मुजव्वजा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के तआवुन में उसके किरदार के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सहकार सारथी टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सदर मसूद पेसिशकियान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाए नए मफाहमत नामे को एक तारीखी दस्तावेज और एक मजबूत ईरान की जानिब से पैगाम दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जा सकता है और उन्होंने अपने वक़ार, आज़ादी और इलाकाई तआवुन के तहफ्फुज़ के साथ आलमी अमन के तई ईरान के अज़्म की तौसीक़ की। वर्साय में G7 समिट से अलग फ्रांस के सदर इमानुअल मैखो के साथ एक इशाइये के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दस्तावेज पर दस्तखत करने से कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि ये समझौता तय पाना आसान नहीं था। दस्तखत किए गए मुआहदे को बाद में तेहरान भेजा गया और फिर सदर पेजिशकियान ने इस पर दस्तखत किए। फ्रांस के सदर इमानुअल मैखो ने इस मुआहदे का ये कहकर खैर मकदम किया कि इससे देरपा अमन और आबनाए हुरमुज के दोबारा खोले जाने के लिए राह हमवार होगी, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की कीमत में कमी आने में मदद मिलेगी। यूक्रेन ने मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर इस हफ्ते के दौरान दूसरी मर्तबा रातों रात हमला किया। इसके अलावा रूस के रोस्तोव खित्ते में कई मकामात को निशाना बनाया गया है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने यह कहकर इन हमलों की तस्दीक की कि मॉस्को के जुनूब मशरकी मजाफात में वाकई मॉस्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन से हमला किया गया। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि मुल्क भर में यूक्रेन के 555 ड्रोन को बीच में ही रोककर जाया किया गया। रूस की ट्रांसपोर्ट वजारत ने बताया कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से परवाजें रोक दी गईं। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने कहा है कि मॉस्को पर यह हमला इस बरस के सबसे बड़े हमले में से एक है। इधर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की जारी फौजी कार्रवाइयों के जवाब में एक काबिले जवाज रद्द अमल करार दिया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की तमाम रिफाइनरीज अपनी आला तरीन गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं और उनके पास खातिर ख्वाह खाम तेल दस्तियाब है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का मुनासिब जखीरा भी बरकरार रखा गया है। मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के तनाजुर में नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,36,00,000 LPG सिलेंडर की बुकिंग मौसूल हुई है, जबकि 1,47,00,000 सिलेंडरों की डिलीवरी दी गई है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि माल्टा के झंडे वाला LNG जहाज दिशा, जिस पर 62,370 मेट्रिक टन LNG है, कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ये जहाज पीर को आबनाए हुरमुज से निकला था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़े नए जाब्ते को मंजूरी दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र 15 बरस तय की गई है। इस बड़े कदम का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों के तहफ्फुज़ को मुस्तहकम करना है। शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मख्तूम की सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने यह फैसला किया। इस करारदाद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने की इजाजत नहीं होगी और न उन्हें इंटरेक्टिव फीचर्स से, जैसे किसी मवाद को पोस्ट करने, उस पर कमेंट करने या उसे शेयर करने या पब्लिक ग्रुपों को ज्वाइन करने तक रसाई हासिल होगी। 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को महदूद रसाई हासिल होगी, लेकिन वो सख्त निगरानी में ही रसाई हासिल कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है। चीन के गियांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नटालिया को 5-0 से शानदार जीत

हासिल की। 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाकिस्तान के अलाउ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्ने का मुकाबला पोलैंड की किंग करोका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चैंग यू यांग से होगा। 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला आजरबाईजान की अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवा टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: PHY. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने EPFO के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
2: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़े कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1,00,000 करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला, हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया, अभी देखिए एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
1: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा।

0: कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है. यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्य वर्ग भी स्थापित होने जा रहा है. इसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है.
1: 1 लाख तक के किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है.
0: बिल्कुल.
1: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1 लाख से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12 लाख रुपए तक के ये जो है सो टैक्स फ्री
0: किया था. बिल्कुल.
1: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है. तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स पे किया गया. कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें. तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के.
0: बिल्कुल. जुड़े रहिए आशुतोष जी. एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं. अमन जी स्वागत है आपका.
2: नमस्कार.
0: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है.
2: अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो है, जो एम्प्लॉयर्स है, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब फ्रेशर्स जो होते हैं जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है उन्हें हायर करिए.
0: बिल्कुल.
2: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ. तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा. तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी. अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में. और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉइज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500. मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है. वो कि कॉर्पोरेट में गए हैं जो इम्प्लॉय एज एन इम्प्लॉई 6 महीने उसके बाद जो राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है. तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी. तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए. उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉर्पोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की.
0: आशुतोष जी आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा. यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें. किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए.
1: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के. 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है. दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए मिल रहा नहीं. ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो है, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो 2 और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं. लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने.
0: बिल्कुल. तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है. नीलेश जी स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा और साथ ही

0: destination. Because they always look at money over the career, most of them. Mm-hmm. I would not say all of them, but most of them, they look at hopping from one place to another, looking at their career more rather than sticking to one of the any of the organizations. अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू द ईपीएफओ एंड द पीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट. हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो आई बीइंग एन एम्प्लॉयर आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स द यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट.
1: बिल्कुल. तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से, जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूँ कि देश के योग विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए.
0: जी. सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर. यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है एंड इट एक्चुअली इनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब एंड इट इनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इनटू द फॉर्मल वर्कफोर्स विद कॉन्फिडेंस. जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है. इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट अक्रॉस फैमिलीज कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी. Every new employee supports a household and every household contributes towards the consumption and every successful business contributes towards the nation building. So basically, jitne bhi naye rozgar ko hum protsahan dete hain, alag-alag yojnaon ko ke tahat sarkar hume, you know, incentive deti hai as an employee, as an employer, ye kahin na kahin hamari society ki, hamari country ki कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है.
1: बिल्कुल. आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा. कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित. जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी से जुड़े हैं और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें. और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है. और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं. एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी. तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था. जैसे अभी निवेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए. अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है.
1: बिल्कुल.
2: तो ये और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को.
1: बिल्कुल जी. बिल्कुल. निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें. बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकलकर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: धन्यवाद. अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार.

0: प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: Countrywide.

0: अच्छा तो आप आ गए, बड़ी देर लगा दी।
1: बीना आज कोई खास बात तो हुई नहीं, मैं तो अक्सर इसी समय घर आता हूँ। जब से गृह मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी का भार संभाला है रोज ही इतनी देर हो जाती है। इतना काम है कि बस पूछो मत।
0: आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तब तक आप पंखे के नीचे बैठकर इस तौलिए से पसीना पोंछिए।
1: लाओ भाई तौलिया लाओ। ओफ, गर्मी कितनी बढ़ गई है।
0: लीजिए चाय, और हाँ ये ताजी मठियां भी खाइए।
1: बच्चे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। क्या बात है बीना, तुम मौन क्यों हो?
0: क्या बताऊं, शैलेश कमरे में चित्रकारी में व्यस्त होगा और वीरेश वह मैदान में हॉकी का कोई मैच खेल रहा होगा। दोनों का रिजल्ट आ गया है। वीरेश का मैथमेटिक्स में हाई स्कूल में सप्लीमेंट्री आया है और शैलेश इंटर साइंस में अंग्रेजी विषय को छोड़कर सभी में फेल है।
1: अच्छा,
0: फेल होने पर दोनों को कतई दुख नहीं है। शैलेश तो खिसियाकर कहने लगा कि हमसे जबरदस्ती साइंस पढ़वाओगे तो यही रिजल्ट होगा।
1: समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मैं चाहता था कि शैलेश को इस वर्ष मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दूं, लेकिन जब वो इंटर में ही साइंस के सभी विषयों में फेल हो गया तो उससे भविष्य में क्या आशा करूं।
0: मैं खुद भी बेहद परेशान हूं। दिन में कई बार उससे पढ़ने के लिए कहती हूँ तो भी वो मानता ही नहीं, बस जब देखो तब चित्रकारी में ही जुटा रहता है।
1: चलो बीना, जरा चलकर शैलेश को देखा जाए। शैलेश ये क्या हो रहा है?
2: कुछ नहीं पापा। पापा यहाँ की आर्ट गैलरी में 20 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चित्रकारी का एक कंपटीशन हो रहा है, उसी के लिए एक चित्र बनाया है, बस फिनिशिंग टच दे रहा हूँ क्योंकि पापा कल चित्रों को देने की आखिरी तारीख है।
0: सुनिए अपने बेटे के कमाल को तो देखिए, कितना सुंदर चित्र है। माँ भाग कर आते हुए अपने छोटे से बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर बड़े दुलार से उसे चूम रही है। देखिए माँ के चेहरे पर स्नेह ममता और वात्सल्य के जो भाव हैं, और आंचल में छिपे बच्चे के मुंह पर जो अपार आनंद की अनुभूति है वो कितनी स्वाभाविक लग रही है। शैलेश तुम्हारा ये चित्र बेटे बहुत ही प्यारा है, तुम्हें इस पर अवश्य प्रथम पुरस्कार मिलेगा। क्यों, आप क्या कहते हैं?
1: अच्छा चित्र है।
2: थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आपने मेरे चित्र की तारीफ की, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ।
1: शैलेश तुम्हारा इंटर का क्या रिजल्ट रहा? शैलेश मुझे तुमसे कितनी आशाएं थी लेकिन वे सभी धूल में मिल गईं। मैंने सोचा था कि तुम इस वर्ष इंटर करके मेडिकल के कंपटीशन में बैठ जाओगे और किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लोगे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था भी कर रखी थी किंतु तुमने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया।
2: मुझे भी फेल होने का बहुत दुख है पापा। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि मैं साइंस नहीं पढ़ना चाहता, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज पापा आप मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट दिला दीजिए, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं पेंटिंग में भी डिप्लोमा ले लूंगा।
1: तुम ये क्या बक रहे हो? तुम्हें क्या बनना है और क्या करना है ये सोचना मेरा काम है। तुम्हें तो वही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जो मैं चाहूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें मेडिकल कंपटीशन में ही बैठना है और डॉक्टर बनना है। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि तुम कितने वर्ष में इंटर करते हो, लेकिन तुम्हें करना वही होगा जो मैं चाहूंगा।
0: सुनिए जरा बच्चे की इच्छा को तो जान लीजिए और उसकी बात को तो समझिए आप।
1: नहीं बीना मुझे कुछ नहीं समझना है। और सुनो बीना, ये घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है?
0: ये शायद मीरा के नाचने की आवाज है।
1: ये क्या बदतमीजी है मीरा, सुबह से शाम तक मैं केवल तुम्हें नाचते और गाते ही देखता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये एक अफसर का घर है, डांस क्लब नहीं।
3: ओह सॉरी पापा, मेरे कॉलेज में चैरिटी शो होने जा रहा है, उसमें मेरा सोलो भरतनाट्यम नृत्य है, और मुझे वायलिन पे एक गाना भी गाना है, इसीलिए प्रैक्टिस कर रही थी।
1: आई से स्टॉप इट मीरा, आई हेट दिस ब्लडी डांसिंग एंड सिंगिंग, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो मीरा, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें फर्स्ट क्लास लेकर आगे रिसर्च करना है और प्रोफेसर बनना। मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि कॉलेज के व्यर्थ के फंक्शन में अपना समय बर्बाद करो। कम से कम 8-10 घंटे रोज पढ़ना ही है, समझ गई ना?
3: क्या कह रहे हैं आप, 8-10 घंटे रोज पढ़ना है? ओ नो पापा, ये तो बहुत ज्यादा है।
1: मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मीरा, जो मैंने कहा है उसे तुम्हें मानना ही होगा। तुम्हें भविष्य में क्या करना है और क्या बनना है, ये सब सोचना और निश्चय करना मेरा काम है।
3: पापा,
1: तुम्हारा काम तो केवल पढ़ना है, बस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है। ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा।
3: नहीं नाचूंगी आज से।
0: आप बच्चों पर ज्यादती कर रहे हैं, कॉलेज में एक ही दिन का तो फंक्शन है, उसके लिए कुछ तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है ना, वही तो बेचारी मीरा कर रही है।
1: नहीं बीना, एक दिन के फंक्शन की बात नहीं है और ना उसकी केवल तैयारी की बात है। कॉलेज में ऐसे आगे भी फंक्शन होंगे ही और सभी में मीरा को बार बार नाचने के लिए बुलाया जाएगा। अनुमान लगाओ कि इस तरह तैयारी और कार्यक्रम में कितने घंटे नष्ट होंगे।
0: लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ी आजादी तो दी ही जानी चाहिए ना, इस तरह तो बच्चे सिर्फ किताबों के कीड़े ही बनकर रह जाएंगे, उनका देखिए स्वतंत्र विकास रुक जाएगा।
1: मेरी बात समझो बीना, जिंदगी के आरंभ में इनके द्वारा किया गया ये अध्ययन ही इनके आदर्शों को प्राप्त करने में सहायक होगा। स्वतंत्र जीवन के लिए तो पूरी जिंदगी ही पड़ी हुई है।
0: लेकिन बच्चों का स्वाभाविक विकास।
1: छोड़ो भी बीना ये सब बातें।
4: पापा हम जीत गए, पापा हम जीत गए। मेरे विक्ट्री क्लब ने यंग स्पोर्ट्स क्लब को 2-1 से हराया और विनिंग गोल लास्ट 5 मिनट में मैंने ही किया। हाँ, और अब हम गोल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, वहां हमारा मुकाबला स्टार क्लब से होगा और बिलीव मी पापा, हम निश्चित रूप से उसे हरा देंगे। क्या हुआ पापा, आप चुप क्यों हैं?
1: कुछ नहीं वीरेश। हाँ, तुम्हारे हाई स्कूल के रिजल्ट का क्या रहा?
4: सॉरी पापा, मेरा मैथमेटिक्स में सप्लीमेंट्री आया है पापा, मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, मुझसे मैथ्स नहीं चलती।
1: व्हाट, तुमसे क्या चलता है? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। अगर तुम सवेरे से शाम तक हॉकी ही खेलते रहोगे तो विश्वास मानो तुमसे आर्ट्स के सब्जेक्ट भी नहीं चलेंगे। बीरू, मेरी राय मानो और इन चक्रों को छोड़ो। मैं कितना रुपया तुम लोगों पर खर्च कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ना कि तुम लोगों का भविष्य सुधारना चाहता हूँ।

0: लेकिन लेकिन मेरी सारी योजनाएं तुम लोगों ने तहस नहस कर दी।
1: पापा अब प्लीज सुनिए तो सही, आप मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और वो मैं बन नहीं सकता। मुझे न फिजिक्स में दिलचस्पी है और न मैथमेटिक्स में। पापा मैं तो केवल हॉकी में नाम कमाना चाहता हूँ।
0: तुम क्या भग रहे हो वीरू?
1: मैं ठीक कह रहा हूँ पापा, मेरे आज के शानदार खेल को देखकर मालूम है क्या हुआ? रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अगर मेरा हॉकी में यही फॉर्म रहा तो वो मुझे अगले साल रेलवेज में ले लेंगे और मुझे अच्छी सी नौकरी मिलेगी। और मालूम पोस्ट क्या है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर।
0: ओह वीरू मेरी बात समझो, ये सब गलत है।
1: कुछ भी गलत नहीं है पापा, मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूँ कि 3 महीने बाद सप्लीमेंट्री में बैठकर मैं हाई स्कूल कर लूंगा। लेकिन लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ सकता, मैं रेलवे में ही नौकरी कर लूंगा और खूब हॉकी खेलूंगा। एक दिन मैं इंडिया 11 में आ जाऊंगा। हाँ
0: तुम रेलवे की सड़ी नौकरी करोगे और एक अफसर के बेटे होकर रेलवे की नौकरी में अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? तुम होश में तो हो ना वीरू?
1: मैं बिल्कुल होश में हूँ पापा। आप ये क्यों सोचते हैं कि एक अफसर का बेटा रेलवे में नौकरी नहीं कर सकता? अरे क्या रेलवे में नौकरी करने वाले खलासी चपरासी या क्लर्कों के ही बेटे होते हैं? ओ पापा आप ऐसे गलत बातें क्यों सोचते हैं?
0: मैं इस मामले में तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह देता हूँ कि तुम रेलवे में नौकरी नहीं करोगे। तुम्हें 10 साल में ही सही, लेकिन इंजीनियर ही बनना है।
1: नहीं पापा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। मुझे इंजीनियर बनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुझ में इंजीनियर बनने की योग्यता ही नहीं है।
0: ओ, तुम सब मिलकर मुझे पागल बना दोगे। हटो, जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ यहाँ से।
2: आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं बच्चों के लिए। जरा शांत हो जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ।

0: लीजिए ये शरबत लीजिए। और हाँ, ये सिर पकड़े क्यों बैठे हैं? क्या आपके सिर में दर्द है?
1: हाँ, थोड़ा सिर दर्द तो है ही। सच्चाई यह है कि मैं बेहद परेशान हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है?
0: आप तो व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। मेरी मानिए, चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए।
1: लगता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सोच रहा हूँ कि हमारे जमाने में ऐसा क्यों नहीं होता था। आखिर मैं भी तो अपने पिता का बेटा था। हमारे जमाने में जो पिता ने कह दिया वो मान लिया। पीना, मेरे पिता एक साधारण क्लर्क थे, लेकिन वे हमेशा ये कहा करते थे कि वे अफसर नहीं बने तो क्या हुआ, उनका बेटा नरेश उनकी बात मानकर जरूर अफसर बनेगा। और अफसर बनकर मैंने उन्हें दिखा दिया। यदि मुझे अपनी इच्छा पूर्ति का अवसर मिला होता तो मैं आज एक बड़ा इंजीनियर होता। आज मैं सोचता हूं कि मैं इंजीनियर नहीं बना तो क्या हुआ, मेरा एक बेटा तो मेरी बात मानकर कम से कम इंजीनियर बन जाए।
0: मैं स्वयं भी बच्चों को आपकी बात मानने के लिए समझाती रहती हूँ, लेकिन वो भी हैं कि अपनी जिद पर अड़े रहते हैं।
1: क्या कहूँ मैं, बच्चों के आज के इसी व्यवहार से मुझे अपने पिता की बेहद याद आ रही है। मुझे याद है कि मेरे पिता रात को उस बरामदे के चक्कर लगाया करते थे जहां मैं प्रायः पढ़ा करता था।
2: नरेश, मैथ्स कैसा चल रहा है बेटे?
3: ठीक है डैडी।
2: हाँ, बहुत अच्छे। लेकिन हाई स्कूल की तरह इंटर में भी तुम्हारा फर्स्ट क्लास आ जाएगा ना?
3: आप बिल्कुल चिंता ना करें डैडी, मेरा फर्स्ट क्लास ही आएगा, मुझे पूरा विश्वास है।
2: शाबाश बेटे, शाबाश। मुझे तुम्हारे परिश्रम पर पूरा विश्वास है। मैं बहुत खुश हूं नरेश, तुम्हारा इंटर में 85% मार्क्स के साथ फर्स्ट डिवीजन आ गया। लेकिन लेकिन बेटे, मैं बहुत परेशान।

0: अंधे हूं।
1: क्या बात है रेड्डी, अब तो कोई परेशानी नहीं है, मैं इंजीनियरिंग के सिलेक्शन में निश्चित रूप से आ जाऊंगा।
0: हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे सिलेक्शन का तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन लेकिन बेटे प्रश्न यही है कि तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं खर्चा कहां से दूंगा। मैं तो प्रांतीय सरकार में केवल सहायक ही हूं, और एक सहायक के सीमित वेतन में तुम्हें और तुम्हारी तीन बहनों को पढ़ाना और तुम सभी का विवाह करना, बेटा मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है। मैं सोच रहा हूं कैसे होगा ये सब।
1: डैडी, इंजीनियर बनने का सपना बहुत महंगा सौदा है, आप इतना खर्च लाएंगे कहां से।
0: हाँ हाँ बेटे, यही तो परेशानी की बात है।
1: आप परेशान ना हो डैडी, मैं यहां यूनिवर्सिटी में बीएससी ज्वाइन कर लेता हूं, फिर कंपटीशन में बैठकर भाग्य आजमाऊंगा।
0: हाँ यही ठीक है बेटा, लेकिन बेटे ये मत भूलना कि तुम्हें अपने जीवन में एक अफसर ही बनना है। एक क्लर्क बनकर जीवन भर मैंने जो यातनाएं सही हैं, नरेश मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम भी उन कठिनाइयों से गुजरो।
1: निश्चिंत रहिए डैडी, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा।
0: बेटे आज मेरे सामने ये शपथ भी तो लो कि इंजीनियर नहीं बन सके तो क्या, तुम एक बड़े अफसर बनकर सबको दिखा दोगे। और सुनो, भविष्य में अपने एक लड़के को अवश्य इंजीनियर बनाओगे।
1: डैडी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा, मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुड़ जाऊंगा डैडी।

0: शाबाश बेटे, तुमने पीसीएस में प्रथम स्थान लेकर डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त कर ही लिया। मैं आज एक अफसर का पिता हो गया।
1: डैडी, आपके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो पाया है।
0: नहीं बेटे, तुम्हारा अथक परिश्रम ही तुम्हें इस पद पर लाने में सहायक हुआ है। सचमुच आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक बेटा अपने पिता की बात रख ले, उनके अनुरोध की रक्षा के लिए जी जान से प्रयत्न करे, तो कौन सा पिता होगा जो हृदय से प्रसन्न नहीं होगा। मेरा यही आशीर्वाद है बेटा कि तुम सदा सुखी और प्रसन्न रहो, और जिस तरह तुमने मेरे वचन की रक्षा की है, तुम्हारी संतानें भी उसी भांति तुम्हारे अनुरोध की रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू माय सन।
2: मेरे पिता का दिया आशीर्वाद आज सत्य नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा। लगता है आज के युग के संदर्भ में बुजुर्गों के ऐसे आशीर्वाद कोई महत्व नहीं रखते।
3: आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। बात केवल इतनी ही है ना कि आज के बच्चे कुछ ज्यादा सजग, चेतन और समझदार हैं, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक विश्वास करते हैं।
2: शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अपने जमाने में मैंने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि पिता ने जो कहा वो न माना जाए, बल्कि पिता जो चाहते थे उसे पूरा करने के लिए उन जैसे अनेक पुत्रों ने अपनी इच्छाओं का हनन किया था। इसके पीछे क्या भावना थी? अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब उनकी कही हुई बात को उनके बच्चे क्यों नहीं मानते? उनके बताए रास्ते पर क्यों नहीं चलते?
3: ओफो, सुनिए, आप सोफे पर थोड़ी देर के लिए लेट जाइए।
2: तुम ठीक कह रही हो, मैं थका भी हूँ, थोड़ा आराम ही कर लूँ।
4: मम्मी, कहाँ हैं आप?
3: मैं यहाँ किचन में हूँ बेटे। क्या बात है?
4: मम्मी जरा यहाँ डाइनिंग रूम में आइए ना, हमें आपसे कुछ बातें करनी है।
3: हाँ बोलो बेटे, क्या परेशानी है?
4: मम्मी, क्या आपको पापा की ज्यादती नहीं लगती कि वो जो चाहे हम वही करें, वो जो बनाए हम वही बने? मम्मी, हमारा तो आपसे यही कहना है कि हमें अपने भविष्य का मार्ग चुनने के लिए आजाद छोड़ दें, हमें अपनी पसंद के

0: रास्ते पर चलने दें। आखिर हम भी तो अपनी भलाई बुराई सोच सकते हैं, हमें भी तो यह एहसास है कि जीवन के किस फील्ड में हम सफल होंगे और कहाँ असफल।
1: तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने भविष्य के विषय में अच्छी तरह सोच सकते हो। और हाँ वीरू, तुम्हारा क्या कहना है?
2: केवल इतना ही कहना है कि हमारे सामने कितने ही ऐसे उदाहरण आए हैं जो अपने पिता की जिदों के कारण क्लर्क हैं, दुकानदार हैं, अध्यापक हैं या फिर किसी और कामों में लगे हैं। वे महत्वाकांक्षी थे और वे लोग कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन अपने माँ बाप की जिद के कारण उन्हें अनचाहे पदों को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन हम अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहते।
1: मुझे आज बेहद खुशी हो रही है बेटा कि आज हमारे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि वो अपने भविष्य के बारे में इतनी गहराई से सोच सकते हैं। पहले एक बात समझ लो कि पापा या मम्मी तुम्हारे दुश्मन नहीं है बेटे, दुश्मन नहीं है।
0: ऐसा तो हमने नहीं कहा मम्मी, हम तो अपने मन की बात आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पापा से हम खुलकर बात कर ही नहीं सकते।
1: बेटे मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, अब तुम शांति से मेरी बात सुन लो। अपने बच्चों के भविष्य के विषय में हर माता पिता के अपने स्वप्न होते हैं ना, और उनके पूरे होने पर उन्हें कितना मानसिक संतोष मिलता है। तुम लोग ये गलत समझ रहे हो या गलत सोच रहे हो कि हम तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं या जबरदस्ती तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। नहीं बेटे, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है। हम तो यही चाहते हैं कि तुम लोग अपने जीवन में सुखी रहो। मेरी राय यही है कि पापा जो कहें वही करो और व्यर्थ के कामों में अपना समय मत नष्ट करो।
0: नहीं मम्मी, मैं साइंस नहीं पढ़ सकता और ना ही मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं तो जीवन में एक बड़ा चित्रकार बनने का स्वप्न देख रहा हूँ। मैंने तो पिछले 2-3 सालों में लगभग 50 चित्र भी बना लिए हैं। और हाँ मम्मी, अगले महीने न्यू आर्ट गैलरी में मेरे बनाए हुए चित्रों की प्रदर्शनी होगी, शिक्षा मंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। अब आप ही बताइए मम्मी, मुझ जैसे 18-19 साल के नौजवान को इतना सम्मान मिल रहा है, ये क्या कम गौरव की बात है?
1: तुम्हारे चित्रों की प्रदर्शनी की बात सुनकर मुझे तो बेहद खुशी हुई।
0: और मम्मी, मैं आपसे ये भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे कुछ सुंदर चित्र निश्चित रूप से अच्छे दामों में बिक जाएंगे।
1: अच्छा, ये तो और भी खुशी की बात होगी।
2: मम्मी मम्मी मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपकी रुचि नहीं है तो भी इंजीनियर बन जाओ। अरे सवेरे से शाम तक मजदूरों से झांझा करो, वर्क चार्ज और दिहाड़ी के लोगों का हिसाब रखो, बजरी सीमेंट की नापतोल देखो, ठेकेदारों पर चौकसी रखो, और कहीं जरा सी भी कमी रह गई तो सीनियर अफसरों की झाड़ खाओ, कहीं कोई पैसों का घपला हुआ तो सस्पेंड हो जाओ और फिर रोते रहो जिंदगी भर।
1: वाह वाह वीरू, तुमने तो इंजीनियरों का अच्छा खासा खाका खींच दिया है, तब फिर तेरी पसंद क्या है?
2: मम्मी मैं तो हॉकी खेलूंगा और जमकर खेलूंगा। मुझे यकीन है कि मेरा इस साल भारत की जूनियर हॉकी टीम में सेंटर फॉरवर्ड के रूप में चयन हो जाएगा, और अगले वर्ष मैं विदेशों की सैर करूंगा। और मम्मी तुम देखना, अखबारों में मेरे इंटरव्यू और फोटो छपेंगे। हाँ,
1: और जिंदगी चलाने के लिए नौकरी कहाँ करोगे?
2: ओफो, नौकरी की चिंता आप छोड़ दें, इंडियन एयरलाइंस, बैंक, पुलिस, रेलवे, सभी में नौकरी मिलेगी और ये लोग मेरे पीछे घूमेंगे। रेलवे में नौकरी वाले तो अभी से ऑफर देने लगे हैं।
3: मम्मी पापा बिल्कुल राय हैं, उन्हें नृत्य और संगीत किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस दफ्तर जाते हैं और फाइलों में सर मारते रहते हैं और घर में भी फाइलों में जुटे रहते हैं।
1: अच्छा, तुम्हें भी चैन नहीं पड़ा मीरा, तुम भी आ ही गई। खैर तुम भी अपनी बात कह लो।
3: मम्मी मेरा तो इतना ही कहना है कि मैं भी नृत्य और संगीत को नहीं छोड़ सकती, वे मेरे जीवन के प्राण हैं। मम्मी तुमने पिछली बार मेरे कॉलेज का फंक्शन देखा था ना, क्या शानदार मैंने नृत्य और संगीत का प्रोग्राम दिया था। 10 मिनट तक तो हॉल में तालियां ही गूंजती रही थी।
1: अच्छा भविष्य में तुम्हारा क्या इरादा है?
3: मम्मी आप लोग मुझे आज्ञा नहीं देंगे, नहीं तो मैं भी नृत्य की शिक्षा लेकर विदेशों में नृत्य का नाम कमाना चाहती हूँ।
1: गुड, वेरी गुड। शैलेश भी विदेशों में अपने चित्रों की प्रदर्शनी करेगा और वीरेश भी देश विदेश में हॉकी खेलेगा, और तुम भी नृत्य प्रदर्शन के लिए विदेश जाने का इरादा रखती हो। भाई वाह,

0: हम बुढ़े बूढ़ियों के पास कौन रहेगा। हाँ बच्चों, तुम्हें रहना भी क्यों चाहिए भला? हमने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा जो कर दिया, अब आजाद पंछी जो हो गए हो, अपनी इच्छाओं के मालिक बनकर जीने का जो स्वप्न देख रहे हो ना, वो बहुत अच्छा है भाई। वाह, तुमने मेरी तबीयत खुश कर दी।
1: मम्मी, आप हम पर ताने कस रही हैं।
2: आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं।
0: और क्या मैं तुम्हारी आरती उतारूं? सुनो और मेरी बात को समझो, मैं तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास करा रही हूँ। मैं पापा से तुम लोगों की सारी बातें कह देने का वायदा करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अभी अपनी पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाओ, परीक्षाओं को अच्छे नंबरों से पास करो, लेकिन तुम सभी को पहले ग्रेजुएशन करके अपने आप को समर्थ बनाना है। मैं तुम्हारे पापा के सामने तुम्हारी बात रखूंगी और कोशिश करूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें अपनी रुचियों को विकसित करने का मौका भी मिले।
1: लेकिन मम्मी, ये ग्रेजुएशन वाली शर्त तो बहुत टेढ़ी है।
2: मम्मी, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता।
0: मन लगाना चाहोगे तो अवश्य लग जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हारे पापा पर जोर डालकर उन्हें इस बात के लिए राजी कर लूंगी कि तुम लोगों पर साइंस पढ़ने पर जोर ना डालें। शैलेश इंटर करके कमर्शियल आर्ट में डिग्री लेकर अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और वीरेश भी हॉकी खेलते हुए ही अपना बीए कर ले, और इसके बाद पुलिस, एयरलाइंस या बैंक में जहां भी अच्छा पद मिले स्वीकार कर ले। और मीरा, वो तो एमए में है ही, बस अब तो तुम लोग खुश हो ना।
1: आपके सुझाव से मैं तो बहुत खुश हूँ मम्मी, लेकिन पापा, क्या पापा आपकी बात मानेंगे?
2: मुझे भी यही शक है मम्मी, पापा नहीं मानेंगे, वे अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। वैसे मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है, मुझे अगर हॉकी खेलने से नहीं रोका गया तो मैं निश्चित रूप से बीए पास करके दिखा दूंगा और बैंक या फिर एयरलाइंस में अच्छी नौकरी ले लूंगा।
3: मम्मी विश्वास रखिए, मैं भी एमए में अच्छा डिवीजन ला के दिखाऊंगी, लेकिन मेरे नृत्य और संगीत पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं भी शोभना नारायण की तरह नौकरी करते हुए देश विदेश में नाम कमा लूंगी, लेकिन पापा ये बात नहीं मानेंगे।
4: बच्चों, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की सारी बातें सोफे पर लेटे लेटे सुन ली हैं। मैं तुम्हारी मम्मी के प्रस्ताव से सहमत हूँ। अगर तुम मम्मी की कही हुई बातों को मानकर कार्य करते रहोगे तो मैं भी तुम्हारे भविष्य के आदर्शों के बीच में बाधक नहीं बनूंगा, बल्कि तुम्हारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक ही बनने का प्रयास करूंगा। तुम अपने जीवन में योग्य व सक्षम बनो, यही मेरी इच्छा है। आओ, बहुत बातें हो गई हैं, अब भूख भी लग रही है, चलो खाना खाया जाए।
5: ओ पापा, यू आर ग्रेट।
1: मम्मी पापा
5: जिंदाबाद।
3: अब हमें आपसे कोई शिकायत
5: नहीं है।
0: सुनिए, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्या के निदान को स्वीकार कर लिया है। मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। अब आप लोग सभी डिनर टेबल पर चलिए, मैं नौकर से खाना लगवा रही हूँ, साथ ही इस खुशी के मौके पर ठंडे रसगुल्ले भी मंगा कर खिला रही हूँ।

0: तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुमने मेरी सारी टेंशन को दूर कर दिया।
1: सुनिए, मेरी तो एक ही बात समझ में आई है कि बाप की जिद्दों से बच्चों का भविष्य नहीं बना करता। बच्चे अपनी प्रतिभा के सर्वोत्तम पक्ष का तभी प्रदर्शन कर सकते हैं जब उन्हें उनकी रुचि के व्यवसाय चुनने का अवसर दिया जाए। मैंने आपके और उनके विचारों की खाई को पाटने के लिए बीच का रास्ता चुना है।
0: ठीक कह रही हो बीना, सपनों में जीना अच्छा हो सकता है, लेकिन जिंदगी की यथार्थता को हमें स्वीकार करना चाहिए। चलो, ये अच्छा ही है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता।

श्रोताओं, भी आपने सुना नाटक सुबह का भूला। लेखक थे डॉक्टर शिव नारायण चतुर्वेदी, प्रस्तुतकर्ता विभूति भूषण भट्ट, प्रस्तुति सहयोग सुंदरलाल गंधर्वता। प्रतिभागी कलाकार थे अमरनाथ त्रिवेदी, कुमारी ख्याति भारती, सविता सहाय, विनय ध्यानी, अकीलुर रहमान शमसी और मदन मोहन राजवंशी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, पेश है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। प्यार भरा नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को रेणुकोट नाला की ओर से। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस रंग बिरंगे सफर में आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपके भेजे हुए पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से चुने गए मन पसंद गीतों के साथ, तो आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सिलसिला। और कार्यक्रम का पहला गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म सुनैना से, आवाज यशुदास की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप सभी श्रोता। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीता कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। परीमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा रानी, मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली मीर। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोथ और तमन्ना कांगड़ा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

मोहम्मद आलम हाशमी ने। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। वाइट फील्ड बेंगलुरु से फरमाइश लिखकर भेजी है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और इनके साथियों ने। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा।

हुसैन सिद्दीकी और रिफाकत हुसैन सिद्दीकी। इसी गीत के लिए फरमाइश की है बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार ने गांधी चौक बाड़मेर से। सुनना चाहा है इसी गीत को चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा ने। ये फरमाइश हमें मिली है अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह, विनोद पुरी और इनके साथियों ने। गंजुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमशूल कमर राही ने। तो आप सभी श्रोता सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दोस्त से। स्वर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहाकर, निर्मला नहाकर विशाल और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहिरकर, राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर, ग्राम जुजेला थाना शिवाला कला बिजनौर से, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दीशानी और निमित आहूजा, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरमगोड़िया शोएब खान, सिंधौली बरेली से जीशान वारसी, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा, फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासीफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलीम बशर अंसारी, कस्बा सेंथल ज़िला बरेली से। ये फरमाइश हमें मिली है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और इनके सभी साथियों का। भाई श्रोताओं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ जी श्रोताओं का नाम कार्यक्रम में शामिल हो गया है तो वो आगे अभी ना लिखें, क्योंकि नाम रिपीट होने से हमारे दूसरे श्रोताओं के नाम रह जाते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। एक श्रोता एक बार ही कार्यक्रम में आज अपनी फरमाइश लिखकर भेजी। धनौरी तेलीवाला से हमारे श्रोता हैं निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोथ, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोथ और अंकित कांगड़ा, ग्राम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और आदिब। इसी गीत के लिए फरमाइश की है जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से, श्रोता है बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद रिसिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बेटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान ने। आप सभी श्रोताओं के साथ, श्रोताओं आप भी सुनिए ये गीत।

श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म बड़े दिलवाला से स्वरलता मंगेशकर और किशोर कुमार का है। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आरडी बर्मन। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप सभी श्रोता लाल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा, मलियान सरधना मेरठ, सनील जैन, जैन साहब, संजय जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवियम जैन, मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद बहन फिरोज़ा मुस्कान और अफसर अली के साथ नगमा नाज मंसूरी, मोहल्ला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और इनके सभी साथी, जसपुर रोड दूलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा परवीन, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलीस डिकेस्टो। इसी गीत के लिए फरमाइश लिखकर भेजी है हमें झारखंड।

बाम्बू सुपाई साईगांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती और प्रकाश तांती ने, जगमल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार के सदस्यों ने फरमाइश लिखकर भेजी है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, और ये फरमाइश मिली है हमें हाशमी परिवार की तरफ से। इन्होंने ये फरमाइश लिखकर भेजी है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। लिखते हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी। एक और फरमाइश मिली है जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, श्वनी और विपुल कामड़े। और बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर आई, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। हमारे इन सभी श्रोताओं के साथ श्रोताओं आप भी सुनिए फिल्म बड़े दिलवाला का ये गीत।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के आपकी फरमाइश कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है गीतों का ये सुरीला सफर आपको जरूर पसंद आया होगा। आपकी चिट्ठियों, संदेशों और फरमाइशों का सिलसिला हमारे साथ यूं ही बना रहे, क्योंकि श्रोताओं, आपकी पसंद ही हमारे कार्यक्रम की पहचान है। और अब अगली मुलाकात तक के लिए रेणु कोटनाला को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2000

0: 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।